सुप्रभात, हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ एवं FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़। इसके साथ ही दूरदर्शन के DTH चैनल पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त सन 2026 सवेरे के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर का हमीर चैनल। सवेरे के 6 बजने को है। कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषध निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को

0: स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना पहली सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू PNG कनेक्शन हैं। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है और लीजिए प्रस्तुत है चिंतन। विषय रहेगा सेहत।

सेहत के बारे में बहुत ही लोकप्रिय पंक्तियां हेल्थ इज वेल्थ अर्थात स्वास्थ्य ही धन है, जिसे अर्जित करने के लिए बहुत अधिक धन निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। संयमित संतुलित दिनचर्या ही पर्याप्त है। बचपन से हमें एक मंत्र सिखाया गया, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना और जल्दी उठना, यह भी सेहत के लिए एक अच्छा मंत्र है। लेकिन कितने लोग इस मंत्र को जीवन में आत्मसात कर पाते हैं? जो करते हैं वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं, और जो नहीं कर पाते वे समय समय पर बीमार पड़कर शरीर को धीरे धीरे अशक्त करते चले जाते हैं। सदियों पहले तपस्वी लोग सैकड़ों सालों तक जिंदा रहते थे क्योंकि उनका शरीर पुष्ट रहता था। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास कुछ युवक ज्ञानार्जन के लिए पहुंचे तो युवकों को देखकर स्वामी विवेकानंद बड़े निराश हुए। वे सभी युवक कृशकाय थे, बेहद कमजोर नजर आ रहे थे। स्वामी जी ने उन्हें सबसे पहले सलाह दी कि जाओ, पहले खेलो कूदो और अपना स्वास्थ्य बनाओ, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छे जीवन की निशानी है और स्वस्थ मन से ही सही ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। स्वामी जी की बात सुनकर युवकों ने उनका कहना माना और अपनी सेहत को जल्दी दुरुस्त कर लिया। फिर स्वामी विवेकानंद से मिले तो स्वामी विवेकानंद ने प्रसन्न होकर उनको जीवन की दिशा के कुछ सूत्र दिए। स्वामी विवेकानंद स्वयं स्वास्थ्य के प्रति बड़े सजग रहते थे। उनकी दिनचर्या

बहुत संतुलित थी, उनका खान पान भी सात्विक था। यही कारण था कि उनका व्यक्तित्व बहुत सुदर्शन था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु के सानिध्य में रहकर उन्होंने विश्व कल्याण की दिशा में अपना जो योगदान किया उससे भुलाया नहीं जा सकता। उनके साथ जितने युवक भी जुड़े वे सन्यासी हुए, सबके सब अपनी सेहत के प्रति सजग थे। उत्तम स्वास्थ्य विवेकानंद जी का मूल मंत्र था। समाज में अनेक उदाहरण देखते हैं कि बड़े बड़े धन वाले भी अक्सर बीमार मिलते हैं। उनके पास धन की कोई कमी नहीं, लेकिन सेहत ठीक नहीं रहती। तरह तरह की बीमारियों ने शरीर पर कब्जा कर लिया है। जीवन का सारा सुख वैभव खराब स्वास्थ्य के कारण नष्ट हो रहा है। ऐसी दौलत किस काम की जो हमें उत्तम स्वास्थ्य भी प्रदान ना कर सके। हमें सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना है, संतुलित आहार लेना है। आइए आज हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने जीवन में आरोग्य का सदा ध्यान रखेंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: इस समूह गान के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमेर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। आज इसमें आप सुनेंगे कड़ी संख्या 155 सुरेश वाडकर व ए हरिहरन द्वारा।
1: एपिसोड 155 155।

श्री राम के सीता के साथ वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण को अपने तन मन की सुधि जाती रही। वे व्याकुल होकर अग्रज के चरणों में आ गिरे। उदास मुखमंडल, कांपता शरीर, आंखों में उमड़ते आंसुओं ने निशब्द उनकी पीड़ा प्रकट कर दी। श्री राम ने उन्हें धीरज बंधाया। प्रेमवश अधीर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और स्वामी की सीख मानकर आचरण करते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। हे भाई, भरत और शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं हैं। वृद्ध महाराज मेरे वन प्रवास के कारण बेसुध हैं, अतः तुम्हें यहीं रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले गया तो अयोध्या नगरी एकदम अनाथ हो जाएगी। किंतु आसन्न वियोग की पीड़ा से अधीर लक्ष्मण पर श्रीराम के शीतल वचनों का वही प्रभाव हुआ जो पाले का कमल पर होता है। लक्ष्मण की ये वेदना है कि वे दास हैं और यदि स्वामी उनका त्याग भी कर दें तो वे क्या कर सकते हैं। सच तो ये है कि वे श्रीराम के स्नेह से सिंचित मात्र एक शिशु हैं जो श्रीराम के अतिरिक्त गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानते। धर्म और नीति संबंधी उपदेश की आवश्यकता तो उसे

होती है जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य और सद्गति की अभिलाषा हो, जो मन वचन कर्म से श्री राम के चरणों में प्रेम रखता हो, क्या उसका त्याग किया जा सकता है?

0: खुले पैसों की समस्या से छुटकारा।
1: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2024 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
4: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमिर चैनल है और लीजिए सुनिए आज की रूप रेखा। तो श्रोताओं, 6:45 पर आप सुन सकेंगे कर सारी बात। चर्चा रहेगी मिर्च की उन्नत खेती। 7 बजे प्रस्तुत होगा साहित्य धारा, कविता पाठ आशा मीना के द्वारा। सवेरे के 7:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। नौ बजकर 15 मिनट पर आएगा हेलो जयपुर कार्यक्रम। 10 बजे से यायावर और 11 बजे से फरमाइशी फिल्म संगीत। बारह बजकर 10 मिनट पर प्रसारित होगा लोक संगीत। संगीतकार रहेंगे दिलबर हुसैन। और 1:30 पर आप सुन सकेंगे पणिहारी।

दोपहर के 2:30 पर आप सुन सकेंगे राजस्थानी लोक संगीत। संगीत कर रहेंगे चिरंजी लाल तवर। 3:30 पर प्रायोजित होगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम के 4:00 आप सुन सकेंगे स्वर मंजरी। संगीत कर रहेंगे फतेह अली संतूर वादक। 5:00 युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम आएगा जो कि है युववाणी। 6:43 पर आप सुन सकेंगे जिले की चिट्ठी। 7:00 ग्राम भारती और 7:30 पर आएगा खेती बाड़ी। 8:00 प्रस्तुत होगा फिल्म संगीत और 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन। 10:00 आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत और 10:30 पर आएगा फिल्म संगीत।

0: तो श्रोता, ये थी आज की रूपरेखा। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे करसारी बात।
1: खुले पैसों की समस्या से छुटकारा।
2: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2024 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।
0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है और रीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम करसारी बात।
3: किसान भाइयों, आज आप बात कर सियाँ मिर्च की उन्नत खेती के बारे में। मिर्च एक नकदी फसल है और आपने भोजन को एक प्रमुख अंग है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मिर्च का माए विटामिन ए और सी पाया जावे हैं और कुछ खनिज लवण भी होवे। मिर्च की खेती के लिए की प्रकार की भूमि और जलवायु होनी चाहिए? अच्छी उपज के लिए उपजाऊ दोमट भूमि जी का माए पानी को अच्छो निकास रहे उपयुक्त रहवे है। मिर्च के ऊपर पालक को प्रकोप अधिक रहवे है, ई के लिए पालक की आशंका जठे हुए उन क्षेत्रों के माए ई की अगेती फसल लेनी चाहिए। मिर्च की उन्नत किस्म की आप बात करा तो सबों पहली है चरपरी यानी कि मसाले वाली NP 46A, पूसा ज्वाला, मथानिया लौंग, पंत C1, G5, G3, हंगेरियन वैक्स, पीले रंग वाली, पूसा सदाबहार यानी के निर्यात हेतु बहुवर्षीय, पंत C2, जवाहर, RCH1, शिमला मिर्च सब्जी वाली, येलो वंडर, कैलिफोर्निया वंडर, बुलनोज व अर्का मोहनी। बुआई की आप बात करा तो मिर्च की फसल साल का माय 3 बार ली जा सके है। खरीफ की फसल हेतु मई और जून में, गर्मी की फसल हेतु फरवरी मार्च में नर्सरी के माय बीज की बुआई करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पौध तैयार करवा हेतु 1 से 1.5 किलो बीज पर्याप्त रहे। बीजा की बुआई से पूर्व 2 ग्राम कैप्टान प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए जिससे बीज जनित रोग को प्रकोप न हो सके। नर्सरी के माय कार्बोफ्यूरान 3G कण 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाना चाहिए। रोपाई की अगर आप बात करा तो नर्सरी के माय बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद पौधा रोपना योग्य हो जाए ही। इस समय पौधा की रोपाई खेत कमाएँ करनी चाहिए। गर्मी की फसल में कतार से कतार की

दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से बीज की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। खरीफ की फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रोपाई शाम का समय करनी चाहिए और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करनी है। किसान भाई, अब आप बात करें मिर्च की फसल में खाद और उर्वरक के बारे में। अंतिम जुताई के पूर्व प्रति हेक्टेयर लगभग 150 से 250 क्विंटल अच्छी सड़ी गोबर की खाद भूमि में मिलानी चाहिए। इसके अलावा 70 किलो नत्रजन, 48 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटाश की आवश्यकता रहे। नत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा रोपाई से पूर्व देनी चाहिए और नत्रजन की शेष आधी मात्रा रोपाई के 30 दिन वह 45 दिन बाद दो बराबर भाग में खेत में छिटक कर सिंचाई करनी। पौध संरक्षण कीट सफ़ेद लट, यह कीट की लट पौधा की जड़ा ने खाकर नुकसान पहुंचावे है और इसो फसल ने काफ़ी हानि होवे। जिन क्षेत्र में इको प्रकोप होवे बटे फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाए है, इके नियंत्रण हेतु फॉरेट 10 g या कार्बोफ्यूरान 3 g 25 किलो प्रति हेक्टेयर से रोपाई से पूर्व जमीन में मिला देना चाहिए। सफ़ेद मक्खी, परजीवी थ्रिप्स, हरा तेला व मोइला, यह कीट पत्तियां ने और पौधा का कोमल भाग से रस चूसकर काफ़ी नुकसान पहुँचावे। यहाँ का प्रकोप से फसल ने काफ़ी हानि हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु मेलाथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। 15 से 20 दिन के बाद आवश्यकता अनुसार छिड़काव ने दोहराणो। मूल ग्रंथि यानी कि सूत्रकृमि, इसके प्रकोप से पौधा की जड़ा का माए गांठ बन जाए हैं और पौधा पीला पड़ जाए हैं। पौधा की बढ़वार रुक जाए है जिससे कि पौधा की पैदावार में कमी हो जाए। इसके नियंत्रण हेतु पौध रोपण के समय 25 किलो कार्बोफ्यूरान 3 g प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलानी है। प्रमुख व्याधियां आर्द्र गलन डैम्पिंग ऑफ, ई रोग को प्रकोप पौधे की छोटी अवस्था में होवे है। जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़कर कमजोर हो जाए ही तथा नन्ना पौधा गिरकर मर जाए ही। इके नियंत्रण हेतु बीज ने बुआई से पूर्व थायरम या कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। नर्सरी में बुआई से पूर्व थायरम या कैप्टान 4 से 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलानी है। नर्सरी में रोपाई के लिए पौधा 4 से 6 इंच उठी हुई क्यारी में तैयार करना ही। छाछा रोग, ई रोग का प्रकोप से मिर्च की पत्तियां पर सफ़ेद चूर्णी धब्बा दिखाई देवे हैं और अधिक रोगग्रस्त पत्ती पीली पड़कर झड़ जाए ही। इसके नियंत्रण हेतु केराथियन LC 1 मिलीलीटर या कैलेक्सिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी को घोल को छिड़काव करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार 15 दिन के अंतराल पर दोहराना चाहिए। जीवाणु धब्बा रोग, ई रोग का प्रकोप से पत्तियां पर छोटा छोटा जलीय धब्बा बन जाए ही और बाद में गहरा भूरा रंग से काला रंग का उठा हुआ दिखाई देवे। अंत में रोगग्रस्त पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाएं। इसके नियंत्रण हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 मिलीग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम 100 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल को छिड़काव आवश्यकता अनुसार 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। पर्ण संकुचन व मोजक यानी कि विषाणु रोग, पर्ण संकुचन रोग का प्रकोप से मिर्च का पत्ता सिकुड़ कर मुड़ जाए ही, छोटा रह जावे हैं और झुर्री पड़ जाए ही। मोजेक रोग का कारण पत्ती पर गहरा हल्का पीलापन लेड़ा धब्बा बन जाए ही। रोग का प्रसारण में कीट सहायक हुए हैं। एक नियंत्रण हेतु रोग ग्रसित पौधा ने उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। रोग ने आगे फैलवा से रोकवा के लिए डाईमिथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। नर्सरी तैयार करता समय बुआई से पूर्व कार्बोफ्यूरान 3 g 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाना चाहिए। पौध रोपण के समय स्वस्थ पौधा ही आपा काम में लेवा। पौध रोपण के 10 से 12 दिन बाद मिथाइल डिमेटोन 25 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना।

और आवश्यकता अनुसार 20 दिन बाद में दोहराना चाहिए। फूल आने के बाद कीटनाशी दवा के स्थान पर मेलाथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है। सुबह के 6:55 होने को हैं और कुछ ही समय में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार श्रोताओ, साहित्य धारा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आशा मीना से कविता पाठ।
1: नमस्कार श्रोताओं, यह सवेरा मन के अंतरिक्ष में एक शांत तारे के आलोक से चमक रहा है, जिसके शीतल उजास में आज आपके सामने कविताएं सुनाने को तत्पर हूं मैं, आशा मीना। तो आरंभ करते हैं इस कविता से, जिसका शीर्षक है माँ। आज फिर माँ ने मेरा मन पढ़ लिया, सारे जग से बचा के, बहाने बना के, झूठी मुस्कान में छुपा के रखा था। वो मेरी माँ ने एक पल में समझ लिया, बस मेरे पास होने से मुझे किताब की तरह पढ़ गई। ना पन्ने ही पलटे, ना देखा मेरी आंखों में, पर मानो सारी तस्वीर उनकी आंखों में बन गई। मेरी मुस्कुराहटों पे निसार होने वाली मुझे देख के थोड़ा ठिटक गई। बिटिया, तू बड़ी हो गई है, कहकर खुद छोटी बच्ची बन गई। क्या करती माँ, आखिर तुमने खून से सींचा है, तुम्हारी ममता को पीते पीते देखो मैं भी तुम बन गई। हाँ, बड़ी हो गई तुम जैसी सशक्त, समझ रही हूं कि पीना पड़ता है अमृत के संग हलाहल, समझ रही हूं कि देख के, सुन के और बहुत कुछ नजरअंदाज करके बढ़ना पड़ता है आगे। ये भी समझ रही हूं कि माँ, तुम इसलिए मिली मुझे क्योंकि ईश्वर धरती पर आ नहीं सकते थे, वो यहाँ आकर समझा नहीं सकते थे, अपने हाथ से खाना खिला नहीं सकते थे। आज फिर माँ ने मेरा मन पढ़ लिया, जो भी छुपा के रखा था वो एक पल में समझ लिया। श्रोताओं,

माँ का क्षेत्र विस्तृत है, वह धारा भी है, दिशा भी है और दिगंत भी है। वह बहना सिखाती है, महाभारत के आदि पर्व के शांतनु गंगा संवाद से प्रेरित। सुनिए मेरी अगली रचना, गंगा। सरिता तरंगिणी गंगा को गोधुली तक निहार रहे शांतनु, उस मृग सी चंचल धारा को चक्षुओं से बांध रहे शांतनु, कोमल तरुणी गंगा को नेत्रों से साध रहे शांतनु। सहसा गंगा ने दिए दर्शन, प्रश्नों के उत्तर में किए प्रश्न। नृपश्रेष्ठ ने आतुरता में विवाह का प्रस्ताव दिया, हस्तिनापुर का आसन गंगा ने सहर्ष स्वीकार किया। गठबंधन की घड़ी निराली, मधुर दाम्पत्य सुख अनमोल, अत्यंत सुंदर थी गंगा पटरानी, राजा थे मोहित, छिने सब बोल। कदाचित एक वचन की मांग थी, जो कभी कोई सवाल किया, मैंने तुम्हें त्याग दिया, तथास्तु कहकर राजा ने बात मान ली। ऋतुएं बदली, काल बदला और वर्ष कुछ बीते थे, हाय भाग्य, नृप अभागा, उनके पुत्र न जीते थे। संग्राम मन के भीतर था, गंगा जल भी न पीते थे। जल निधि में सातों पुत्र लीन हुए, जन्म मात्र में ही सब क्षीण हुए। आठवें आगमन पर शांतनु का धीरज छूटा, सहधर्मिणी को रोक कर प्रश्न पूछा तो प्रण टूटा। राजन, तुमने वचन तोड़ दिया, इस राजगद्दी को मैंने छोड़ दिया। हस्तिनापुर की धरती डोली, गंगा चुप ही रही, कुछ न बोली। अष्ट प्रहर, अष्ट सिद्धि, अष्ट दिशाएं, अष्टम पुत्र देवव्रत गंगा पुत्र कहलाए। ज्येष्ठ चंद्रवंशी सिंहासन से वंचित रहे, थे धनी रण में नारायण को देख पाए। ऋतुएं बदली, काल बदला और वर्ष कुछ बीते थे, गंगा को खोकर अभागे शांतनु प्रेयसी की स्मृतियों को संजोते थे। वो गतिवान बहती शक्ति, वो भागीरथ की अनुपम भक्ति, वो शिव को शंकर कर गईं, कैलाश से काशी तक तर गईं। वो शिव को शंकर कर गईं, कैलाश से काशी तक तर गईं, वो हैं तारणहार वैतरणी, पुरखों को पावन कर गईं। वो सरयू में, वो यमुना में, वो शीर सागर की शैया में, जहां हो वहीं से देखना, वो अंबर में भी रहती हैं। जहां हो वहीं से देखना, वो अंबर में भी रहती हैं, तारों में सिमटकर वो आकाश गंगा बन के बहती हैं, तारों में सिमटकर वो आकाश गंगा बन के बहती हैं। क्या राजा, क्या मनुज करेगा, क्या कोई नारी को बांध सकेगा, जल समय और मोह की गति को क्यों और कैसे कोई टाल सकेगा। कहां हस्तिनापुर, कहां शांतनु, गंगा कलयुग में भी यहीं बहती हैं। जो ठहर जाएं वो नीर नहीं, जो बहते रहें वो भाव सही। तेरी और मेरी रक्त धारा वही, हमारी मुक्ति का सहारा वही। इस जीवन में, उस मृत्यु में, मेरी तृष्णा का किनारा वही। वो भूमि को धरा कर गई, गोमुख से संगम तक को हरा कर गई। राजा को तरसा कर, पुत्रों को बहा कर, सिसकियां अश्रुओं में छुपा कर, वो सबकी मैया बन गई, वो सबकी मैया बन गई। जो गंगा में जलमग्न न हो पाते, सम्राट भी क्षत्रिय ही कहलाते। राजस, वैभव, शौर्य, अभिमान, उनके प्रवाह में सब जल जाते। गंगा जल नहीं है वो माँ का, जो तट से तट को भिगोता है। वो अश्रु है मातृ प्रेम के, जो स्नेह बन के बहता है। वो अश्रु है मातृ प्रेम के, जो स्नेह बन के बहता है। स्त्री जब मौन रहती है तो संसार उसे सहनशील कहता है, पर जब वह बोलती है तो वही वाणी धर्म का दर्पण बन जाती है। उस दिन हस्तिनापुर

की सभा में केवल एक स्त्री नहीं खड़ी थी, वहां युग का साहस खड़ा था। अब सुनिए इतिहास की सबसे साहसी और संवेदनशील स्त्री से प्रेरित मेरी अगली कविता। शीर्षक है द्रौपदी। सब ओर मौन की सीमाएं, रोष को आक्रोश तोड़ रहा, बह चली स्वेद की धाराएं, नस नस में रक्त था खोल रहा। पक्षपात की अग्नि में वृद्ध जन जलते रहे, निशब्द होकर संकोच में हाय हाय करते रहे। पीकर वह अपमान घनघोर, पांडव देखते भूमि की ओर, सभा में डटी हैं द्रौपदी थाम कर साड़ी का छोर। मत भेद था, मन भेद था, कौरवों और पांडवों के विचारों में विष सा द्वेष था। कृष्णा ने कृष्ण को किया नमन, कृष्णा ने कृष्ण को किया नमन, स्त्री ने धैर्य का व्रत छोड़ा, उचित अनुचित का भेद बता, क्षत्रियों व ब्राह्मणों का भ्रम तोड़ा। पितृसत्तावाद का वहां लज्जा से मस्तक झुक गया, सुदूर कुरुक्षेत्र में उसी क्षण पांडवों का सूरज उग गया। मानवता के प्रत्येक स्तर से गिरे थे कौरव, संकोच और पश्चाताप में स्तब्ध थे पांडव। वे साहस त्याग चुके थे, अपनी पत्नी को भी पांसों से हार चुके थे। समुद्र मंथन सतयुग में हुआ, धर्म मंथन द्वापर में, सहनशीलता का घूंघट त्यागा, देवी ने मंथन कर डाला। द्रौपदी के शब्द बाणों से संबंध सब छलनी हुए, तर्क वितर्क धरे रहे, अग्रज अनुज सब गौण हुए। पांचाली भक्त थी, सखी थी, कृष्ण की वे परम स्नेही थी, वे नारियों में श्रेष्ठ नारी थी, शब्द जिनके भड़कती चिंगारी थी। मद में सोए नरों को जगा गई, अभिमान के नेत्रों से अन्याय की पट्टिका को हटा गई। द्रौपदी सबके नेत्रों से अन्याय की पट्टिका को हटा गई। हर स्त्री के भीतर एक आकाश होता है, कभी वह उलझनों की डोर में अटकी रहती है, कभी कल्पनाओं की उड़ान भरती है, तो कभी ऊंचाई से गिरने से डरती है, पर उसके भीतर उड़ने की स्मृति सदा जीवित रहती है। वह जानती है डोर भी उसी के हाथ में है और दिशा भी उसी के भीतर। अब सुनिए ऐसी उड़ान की अगली कविता, जिसका शीर्षक है पतंग। जगह भी थी, फिजा भी थी, हवा थी, डोर थी, पतंग थी, एक थी मैं बड़ी तंग थी। हवा से, शोर से, डोर से उलझी हुई थी बड़ी जोर से। पतंग गिरती थी, तैरती थी, टकराती थी छत के फर्श पर, किरकिराहट सी घिसटती थी। उंगलियों में डोर थी, पोरों से दिख रही थी, फर्श पर पड़ी पतंग उड़ने को बेताब थी। नयनतारा थी, देख रही थी मुझे, उसकी कागज की आंखें मेरे नैनों में झांक कर झिंझोड़ रही थी मुझे। मुड़कर मैंने फिर से फिजा को परखा, जगह को देखा, हवा की दिशा, डोर की उलझन सब सुलझाया, मन को समझाया, स्वयं को बांधा, झाड़ कर समेटा। इरादा पक्का था, पवन का वेग समझ में आया, तभी पतंग को हौले से बढ़ाया। धीरे धीरे डोर को छोड़ा, चरखी लुढ़की, डोर खींची, सहज खींचतान में उंगली से रक्त की बूंद टपक गई थी। पतंग वायु वेग से कुछ ऊंची उठ चली थी, बढ़ते बढ़ते चलते चलते आखिर उड़ चली थी। मेरी नयनतारा मेरे हाथों का विस्तार बन गई थी। बढ़कर मैंने नव की उंगलियां छू ली थीं, सब शंकाएं दूर होती दिखाई दी थी। अदम्य साहस, असीमित आकांक्षाएं पूरी छत पर फैली हुई थीं। उस वक्त उस छत पर उस डोर से बंद कर मैं ही उड़ी थी, इस छोर से उस छोर तक श्वास मेरी ही थी, इस छोर से उस छोर तक श्वास मेरी ही थी। जब एक स्त्री अपने भीतर की धारा और ज्वाला को पहचान लेती है, तो वह किसी से अनुमति नहीं मांगती, वह जान लेती है बदलाव बाहर नहीं भीतर से प्रारंभ होता है, और यह परिवर्तन

0: आगे बढ़, हिम्मत रख, हर बेड़ी को तोड़कर लक्ष्य साध और लगा छलांग, कर अपने हृदय को बुलंद। ध्यान हटाकर ध्यान लगा, दायरा अपना और बढ़ा, एक श्वास में जीवन पी जा, जो जिया नहीं उसे जी जा। झरने तोड़कर चख जरा, अपने हाथों पर डाल नजर, आंखें खोल, मुट्ठी बना, कर ले सारे गम शिकस्त। मैदान, चट्टान, नाले, नदियां, दौड़कर इनको कर फतेह, चटकने दे पैरों तले कुछ पत्ते और टहनियां। वो आंधी थी, तू है तूफान, लक्ष्य तेरा है खड़ा अटल। निडर हो जा गुमराह, खोकर फिर से राह पकड़। निडर हो जा गुमराह, खोकर फिर से राह पकड़।
1: साहित्य धारा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आशा मीना से कविता पाठ। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: साहित्य धारा।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमिर चैनल है और श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य धारा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यहाँ मेरी चैनल है मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। सुबह के 7:15 हुए हैं और श्रोताओं, अभी वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। पहला गाना आप सुनेंगे फिल्म मॉनसून वेडिंग से, जिसे गाया है फरीदा खानुम ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।
1: आज जाने

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल है और श्रोताओं भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गाना पेश है फिल्म वेकअप सिट से, जिसे गाया है कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य ने। इसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

0: अरे अम्मा जी, जरा मुन्ने को संभाल लेना, मैं बाबूजी के लिए चाय बना रही हूँ।
1: देखती हूँ। अरे रे रे, इसने तो पोटी कर दी। अरे बेटा, तूने तो सारे हाथ पांव सब सान लिए। अरे मुन्ने के दादाजी।
2: अरे क्या है?
1: जरा एक लोटा पानी का तो लेकर आओ।
2: वो बहू कहाँ गई?
1: वो तुम्हारे लिए चाय बना रही है।
2: ठीक है, आता हूँ।
3: ये लो, लो दो।
1: हाँ, जरा ठीक से डालो।
3: हाँ, लो, लो, लो।
1: इधर इधर इधर।
3: हाँ, ये ले, बस हो गया।
1: लो, तुम मुन्ने को संभाल लो, मैं बहू को जाकर भेजती हूँ।
3: अरे लेकिन सुनो तो सही, पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ तो धो लो।
1: क्यों, क्या हुआ? मुन्ने की ही तो पॉटी है और मुन्ना तो सिर्फ दूध पीता है, ये कौन सा नाच खाता है?
3: अरे बावली, वैसे बीमारी के कीटाणु तो मल चाहे बच्चे का हो या बड़े का, दोनों में ही होते हैं। इसलिए पोटी साफ करने के बाद भी अच्छी तरह साबुन से हाथ धोने चाहिए।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
6: अगला गाना फिल्म लैला मजनू से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने और बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमिर चैनल है। सुबह के 7:31 हुए और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गाना आप सुनेंगे फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। इसको गाया है अलाइसा मेंडोसा और मोहित चौहान ने, बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-22233।
2: अगला गाना फिल्म बर्फी से, इसे गाया है शफकत अमानत अली ने और बोल लिखे हैं सईद ने, संगीतकार हैं प्रीतम।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यामेर चैनल है मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़। श्रोताओं भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गाना पेश है फिल्म भाग मिल्खा भाग से। इसे गाया है श्रेया घोषाल और जावेद बशीर ने, बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

0: अब ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: अगला गाना किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म है गोलमाल। इसके बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल है और श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गाना पेश है फिल्म परिचय से, किशोर कुमार की आवाज़ में और बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत दिया है RD बर्मन ने।

0: सिक्सटीज की मेलोडीज हो या सेवेंटीज का मैजिक।
1: तेरे बिना जिया जाए ना।
2: एटीज में था डिस्को, नाइन्टीज का मूड रोमांटिक।
3: दिल है के मानता नहीं।
0: 2000s में था बदलाव पे जोर।
2: और अब है पार्टी सॉन्ग्स का दौर।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: यू से इट, वी प्ले इट।
2: दिस इज 101.2 FM, जयपुर का अपना FM। सुनते जाओ, सुनाते जाओ, संग हमारे गुनगुनाते जाओ।
5: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
9: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
8: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
9: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
8: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
10: अगला गाना फिल्म जन्नत से KK की आवाज में। इसके बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। सुबह के 8 बजने को है और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए

0: उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
1: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जाँच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। ACB के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जांच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
3: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार

0: और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया, वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में

0: India poll rules to push US voter ID bill, states Hindustan Times. Pakistan Supreme Court orders Imran Khan be moved to hospital, reports the Asian Age. And finally, vocational education third language must for class 9 from the current academic session, writes the Times of India about Delhi government's revised class 9 examination and promotion policy. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves incentive scheme to accelerate domestic PNG connections. National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protest. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satender Jain and five others in the Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile threat. And India to take on Pakistan in the crucial Pool D match of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुतालिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाब्तगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। दिल्ली सरकार के बदनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सतेंद्र जैन और पाँच दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। मुत्तहिद अरब इमारात ने ईरान से मिज़ाइल खतरे का इल्ज़ाम लगाते हुए उसके साथ सभी तिजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडैम में आज FIH मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन को फरोग देने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद पूरे मुल्क में घरों तक पाइप के जरिए माहौलियात के लिए साजगार, महफूज और कम खर्च खाना पकाने की गैस पहुंचाना है। मस्कूरा स्कीम का इतलाक अगले महीने की पहली तारीख से होगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि पीएनजी कनेक्शन की तादाद में तेजी के साथ तौसी की खातिर ये स्कीम बनाई गई है ताकि मजीद कुनबे जल्द से जल्द अपनी रसोई में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकें। फिलहाल मुल्क में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मस्कूरा स्कीम 6 महीने के अरसे में 2 मरहलों में नाफिज की जाएगी। वजारत ने कहा है कि पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस LPG सिलेंडर और खाना पकाने के काम आने वाली रिवायती ईंधन का एक महफूज और ज्यादा सहूलत वाला मुतबादल है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी NTA ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुतालिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तालीम की वजारत ने कहा है कि इम्तिहान के पर्चों की जांच को मुस्तहकम बनाने की खातिर NTA सवाल नामों को चेक करने का 4 सथी निज़ाम नाफिज करेगी। इसके अलावा ये एजेंसी अगले 2-3 हफ्तों के दौरान 20-25 अहदेदारों को भी शामिल करेगी। इसके साथ साथ इम्तिहान कराने वाली एजेंसी NTA के दफातर नए मकाम पर मुंतकिल किए जाएंगे जहां CISF की टीमों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। इम्तिहानात को खुश उसलूबी के साथ कराने के लिए सिक्योरिटी और मुतालिका बुनियादी ढांचे की तमाम जरूरी सहूलियात दस्तियाब कराने की वजीर तालीम प्रहलाद जोशी की हिदायत के तनाजुर में NTA ने यह फैसला किया है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में कल रात उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाब्तगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: झारखंड सरकार ने نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ منسوخ کیے گئے امتحانات میں جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی جے ایس ایس

0: और एक एजेंसी TDPL समेत दीगर एजेंसियों के जरिए कराए गए इम्तहान शामिल हैं। जो इम्तहान मनसूख किए गए हैं उनमें ड्रग इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर्स, सिविल जज और फॉरेस्ट रेंज अफसरों की भर्ती के इम्तहान शामिल हैं। इसके अलावा महकमे जंगलात के असिस्टेंट कंजर्वेटर्स और दीगर इंतजामी नीज तकनीकी ओहदों पर भर्ती के इम्तहान भी मनसूख किए गए हैं। सरकार ने 6 इम्तहान मुलतवी करने और 17 इम्तहानात की CID तहकीकात का भी हुक्म दिया है। JPSC और JSSC इम्तहानात में मुबैना बेजाबतगियों से मुतालिक केसों के लिए हाईकोर्ट से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त की जाएगी। इन दोनों कमीशनों में दाखिली विजिलेंस शोबे भी बनाए जाएंगे, जबकि आला IAS अफसर अमिताभ कौशल की सरबराही में एक कमेटी इम्तहानात के निजाम में इस्लाहात की सिफारिश करेगी। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: दिल्ली सरकार के बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में दिल्ली के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली जल बोर्ड के साबिक CEO उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि दिल्ली जल बोर्ड के पानी को साफ करने के प्लांट्स को जदीद तर्ज पर ढालने और उन्हें बेहतर बनाने से मुतालिक टेंडर के अमल में मुबैना बेजाबतगियों और मुजरिमाना साजिश के सिलसिले में ये गिरफ्तारियां की गई हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: विजिलेंस डायरेक्टोरेट की शिकायत पर इन अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। छानबीन के दौरान ये मालूम हुआ कि टेंडर के अमल में एक मखसूस टेक्नोलॉजी फर्म को फायदा पहुंचाने के मकसद से शरायत रखी गई थी, जिससे टेंडर का अमल महदूद होकर रह गया और एक मखसूस प्राइवेट कंपनी को नामुनासिब फायदा पहुंचाया गया। इसके अलावा छानबीन से ये भी इंकशाफ हुआ कि टेंडर के अमल में हेराफेरी करने के लिए कुछ अफराद मुबैना तौर पर कुछ सरकारी अहलकारों और बिचौलियों के साथ राबता कायम किए हुए थे। बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने कहा है कि इससे कुछ अफराद और सरकारी अहलकारों के दरमियान मुबैना साजबाज का पता चलता है। रकम के लेन देन और इस जुर्म से हासिल होने वाली मुबैना रकम की पूरी जांच की जा रही है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मगरबी बंगाल में कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 अफराद की मौत हो गई जबकि 6 जख्मी हुए। पुलिस जराये के मुताबिक आग लगने का यह वाकया रात देर गए 2 बजे के आसपास पेश आया। मालूम हुआ है कि 5 मंजिला इमारत की 3री मंजिल से घना धुआं उठता हुआ देखा गया। इब्तदाई छानबीन से मालूम हुआ है कि मस्कूरा होटल में आग बुझाने से मुतालिक कोई निजाम नहीं था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी और इलाकाई और बैनुल अक्वामी सलामती को खतरे के ताल्लुक से तशवीश का हवाला देते हुए अगले हुक्म तक ईरान के साथ तमाम तरह की तिजारत, कमर्शियल सरगर्मियां और माली लेन देन मुअत्तल कर दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने वजारत खारजा में कम्युनिकेशन डायरेक्टर अफरा अल हामिली ने कहा है कि इस फैसले का मकसद बैनुल अक्वामी कानून और आलमी मेयारात के मुताबिक खित्ते के इस्तेहकाम की हिफाजत करना और बैनुल अक्वामी मालियाती निज़ाम की सालमियत को बरकरार रखना है। इस ऐलान से कबल UAE ने कहा था कि उसके फजाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की तरफ से खलीज की तरफ दागे गए 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल का पता लगाया था। बाद में वजारत दिफा ने बताया कि ये दोनों मिज़ाइल बहरी जहाजरानी को निशाना बनाने के मकसद से दागे गए थे जो समंदर में जा गिरे। UAE ने कहा है कि वो अमन और इस्तेहकाम के जरिए के तौर पर मुज़ाकरात, बाहमी तआवुन और इलाकाई हमाहंगी के तई अहद बस्ता है। ईरान की तरफ से UAE के इल्ज़ामात के सिलसिले में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। ताहम ईरान ने इंतबाह दिया है कि आबनाए हुरमुज़ तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक अमरीका के साथ कोई अमन मुआहदा न हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुज़ाकरात कारों की टीम से कहा है कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात को तब तक के लिए रोक दें जब तक कि ईरान किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इंतजामिया ने ईरान के साथ सिफारती रबते के सिलसिले में कोई इख्तलाफ राय नहीं है। यह पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है कि जब आबनाए हुरमुज़ की सूरतहाल और अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के सिलसिले में इन दोनों ममालिक की तरफ से मुतनाज़ बयानात सामने आ रहे हैं। इस दौरान ईरान ने कहा है कि वो आबनाए हुरमुज़ को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमरीका 14 निकाती मुफाहमत नामे के तहत वादों को पूरा नहीं करता, जिसमें नाकाबंदी खत्म करना, ईरान

अगला गाना किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म है मंजिल, इसके बोल लिखे हैं योगेश ने और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गाना पेश है फिल्म रक्षाबंधन से। इसे गाया है हिमेश रेशमिया, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने। साथ ही इसके बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का है आमिर चैनल है और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये था आज का हमारा आखिरी गीत। सुबह के 9 बजने को है और कुछ ही समय में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र की कल से शुरुआत। समान नागरिक संहिता सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की संभावना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक 5000 मेगावाट से अधिक क्षमता के लगभग 2500 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए और प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ा। अगले 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 वैज्ञानिक विशेषज्ञों को हटा दिया है और नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के दफ्तरों के लिए सीआईएसएफ की सुरक्षा भी ली जाएगी। एनटीए ने यह फैसला शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है, जिसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। केंद्र सरकार ने पाइप से रसोई गैस कनेक्शन घर घर तक पहुंचाने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य साफ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना अगले महीने की 1 तारीख से 6-6 महीने के लिए 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का मकसद ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पाइप वाली रसोई गैस पहुंचाना है। फिलहाल देश में 1.74 करोड़ घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता, यूसीसी, भू जल संरक्षण, धर्मांतरण और सहकारिता से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश किए जाने की संभावना है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में जयपुर में कल सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री देवनानी ने सभी दलों के सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में 690 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री बिरला ने शहर के समग्र विकास के लिए 7000 करोड़ रुपए की दीर्घकालीन योजनाओं का रोड मैप भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कोटा के सभी 100 वार्डों को स्मार्ट वार्ड के रूप में विकसित किया जाएगा, साथ ही डिजिटल सेवाओं के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को उनके घर के नजदीक ही उपलब्ध कराया जाएगा।
1: अब आने वाला समय डिजिटल का समय है। हमने नगर निगम के लिए से कहा है, कोई व्यक्ति घर बैठकर भी अपनी समस्या

0: को बताता है तो जैसी समस्या उसका समाधान उसी तरीके से होना चाहिए। छोटी छोटी जो समस्या है, जो आम आदमी की समस्या है, और कोई भी गरीब व्यक्ति हो चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसको निःशुल्क रूप से हिंदुस्तान के किसी भी कोने में निःशुल्क रूप से पहुंचाने का काम हमने किया।
1: प्रदेश में आजीविका से जुड़ी महिलाओं की आय और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं को आपस में जोड़ा जाएगा। कल जयपुर में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने अधिकारियों को योजनाओं को आजीविका से जोड़ने की कार्य योजना बनाने को कहा। कृषि और पशुपालन विभाग की योजनाओं के जरिए महिलाओं को प्राकृतिक खेती, ड्रोन, बीज उत्पादन, पशु बीमा और दुग्ध गतिविधियों से जोड़ने पर चर्चा की गई। वहीं सहकारिता, देवस्थान और पर्यटन विभागों के माध्यम से आजीविका उत्पादों के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। इस बीच जयपुर के शासन सचिवालय परिसर में आजीविका राखी मेला लगाया गया है। कल से शुरू हुए इस मेले में प्रदेश के 12 जिलों की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के अपने हाथों से तैयार राखियां, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। ये मेला 21 अगस्त तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक 5000 मेगावाट से अधिक क्षमता के लगभग 2500 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। वहीं फीडर स्तर पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता के आधार पर राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल योजना के लाभार्थी किसानों से संवाद के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए अतिरिक्त आय और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रही है। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री हीरा लाल नागर, कई अधिकारी और सौर ऊर्जा उत्पादक किसान मौजूद रहे। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बाड़मेर में जिला स्तरीय वन महोत्सव कल आयोजित किया गया। सरकारी न्यू मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने पौधरोपण कर वन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जन भागीदारी मजबूत करने पर जोर दिया।
2: हरियालो राजस्थान का जो लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने लगातार ये तीसरा वर्ष है, प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ वृक्ष लगाने का, तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जो एक जन जागरण अभियान बन चुका है, ये वाकई तारीफ काबिल है। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जो एक जन जागरण अभियान के रूप में लोगों के मन में एक जो जागृति उत्पन्न करी है पर्यावरण को लेकर के, वृक्षों को लेकर के, चारों तरफ ही पौधे पौधे दिख रहे हैं।
1: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार देश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। वे श्रीगंगानगर में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान ऑपरेशन सीमा संकल्प की सराहना की। उन्होंने अभियान को जन भागीदारी से स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण प्रयास बताया। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालांकि आज लगभग 10 जिलों में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट है। इनमें राज्य के उत्तर पूर्वी जिले शामिल हैं। भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 23 अगस्त तक हल्की बरसात का दौर बना रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में कमजोर मॉनसून परिस्थितियों के चलते अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कल से 22 अगस्त तक हल्की से मध्यम बरसात का पूर्वानुमान है। नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में तीजोत्सव 2026

0: आयोजित किया जा रहा है। उत्सव में राजस्थानी कला, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल रैंप वॉक आयोजित किया गया। महिला, पुरुष और बच्चों ने राजस्थानी परिधान पहनकर रैंप वॉक किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि राजस्थानी परिधान प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतीक है। उत्सव में आज गायन प्रतियोगिता, कल साफा पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं 23 अगस्त को रस्साकशी और लोक कलाकार कुटले खां की प्रस्तुति होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत कल से। समान नागरिक संहिता सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की संभावना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक 5000 मेगावाट से अधिक क्षमता के लगभग 2500 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए और प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ा, अगले 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहने का पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है, मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: खुले पैसों की समस्या से छुटकारा।
6: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2026 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।
7: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
8: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
7: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
8: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
7: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
9: कर, कोई नहीं, आराम से कर ले। हो गई, कर ली पोटी। अरे माया
10: आई माँ जी।
9: अरे ये पोंछा वोंछा बाद में लगाना, पहले चुन्नू की पोटी धुलवा दे।
10: लो दो,
9: इधर डाल, इधर पांव पे लग रही है, इधर
10: से दो, उधर से दो। हाँ, वो दो उधर।
9: अब मेरा राजा बेटा अपनी माँ के पास दूध पीने जाएगा। माया, मैं चुन्नू को बहू को देकर आ रही हूँ, तब तक तू ये चुन्नू की पोटी सामने जो खाली प्लॉट है ना वहाँ पे फेंक दे।
10: क्यों, खाली प्लॉट में क्यों, बाहर क्यों, संडास में क्यों नहीं? बाहर फेंकूंगी तो मक्खियाँ नहीं भिन आएंगी। हाँ,
9: अरे तू कहना क्या चाहती है?
10: तो जरा सोचिए माँ जी, जब मैं चुन्नू की पोटी खाली प्लॉट में खुले में फेंक के आऊंगी, तब उस पे मक्खियाँ नहीं बैठेंगी, और फिर वही मक्खियाँ उनके खाने पीने की चीजों, मुन्ने की दूध की बोतल और घर की अन्य चीजों पे बैठ के उन्हें अशुद्ध नहीं करेंगी, बीमारियाँ नहीं फैलाएंगी।
9: ये बात तो है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं।
10: तो अब सोचिए माँ जी।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है, मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है और श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो जयपुर। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और आज फिर हाजिर हूं एक ऐसे विषय के साथ जो शायद हम सभी के दिल में बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं उस चीज़ को। आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो हमारी ज़िंदगी के हर दौर की साथी रही है, संगीत और गीतों की। ज़रा सोचिए, दादा दादी के समय के गीत, फिर हमारे माता पिता के मनपसंद गाने, हमारे बचपन के गाने और आज की नई पीढ़ी के गाने। हर पीढ़ी का संगीत अलग है। किसी को पुराने गीतों का मिठास पसंद है, किसी को 90 के दशक की धुनें और किसी को 2000 के दशक का संगीत, और आज की पीढ़ी को नए प्रयोग और तेज़ बीट्स। लेकिन एक बात बिल्कुल नहीं बदली, संगीत सुनते ही दिल का किसी ना किसी याद से जुड़ जाना। तो आज का हमारा सफ़र होगा पुराने दौर से लेकर आज के दौर तक का। शुरुआत करते हैं उस दौर से जब गीतों में सादगी थी, आवाज़ में मिठास थी और शब्द सीधे दिल तक पहुंचते थे।

1950 और 60 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए बेहद खास था। इस दौर में संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।

इस दौर ने हमें लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश और मन्ना डे जैसे महान आवाज़ें दीं। गीतों में प्रेम था, विरह था, दोस्ती थी और जिंदगी की छोटी छोटी भावनाएं थीं। उस समय के संगीतकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और पश्चिमी संगीत के अलग अलग तत्वों को मिलाकर ऐसी धुनें बनाई जो आज भी याद करी जाती है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक अलग ही अपनापन था और लता जी की आवाज़ में ऐसी मिठास कि गीत सुनते ही मन ठहर सजाता था। अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत आवाज़ में ये अगला गीत।

0: खुले पैसों की समस्या से छुटकारा।
1: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2026 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यामी चैनल है मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़। श्रोताओं भी हम बात कर रहे हैं आज हेलो जयपुर के कार्यक्रम में उन गानों की जो पुराने सदी से आगे तक कैसे चले आ रहे हैं। अब आते हैं 1970 और 80 के दशक में। ये वह समय था जब हिंदी फिल्मों का संगीत एक नए रंग में दिखाई देने लगा। RD बर्मन जैसे संगीतकारों ने प्रयोग किए, नई ध्वनियाँ आई, नए वाद्य यंत्रों का प्रयोग बढ़ा और गीतों में एक अलग आधुनिकता दिखाई देने लगी। ऐसे दौर में किशोर कुमार की आवाज़ युवाओं की पसंद बन गई। उनके गीतों में रोमांस था, मस्ती भी थी और जिंदगी को खुलकर जीने का अंदाज भी था। तो क्यों ना इस दौर की खूबसूरत धुन सुने। फिल्म है मेरे जीवन साथी किशोर कुमार की आवाज़ में। इसके बोल लिखे हैं मजरू ने और संगीतकार हैं RD बर्मन।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: फिर से स्वागत है आप सबका हेलो जयपुर के कार्यक्रम में। 1970 और 80 का दौर सिर्फ रोमांटिक गीतों का नहीं था। इस दौर में दोस्ती, परिवार, देशभक्ति और जिंदगी के संघर्ष पर भी शानदार गीत बने। और फिर आया ये दौर जब डिस्को ने हिंदी संगीत में दस्तक दी। तो लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म डिस्को डांसर से। इसको गाया है विजय ने और इसके संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: खुले पैसों की समस्या से छुटकारा।
1: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2026 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।
2: देखिए, संगीत बदल रहा था, लेकिन लोगों का प्यार संगीत के लिए वैसा ही था। 1990 का दशक संगीत की नहीं पहचान थी। अब बात उस दशक की, जिसे आज भी बहुत से लोग म्यूजिक का गोल्ड टाइम कहते हैं, 90 का दशक। 1990 के दशक में बॉलीवुड संगीत ने रोमांस को एक नई पहचान दी। कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णामूर्ति, अभिजीत और सोनू निगम जैसी आवाजें घर घर तक पहुंची।

कैसेट का दौर था, लोग गानों की कैसेट खरीदते थे, गाने रिकॉर्ड करते थे और अपनी पसंद के गानों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाते थे। हालांकि उस समय उसे प्लेलिस्ट नहीं कहा जाता था। और फिर आई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि 90 के दशक के प्रेम की पहचान बन गया। इसी दौर में हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है जैसी फिल्मों ने संगीत को नई ऊंचाइयां दी। 90 का दशक हमें यह सिखाता है कि संगीत सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है, यह हमारी यादों का हिस्सा बन जाता है। अब हम पहुंचते हैं 2000 के दशक में। यह वह दौर था जब संगीत में तेजी से बदलाव आने लगा, कैसेट से सीडी और फिर डिजिटल संगीत की तरफ सफर शुरू हुआ। एआर रहमान, शंकर एहसान लॉय, प्रीतम, विशाल शेखर जैसे संगीतकारों ने बॉलीवुड संगीत को नए प्रयोग दिए। इस दौर में रोमांटिक गानों के साथ साथ रॉक, पॉप और इलेक्ट्रॉनिक संगीत का प्रभाव भी बढ़ने लगा। सोनू निगम, श्रेया घोषाल, के सुनिधि चौहान और मोहित चौहान जैसी आवाज़ों ने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई। सुनते हैं एक ऐसा गीत जो आज भी युवाओं को बहुत पसंद है।

और फिर आया एक ऐसा दौर जब संगीत सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, इंडी म्यूजिक बैंड्स और स्वतंत्र कलाकारों को भी पहचान मिलने लगी। यानी संगीत अब बड़े पर्दे से निकलकर सीधे लोगों के मोबाइल और कंप्यूटर तक पहुंच रहा था। 2010 के बाद संगीत की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल गई। अब हमारे पास गाने सुनने के लिए कैसेट या सीडी की ज़रूरत नहीं थी, मोबाइल उठाए और दुनिया भर का संगीत आपके सामने। इस दौर में अरिजीत सिंह की आवाज़ ने लोगों का दिल जीत लिया। उनके रोमांटिक गीतों ने एक पूरी पीढ़ी को अपनी तरफ आकर्षित किया। साथ ही नेहा कक्कड़, मोनाली ठाकुर, आतिफ असलम, जुबिन नौटियाल जैसे गायकों ने भी लोकप्रियता

हासिल करें। तब तक के लिए सुनिए फिल्म आशिकी 2 से अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये अगला गाना।

और अब बात करते हैं आज की पीढ़ी की। आज संगीत की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अब सिर्फ बॉलीवुड ही संगीत का केंद्र नहीं है। इंडी म्यूज़िक, रैप, हिप हॉप, रीमिक्स, फ्यूजन और स्वतंत्र कलाकार युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। आज कलाकार सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सीधे अपने श्रोताओं तक पहुँच सकते हैं। अरिजीत सिंह, अरमान मलिक, अनूप जैन, प्रतीक कुहाड़ जैसे अलग अलग कलाकारों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। नई पीढ़ी के गीतों में भाषा भी बदल रही है। हिंदी के साथ अंग्रेजी, पंजाबी और दूसरी भाषाओं का मेल दिखाई देता है। इस नए दौर का एक लोकप्रिय गीत पेश है अनूप जैन की आवाज़ में।

0: खुले पैसों की समस्या से छुटकारा।
1: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2026 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
4: मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये संगीतमय सफ़र आपको अपने पसंदीदा दौर की कुछ खूबसूरत यादों तक ज़रूर लेकर गया होगा। आप चाहे पुराने गीतों के दीवाने हो या नए संगीत के, संगीत को सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत यादों को याद करते रहिए। तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और संगीत से जुड़े रहिए। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो जयपुर।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है, मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़। श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे हैं हेलो जयपुर के कार्यक्रम में यायावर की। पुष्कर, जहां आस्था, संस्कृति और रेगिस्तान मिलकर एक कहानी कहते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त जानवी और आज के यायावर सफ़र में हम चलेंगे राजस्थान की एक ऐसी जगह जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से होती है। शाम ढलते ही घाटों पर दीप जल उठते हैं और दूर तक फैला रेगिस्तान इस पूरे माहौल को एक अलग ही रंग दे देता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पुष्कर की। राजस्थान का नाम आते ही हमारे मन में किले, महल, हवेलियाँ और रेगिस्तान की तस्वीर बनने लगती है। लेकिन राजस्थान में एक ऐसी जगह भी है जो अपनी राजसी विरासत से ज़्यादा अपनी आध्यात्मिकता और रंगीन संस्कृति के लिए जानी जाती है। पुष्कर अजमेर से कुछ ही दूर पर बसा ये छोटा सा शहर अपने अंदर हजारों वर्षों की आस्था और परंपरा समेटे हुए है। यहाँ एक तरफ पवित्र पुष्कर झील है जिसके चारों ओर घाट बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ भगवान ब्रह्मा का प्रसिद्ध मंदिर। और अगर आप पुष्कर मेले के दिनों में यहाँ पहुँच जाएं, तो यही शान शहर अचानक रंगों, संगीत, ऊँटों, लोक कलाकारों और देश विदेश से आए पर्यटकों से भर जाता है। तो आइए आज हम सिर्फ पुष्कर को देखने नहीं बल्कि उसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान की मिट्टी और लोक रंग से जुड़े एक गीत का।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का है आमेर चैनल है, मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो जयपुर और आज हम बात कर रहे हैं पुष्कर की। कुछ समय के लिए हम विराम लेंगे और अभी आप सुनेंगे विश्व दर्पण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के कारोबारियों से भारत में निवेश तथा साझेदारी को अधिक मजबूत करने का आह्वान किया। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जब तक ईरान समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इसराइल ने सीरिया के इदलिब प्रांत में अबू दुहूर हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है।
1: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिंगापुर के दौरे पर हैं। उनके साथ प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। 2022 में स्थापित मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन भारत और सिंगापुर के बीच एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय आर्थिक तंत्र है। ये उन्नत विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता सहित 6 स्तंभों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं से बातचीत में श्री जायसवाल ने शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
2: जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं। और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडैरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के ये बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमीरात के इस दावे का खंडन किया है कि ईरान ने अमीरात की ओर कोई मिसाइल दागी थी। ईरान ने अमीरात के आरोपों पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि ईरान ने चेतावनी दी है कि अमरीका के साथ शांति समझौता होने तक होर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत तब तक के लिए रोकने को कहा है जब तक ईरान किसी समझौते के लिए तैयार न हो जाए। अमेरिकी प्रशासन ने यह फैसला तब लिया जब होर्मुज जल डमरू मध्य की स्थिति

0: हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इसराइल ने सीरिया के उत्तर पश्चिमी प्रांत इदलीब में अबू दोहर एयरबेस पर हवाई हमले किए हैं। इसराइल ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य एयरबेस पर तुर्कीय सैनिकों की तैनाती को रोकना था।
2: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि एयरबेस पर तुर्की सैनिकों की तैनाती की अनुमति देकर सीरिया ने मौजूदा सुरक्षा समझौते के उल्लंघन की कोशिश की थी। ऐसी तैनाती सुरक्षा के लिए खतरा है। उधर सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शिबानी ने इस हमले को उकसावे की कार्रवाई और संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को खतरा हो सकता है। तुर्की ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसराइल की सीरिया के विरुद्ध बढ़ती आक्रामकता को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपील की है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब सीरिया में प्रभाव को लेकर इजराइल और तुर्की के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है। तुर्की के सीरियाई सरकार के साथ करीबी संबंध है और वह उसकी सेना को सहायता देता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की इच्छा जताई है। दोनों नेताओं के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ये पहल ब्राजील और अमरीका के बीच बढ़ते राजनीतिक और व्यापारिक तनाव के बीच हुई है। राष्ट्रपति लुला ने हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो ब्राजील में होने वाले आगामी राष्ट्रपति चुनाव में अमरीका की संभावित दखलंदाजी को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप से बात करना चाहते हैं। ब्राजील सरकार को आशंका है कि चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए विदेशी दखल हो सकता है। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि फिलहाल सैन्य दखल की संभावना कम है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के पश्चिमी भाग में सोने की एक खदान में धंसने से करीब 30 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। हादसे में कई अन्य मजदूरों के फंसे होने की भी आशंका है। यह हादसा कल नाना मोम्बेरे प्रांत के अब्बा क्षेत्र में हुआ। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि बचाव दल और स्थानीय लोगों ने कई घंटों की कोशिश के बाद खदान से 30 शव बाहर निकाले। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
3: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के कारोबारियों से भारत में निवेश तथा साझेदारी को अधिक मजबूत करने का आह्वान किया। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जब तक ईरान समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इसराइल ने सीरिया के इदलीब प्रांत में अबू दोहर हवाई अड्डे पर हमले किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। मैच आज शाम 6:30 बजे से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, आपका वापस से स्वागत है हेलो जयपुर के कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं यायावर के सेगमेंट में पुष्कर की। पुष्कर की सबसे बड़ी पहचान है भगवान ब्रह्मा से जुड़ी इसकी धार्मिक मान्यता। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। भारत में ब्रह्मा जी को समर्पित मंदिर बहुत कम है और पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर इनमें सबसे प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने एक राक्षस का वध किया तो उनके हाथ से एक कमल का फूल धरती पर गिरा। जिस स्थान पर कमल गिरा वहां एक झील का निर्माण हुआ। इसी कमल से जुड़ी मान्यता के कारण इस जगह का नाम पुष्कर पड़ा। पुष्कर शब्द का संबंध भी कमल से माना जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर यज्ञ करने का निर्णय लिया था और यही वजह है कि आज भी देश भर से श्रद्धालु पुष्कर आते हैं। पुष्कर की गलियों में घूमते हुए आपको हर कुछ कदम पर कोई मंदिर, कोई छोटा सा पूजा स्थल या कोई घाट दिखाई दे सकता है। लेकिन पुष्कर की खूबसूरती सिर्फ मंदिरों में नहीं, यहाँ की असली खूबसूरती है आस्था और आम जिंदगी का साथ साथ चलना। सुबह घाट पर पूजा करता कोई श्रद्धालु, पास ही बैठे साधु, गलियों में घूमते विदेशी पर्यटक, राजस्थानी कपड़े पहने स्थानीय लोग और दुकानों से आती अगरबत्ती की खुशबू, यही है पुष्कर। अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म है मुगले आज़म।

अब जरा कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, आसमान हल्का सा सुनहरा है, घाट की सीढ़ियों पर लोग बैठे हैं, कहीं पूजा हो रही है, कहीं आरती की तैयारी है और कहीं कोई शांत होकर पानी को देख रहा है। आप हैं पुष्कर झील के किनारे। पुष्कर झील शहर के बीचों बीच स्थित है और इसके चारों ओर कई घाट हैं। इन घाटों का अपना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि पुष्कर झील में स्नान करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। लेकिन अगर आप एक यात्री की नज़र से देखें तो इस झील की खूबसूरती किसी धार्मिक मान्यता से भी आगे निकल जाती है। ये वह जगह है जहां आप कुछ देर बैठकर सिर्फ आसपास की जिंदगी को देख सकते हैं। कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई अपने परिवार के साथ आया हुआ है। कोई शायद पहली बार राजस्थान को इतने करीब से महसूस कर रहा है, यही तो यात्रा की खूबसूरती है। हम किसी जगह पर जाते हैं, तस्वीरें लेते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जो हमारे साथ वापस आती है। पुष्कर उन्हीं जगहों में से एक है। शाम के समय जब घाटों पर आरती होती है और दीपक जलते हैं तो पूरा वातावरण बेहद शांत और सुंदर हो जाता है। इस माहौल के लिए एक खूबसूरत सा गीत आपके लिए, फिल्म आजा नचले से।

0: खुले पैसों की समस्या से छुटकारा।
1: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2024 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

अब चलते हैं पुष्कर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर की ओर, ब्रह्मा मंदिर। मंदिर के बारे में बात करें तो इसकी वास्तुकला और धार्मिक महत्व दोनों इसे विशेष बनाते हैं। मंदिर के अंदर भगवान ब्रह्मा की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, लेकिन पुष्कर की धार्मिक पहचान केवल ब्रह्मा मंदिर तक सीमित नहीं है। यहाँ कई अन्य मंदिर भी हैं। इनमें सावित्री माता का मंदिर भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सावित्री माता का मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। आज यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों के साथ साथ रोप वे की सुविधा भी मिलती है। ऊपर पहुंचकर दिखाई देने वाला पुष्कर का दृश्य अपने आप में ही बहुत सुंदर लगता है। नीचे पूरा शहर, बीच में झील, चारों ओर अरावली की पहाड़ियां और दूर तक फैला राजस्थान। यानी एक ही जगह से आपको पुष्कर की धार्मिकता, प्रकृति और संस्कृति तीनों दिखाई दे जाती हैं, और शायद यही पुष्कर की खासियत है। यह शहर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके अंदर अनुभव बहुत बड़ा है। और अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें राजस्थान की मिट्टी की खुशबू महसूस होती है। फिल्म हम दिल दे चुके सनम से।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो जयपुर। आज यायावर के सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं पुष्कर की। अब बात करते हैं पुष्कर की उस पहचान की जिसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होती है। पुष्कर मेला। कार्तिक पूर्णिमा के आसपास लगने वाला यह मेला राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक और पशु मेला में से एक है। कल्पना कीजिए, एक तरफ हजारों ऊंट, उनकी सजावट, राजस्थानी पगड़ियां,

रंग बिरंगे कपड़े, लोक संगीत, ढोल और दूसरी तरफ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटक। पुष्कर मेला सिर्फ व्यापार का आयोजन नहीं है, ये राजस्थान की लोक संस्कृति का एक जीवंत रूप है। यहाँ घंटों की खरीद बिक्री होती है, पशु प्रतियोगिताएं होती हैं, लोक कलाकार अपनी कला प्रस्तुत करते हैं और अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महिलाओं के रंग बिरंगे घाघरे, पुरुषों की अलग अलग रंगों की पगड़ियां और रेगिस्तान की सुनहरी रेत, ऐसा लगता है जैसे पूरा राजस्थान एक जगह आ गया हो। और इसी वजह से पुष्कर मेला सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाता है। तो इस रंगीन माहौल में एक राजस्थानी गीत तो बनता ही है।

अगर आप पुष्कर जाएं और उसकी गलियों में ना घूमें तो शायद आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। पुष्कर की छोटी छोटी गलियां अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ आपके रंगीन कपड़े, राजस्थानी आभूषण, हस्तशिल्प चूड़ियाँ, सजावटी सामान और स्थानीय कला से जुड़ी कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ राजस्थान और दुनिया के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति एक साथ दिखाई देती है। आपको पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में कोई स्थानीय महिला दिखाई दे सकती है और उसी रास्ते पर किसी दूसरे देश से आया पर्यटक भी। यही सांस्कृतिक मेल पुष्कर को बाकी शहरों से अलग बनाता है। खाने की बात करें तो राजस्थान का स्वाद यहाँ भी खूब देखने को मिलता है। दाल बाटी चूरमा, कचौरी, मालपुआ और तरह तरह की मिठाइयाँ यहाँ के स्वाद को खास बनाती है। और पुष्कर का बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, यहाँ घूमना भी अपने आप में एक अनुभव है। हर दुकान पर एक अलग रंग, हर गली में एक अलग खुशबू और हर मोड़ पर एक नई तस्वीर। और अब एक ऐसा गीत जो सफ़र और घूमने के एहसास को बिल्कुल सही पकड़ता है।

0: खुले पैसों की समस्या से छुटकारा।
1: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2024 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
4: पुष्कर को समझने के लिए सिर्फ उसके पर्यटक स्थलों को देखना काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ के माहौल को महसूस करना होगा। सुबह जल्दी उठकर घाटों पर जाना, मंदिर की घंटियाँ सुनना, हल्की ठंडी हवा, सड़क किनारे चाय की दुकान और दूर से आती किसी लोक कलाकार की आवाज़। यहाँ समय जैसे थोड़ा धीमा हो जाता है। आज की तेज़ जिंदगी में हम हर चीज़ जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन पुष्कर हमें रुकना सिखाता है, कुछ पल अपने लिए निकालना सिखाता है। और शायद इसीलिए देश विदेश से कई यात्री यहाँ सिर्फ घूमने नहीं बल्कि शांति की तलाश में आते हैं। पुष्कर की पहाड़ी पर स्थित सावित्री मंदिर से जब आप पूरे शहर को देखते हैं तो महसूस होता है कि इस छोटे से शहर ने कितनी बड़ी विरासत संभाल कर रखी है। एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ लोक संस्कृति, एक तरफ आधुनिक पर्यटक हैं और दूसरी तरफ सदियों पुरानी परंपराएं। और इन सब के बीच खड़ा है पुष्कर, शांत भी, रंगीन भी, आध्यात्मिक भी और बिल्कुल अपना भी। इस एहसास के साथ सुनते हैं अगला गीत।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है और आज के हेलो जयपुर की सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं पुष्कर की। तो दोस्तों, आज के हमारे यायावर सफर का सफर बस खत्म ही होने वाला है। आज हम पुष्कर की गलियों से गुजरे, ब्रह्मा मंदिर पहुंचे, पुष्कर झील के घाटों पर कुछ पल बिताए, सावित्री मंदिर की ऊंचाई से शहर को देखा और पुष्कर मेले के रंगों को महसूस किया, राजस्थानी बाजारों में घूमे और वहाँ की संस्कृति और खान पान का स्वाद भी लिया। लेकिन पुष्कर को सिर्फ इन जगहों से समझना शायद मुश्किल है। पुष्कर एक एहसास है। यहाँ की सुबह कुछ कहती है, यहाँ की शाम कुछ कहती है और घाटों पर जलता एक दीपक कुछ कहता है, ऊँटों की घंटियों की आवाज़ वो भी कुछ कहती है। और रेगिस्तान की हवा भी जैसे कुछ कह रही हो और हमें पुकार रही हो। शायद इसलिए जब कोई पुष्कर से वापस लौटता है तो अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं लाता, वह अपने साथ कुछ यादें लेकर आता है, कुछ आवाजें, कुछ रंग, कुछ खुशबुएं और शायद मन में थोड़ी सी शांति भी। तो अगली बार जब आप राजस्थान जाएं, सिर्फ किलों और महलों पर सीमित नहीं रुकें, एक बार पुष्कर की गलियों में भी जाइए, घाट पर बैठिए, सूर्य उदय देखिए, लोक संगीत सुनिए और इस शहर को थोड़ा सा महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ जगह घूमी नहीं जाती, महसूस करी जाती है और पुष्कर उन्हीं जगहों में से एक है।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो जयपुर, और आज के यायावर के सेगमेंट में हम बात कर रहे थे पुष्कर की और पुष्कर की खूबसूरती की। सुबह के 11 बज चुके हैं और अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है फरमाइशी गाने, जहां हम बजाएंगे आपके मनपसंद गाने। आप हमें कॉल कर सकते हैं 2200600 पर या फिर 2200700 पर। हमारा STD है 0141। तब तक के लिए सुनिए ये पहला गीत, जो कि है फिल्म सीता और गीता से। इसको गाया है किशोर कुमार और आशा ने, और इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतकार है RD बर्मन।
1: अरे अरे

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का है आमिर चैनल है और अगला गाना सुनना चाहते हैं श्रवण राम जी डीडवाना से। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर और आवाज़ है लता की।

अगला गाना फिल्म खानदान से, इसे गाया है लता मंगेशकर ने, इसके बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है रवि ने। ये गाना सुनना चाहते हैं कैलाश सिंह सैनी जी अलवर से।

अगला गाना फिल्म एक जान है हमसे, ये गाना गाया है शब्बीर कुमार ने और इसके बोल लिखे हैं अनु मलिक ने, साथ में संगीतकार हैं अनु मलिक। और ये गाना सुनना चाहते हैं खुदा बख्श खलीफा बाड़मेर से।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत। और अगला गाना पेश है फिल्म आज और कल से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की और इसके बोल लिखे हैं साहिर ने और संगीतकार हैं रवि। ये गाना सुनना चाहते हैं बशीर अहमद। हमारा पिछला गाना सुनना चाहते थे खुदा बख्श खलीफा बाड़मेर से और ये वाला गाना सुनना चाहते हैं बशीर अहमद।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है, मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो जयपुर और हम बजा रहे हैं आपके मनपसंद गाने। आप हमें कॉल कर सकते हैं 2200600 पर या फिर 2200700 पर। अगला गाना है फिल्म हाथी मेरे साथी से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, और ये गाना सुनना चाहते हैं नारायण पटेल और शांतिलाल पटेल जी, जौहरी बाजार से।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमिर चैनल है और अगला गाना सुनना चाहते हैं आफताब। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, आवाज़ है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

अगला गाना सुनना चाहते हैं? मोहम्मद शाहरुख विद्याधर नगर से, फिल्म का नाम है प्रेम ग्रंथ और इसको गाया है विनोद राठौड़ और अलका याग्निक ने। इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमिर चैनल है और अगला गाना सुनना चाहते हैं छाजू राम नायक जी कोटपुतली से। फिल्म है मिस्टर नटवरलाल और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की और किशोर कुमार की।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़। और श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो जयपुर और हम बजा रहे थे आपके फरमाइशी मनपसंद गाने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो जयपुर, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर दोपहर के 12 बजे हैं। कुछ ही देर में सुनेंगे हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

0: ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है।
1: The investment story.
2: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
1: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि देश के 99.6% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मकाओ के लियोन योक चोंग और एनजी वेंग ची को हराया। क्वार्टर फाइनल में ध्रुव और तनिषा का मुकाबला चीन की जोड़ी चेंग फांग हुई और गुआ शिनवां से होगा। भारत के साथ गोल में क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया गया। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 342 अंक गिरकर 76,893 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 24,051 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर।
4: समस्या से छुटकारा।
5: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय

मेला दिनांक 19 अगस्त 2024 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।

दोपहर 12:10 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। कलाकार होंगे ये दिलबर हुसैन। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज इंग्लिश, तत्पश्चात 2:30 पर दोपहर समाचार हिंदी, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। दो बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत, कलाकार होंगे चिरंजी लाल तंवर।

रूपरेखा में थी जानकारी आज प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। दोपहर के 12:10 हुए हैं। अब सुनते हैं लोक संगीत।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं लोक संगीत और कलाकार हैं दिलबर हुसैन। सुनते हैं अगला इसी क्रम में एक और गीत।

इस गीत के साथ ही लोक संगीत का सफर अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। दोपहर के 12:40 हुए हैं। अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत सुनते हैं फिल्म दिल विल प्यार व्यार से हरिहरन, अभिजीत और बाबुल सुप्रियो के स्वरों में।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अगला गीत सुनते हैं फिल्म बॉबी से। कीजिएगा, अगला गीत सुनते हैं फिल्म कर से, किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली

इस गीत के साथ फिल्म संगीत का सफर अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ देर प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राज्य में सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों को कैंसर के इलाज में अब अत्याधुनिक कार टी सेल थेरेपी की सुविधा मिल सकेगी। सरकार ने इस उपचार को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के तहत अनुमत पैकेज में शामिल करने का निर्णय लिया है। सरकार की इस पहल से गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों और उनके परिजनों को आधुनिक उपचार की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इससे उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। मंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल की गई है। कार टी सेल थेरेपी कैंसर के कुछ प्रकारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक इम्यूनोथेरेपी है। इसमें मरीज की प्रतिरक्षा कोशिकाओं को विशेष तरीके से तैयार कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जयपुर में आज से ब्रिक्स देशों के पर्यटन कार्य समूह की बैठक शुरू हो रही है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत हो रही इस बैठक में ब्रिक्स के 10 सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये बैठक कल भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में पर्यटन को बढ़ावा देने, सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और नए अवसर तलाशने पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही ब्रिक्स देशों के बीच साझा पर्यटन एजेंडे के प्रारंभिक मसौदे पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 21 और 22 अगस्त को पहली ब्रिक्स पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित होगी। इसमें सदस्य देशों से मिले सुझावों के आधार पर साझा पर्यटन एजेंडे को अंतिम रूप देने की दिशा में विचार किया जाएगा। राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए उद्योग

0: उद्योग और वाणिज्य विभाग ने 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल शुरू की है। इस पहल के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 100 विशिष्ट व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। इसमें अधिकतम उम्र सीमा तय की गई है। महिलाओं की अधिकतम आयु 55 वर्ष और पुरुषों की 45 वर्ष रखी गई है। विभाग के आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि इच्छुक प्रतिभागी 31 अगस्त तक विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। राज्य सरकार ने आज 2 आईपीएस अधिकारियों सहित जेल सेवा के 26 अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईपीएस प्रतीक सिंह को आमेर और आईपीएस जतिन जैन को चौमू का सहायक पुलिस आयुक्त लगाया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वहीं गृह विभाग ने जेल सेवा के 26 अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले कल रात 57 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और 24 पुलिस उपाधीक्षकों के भी ट्रांसफर किए गए थे। बालोतरा के नाहटा अस्पताल के सामने क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा। इसके लिए आज भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से इस 50 बेड क्षमता वाले ब्लॉक में गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकेगा। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार छिटपुट स्थानों को छोड़कर बाकी जगहों पर मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक 1 सेंटीमीटर बरसात बांसवाड़ा में हुई। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। हालांकि आज लगभग 10 जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट है। इनमें राज्य के उत्तर पूर्वी जिले शामिल हैं। भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 23 अगस्त तक हल्की बरसात का दौर बना रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में कमजोर मॉनसून परिस्थितियों के चलते अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म बॉबी से शैलेंद्र सिंह के स्वरों में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं फिल्म संगीत में, सुनते हैं अगला गीत फिल्म तुमसा नहीं देखा से, रूप कुमार राठौर और श्रेया घोषाल के स्वरों में।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
0: फिल्म संगीत सुन रहे हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म फुटपाथ से अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वरों में।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत सुनेंगे फिल्म मर्डर 3 से शफ़क़त अमानत अली के स्वरों में।

इस गीत के साथ फिल्म संगीत का सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। सुनते हैं अब कार्यक्रम पणिहारी।

0: खुले पैसों की समस्या से छुटकारा।
1: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2024 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित

0: खुले पैसों की समस्या से छुटकारा।
1: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2024 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
4: पणिहारी सुनबाळी सगळी सखी सहेल्या भेणा और भाईल्याने मधुनायकरो घणो मोकळो राम राम सा। मन में हो राम राम और वाणी में हो प्रेम, मन में हो राम राम और वाणी में हो प्रेम, तुलसी री चौपाइयां सु मिट जावे हर्षे। भक्ति बने जीवन री राह, संस्कार बने आधार, तुलसी री वाणी आज भी करे मानवता रो उद्धार। भेणावां हर साल श्रावण मास का शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जो कि आज है, ई दिन आप मनावा हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती। तो सुनवाला सगला श्रोतावा ने तुलसीदास जयंती की खूब सारी शुभकामनावा। तुलसीदास जी को जो माता जी है बाको नाम हो हुलसी जी, और बाका पिताजी को नाम हो आत्माराम दुबे। पवित्र महाकाव्य श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की आप रचना करी ही, और आप सगला ही जानो हो कि कोई सच्छानो कोनी कि ये दोनों ही जो काव्य है, यानी कि रामचरितमानस जिन्हें कि आप महाकाव्य के वहाँ, और हनुमान चालीसा, ये आज भी घर घर में कितनी प्रचलित है। इक्कीस आगे ही आज आप मना रहे हैं, आज यानी कि 19 अगस्त है, और 19 अगस्त ने हर साल आपा मनावा हाँ विश्व मानवतावादी दिवस। यो दिन संकट और युद्ध में प्राकृतिक आपदावा के बीच अपनी जान जोखिम में डालर दूसरा की मदद करवाला जो मिनक हा, जो कार्यकर्ता हा, वहाँ का साहस ने, वहाँ का बलिदान ने समर्पित है। और 2026 की जकी विश्व मानवतावादी दिवस की थीम है, वह है मानवता के लिए कार्य करें। एक ऐसा के ही आज एक और ख़ास दिन है, वो है विश्व फोटोग्राफी दिवस। और ई दिवस पे भी आप बहुत सारा आज जो पत्रकार है बाने आप स्टूडियो के मायने बुलाया हाँ, तो रणमिलर आप सगला यहाँ से विस्तार से बातचीत करा। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर ई विशेष कार्यक्रम के मायने आज में जका मोटा मोटा नाम चिन्ह फोटोग्राफरा ने अठे आमंत्रित करया हाँ स्टूडियो के मायने, मैं आपसे बाकी ओळखाण करा दू। सबसे पहले है अमित कुमार जांगीर जी, आप हॉस्पिटल फोटोग्राफी और वृत्त चित्र फोटोग्राफी का मायने खासी पहचान राखू हूँ। तो अमित कुमार जांगीर जी, स्टूडियो में आपको घनो घनो स्वागत। राम राम सा।
5: राम राम।
4: और दूसरा जगह अपना फोटोग्राफर है, वे है विशाल भटनागर, आप खेलकूद और समाचार फोटोग्राफी का मायने आपकी खास पहचान राखो हो। विशाल भटनागर जी, हमारा आकाशवाणी का स्टूडियो में आपको खूब खूब स्वागत। राम राम सर।
6: राम राम।
4: सागे ही जगह फोटोग्राफर अठे स्टूडियो में है, वे है सतीश जैन अकेला, आप धार्मिक और सामाजिक परंपरागत विषय से जुड़ोड़ी फोटोग्राफी में आपको खास स्थान रखो हो। तो सतीश जैन अकेला जी, आपको भी हमारा स्टूडियो में घनो घनो स्वागत। राम राम सर।
6: राम राम।
4: सागे है सुरेंद्र जैन पारस, आप क्राइम फोटोग्राफी का रूप में जाना जाओ हो। तो सुरेंद्र जैन पारस जी, आपको भी खूब खूब स्वागत। राम राम सर।
7: राम राम सर।
4: अब माँ के सागे है सुभाष भार्गव, प्रकृति पशु पक्षी

0: जी, आ सबकी फोटोग्राफी से आप जुड़े रहो, ई विषय पर आपकी खास पकड़ है। तो सुभाष भार्गव जी, स्टूडियो में आपको खूब खूब स्वागत। राम राम सा।
1: राम राम सा।
0: अब जका पावना हमारे सागे है, वासे भी मैं आपकी ओळखाण करा दूं। हमारे सागे है भागीरथ जी, आप फोटो पत्रकारिता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े रहा हो, और इका मायने आपकी एक खास पकड़ और पहचान है। तो भागीरथ जी, हमारा आकाशवाणी का स्टूडियो में आपको खूब खूब स्वागत। राम राम सा।
1: राम राम सा।
0: विश्व फोटोग्राफी दिवस का रूप में आज आप यो विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर का स्टूडियो में ई विशेष कार्यक्रम का मायने बात कर रहा हूँ, और इस श्रृंखला के मायने ही आप सब पावणा ने आमंत्रित करें हाँ। सबसे पहले तो सुरेंद्र जैन पार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फोटोग्राफी क्यों जरूरी है और आज का दौर में फोटोग्राफी को काई महत्व है।
1: फोटोग्राफी को आज के दौर में घणो महत्व है। आपा देखा, कोई भी खबर पढ़ा हाँ, कोई भी अखबार ने पढ़ा हाँ, तो उनमें फोटो भी छपेड़ा हुआ छे। फोटो आपने सारी बात ने, खबर छपे ना छपे, फोटो सारी बात कह दे छे। तो फोटो खींचवा बहुत जरूरी रहो छे, और फोटो खींचवा भाई आपने वो जगह पे वो स्थान पे जानो बहुत जरूरी हो छे। उनके बिना काम कौन हो छे। खबर तो आप भैया ही घर बैठे भी लिख सका छे।
0: जी सर, अमित कुमार जांगीर जी, मैं आपसे जानबो चाहूंगा कि जिया की हॉस्पिटल फोटोग्राफी और वृत्तचित्र फोटोग्राफी में आप खासो ध्यान देवो हो, ई विषय पर आप खासी फोटोग्राफी करो हो, तो ई विषय में खास काई है जो कि सामान्य फोटोग्राफी से थोड़ो अलग हुआ करे है।
2: जहाँ आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, लेकिन उस नज़रिए से जहाँ हम देख नहीं सकते, उसको हम डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू उसको हम दिखाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी वही होता है कि लाइक ओटी में आपके क्या हो रहा है, तो वो ओटी का जो फोटो लाइक मार्केटिंग पर्पज़ से हम उसको हम यूज़ करते हैं।
0: जी
2: तो ये स्पेशलिटी हॉस्पिटल फोटोग्राफी की है। जैसे नियोनेटल अगर आईसीयू है, एनआईसीयू की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर अंदर छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, बिल्कुल एकदम जो जिनका वज़न 400 ग्राम है, 500 ग्राम है, 700 ग्राम। तो ऐसे बच्चों को किस तरह से आपको दिखाना है, तो वो मेमोरी होती है एक हॉस्पिटल के लिए भी, क्योंकि बहुत स्पेशल केसेस होते हैं वो, और वो मेमोरी होती है उनके घर वालों के लिए भी, जब होते ही न्यूनेटल बच्चों की जिस तरह की फोटोग्राफी होती है, तो इस तरह की पहचान होती है। दूसरा डॉक्यूमेंट्री के, जहाँ वृत्तचित्र की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे चारों ओर आसपास कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती है जिसको हम उस नज़रिए से नहीं देख पाते हैं। तो उसको उस कहानी की तरह से हम उसको रियलिटी, जो पहचान लोगों को मिलनी चाहिए जिस विधा की या जिस भी परि मतलब परि जिस परिप्रेक्ष्य में हम जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, लाइक तो वो पहचान दिलाने के लिए हम उस तरह से उसको कैप्चर करते हैं।
0: जी सर, बहुत चौकी बात आप बताया। अब मैं जानबो चाहूंगी सतीश जैन अकेला साहब से कि धार्मिक और सामाजिक परंपरागत विषय से जुड़ेड़ी जो आप फोटोग्राफी करो हो, तो ई विषय ने आप क्यों चुनिया, काई खासियत है ई विषय पर?
3: मेरा मानना है कि फोटोग्राफी एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चलचित्र को प्रदर्शन करना मात्र नहीं है।
0: जी
3: फोटोग्राफी जहाँ भी होती है, जब भी होती है, वो एक परिदृश्य बताने के साथ साथ इतिहास बनाती है, इतिहास
0: जी
3: गढ़ती है। आज उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ, आज पुराने राजा महाराजा, गुरु महाराज, या जितनी भी आज से 100, 50 साल, 200, 300 साल पहले जो फोटोग्राफी हुई थी, उसको आज हम उस माध्यम से देख तो सकते हैं। नहीं तो आपका कोई भी इवेंट हो, कोई भी फंक्शन हो, हुआ अगर फोटोग्राफी नहीं है तो उसको आप बाद में नहीं देख सकते,
0: जी
3: उसकी मेमोरी समाप्त हो जाएगी वहीं।
0: जी मतलब आपको कहबा को मतलब यह है सर कि इतिहास का झरोका में अगर आप झांका तो फोटोग्राफी के बिना आपने कोई तथ्य या सबूत या प्रमाण को
3: कोई
0: नहीं
3: नहीं
0: मिल
3: मिल
0: सके।
3: सकता, सबूत ही नहीं होगा।
0: जी जी सर, अब मैं रुक करूं विशाल भटनागर जी। देखो जो विशाल भटनागर जी, जो आपको विषय है खेलकूद, तो एक मायने घनी सावचेती रखनी पड़े कि टाइम पर फटाफट से के मोमेंट हो जावे, क्योंकि यो विषय ऐसो है खेलकूद, तो कौन कौन सी बातों को आप खास ध्यान रखो ताकि हर एक गतिविधि आप कैमरा के मायने कैद कर सको।
4: मैम देखिए, सबसे पहले तो स्पोर्ट फोटो जर्नलिज्म और स्पोर्ट फोटोग्राफी में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कौन से गियर्स यूज़ में ले रहे हैं। आप वहाँ पर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी आपका क्या, आप शूट कर रहे हैं,
0: जी
4: जैसे आप क्रिकेट शूट कर रहे हैं, फुटबॉल शूट कर रहे हैं, तो इन सब के लिए आपके इक्विपमेंट्स जो है, जो कैमरा गियर्स है, वो
0: यानी कि
4: सब
0: जो उपकरण आप
4: जी
0: के
4: जो हाँ
0: बचाओ
4: जो
0: है ना।
4: उपकरण है
0: जी जी
4: वो इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सा लेंस लगा के, क्योंकि क्रिकेट के अंदर काफ़ी डिस्टेंस से आपको शूट करना होता है,
0: जी
4: ठीक है, फुटबॉल में आपको गोल पोस्ट के पास से शूट करना होता है, तो
0: जी
4: आपके कैमरा उपकरण सबसे इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के अंदर, क्योंकि नॉर्मल लेंसेज के साथ आप कभी भी एक्शन फोटोग्राफी नहीं शूट कर सकते। दूसरा, जो भी खेल

0: खेलकूद है वो सब तेज फास्ट मूवमेंट वाला खेलकूद है, तो
1: जी
0: उनके लिए आपको अच्छी शटर स्पीड का ज्ञान होना चाहिए, अच्छे नंबर ऑफ अपर्चर आपके पास होने चाहिए, उसके अंदर अपर्चर शटर स्पीड ये सारे एल्गोरिदम मिलके काम करते हैं, तब आप एक अच्छी स्पोर्ट्स फोटोग्राफी क्लिक कर सकते हैं और अच्छा एक स्पोर्ट फोटोग्राफी का मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। तो ये स्पोर्ट फोटोग्राफी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पे उपकरण, दूसरा प्रॉपर एक सेटिंग जिसमें आप शूट कर रहे हैं, और दूसरा आप किस पोजीशन पर आप वो क्रिकेट शूट कर रहे हैं, आपकी उस जगह कौन सी जगह है वो आपको सोच समझ के बैठना पड़ता है वहाँ पर। कि जैसे अगर आप क्रिकेट शूट कर रहे हैं तो आपको बॉलर एंड भी शूट करना है, बैटिंग
1: जी
0: एंड भी शूट करना है, बैट्समैन का भी फ़ोटो लेना है, बॉलर का भी फ़ोटो लेना है, फील्डर जो कैच लपकेगा उसका भी गोता खाते हुए फ़ोटो लेना
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो आपका जो सिटिंग पोजीशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में अगर आप फुटबॉल शूट कर रहे हैं तो आपको वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो मार रहा है, या फिर आप हॉकी शूट कर रहे हैं उस टाइम पर गोल पोस्ट के पास बैठना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उस गोल होते हुए भी फोटो ले सके और एक्शन का भी फोटो ले सके। तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में लेंसेज तो है ही, कैमरा तो है ही, लेकिन आपकी पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: यानी कि कहवा को मतलब यह है कि जो अत्याधुनिक जो अपना उपकरण है, जो अवार का जो डिजिटल कैमरा आ गया,
0: जी
1: बाकी तकनीक के सागे सागे आपकी जो दिमागी तकनीकी है
0: जी
1: वह भी
0: हाँ
1: बीटेम होनी चाहिए कि आप तुरंत प्रभाव से
0: हाँ
1: भी छायाचित्र ने कैद
0: कैद
1: कर सको।
0: हाँ कैद कर सकते।
1: जी अब सुभाष भार्गव जी, तो आप प्रकृति पशु पक्षी आ सब की फोटोग्राफी से जुटे रहा हो, तो कहीं आपने बचपन से शौक हो प्रकृति से या पशु पक्षी से आपने लगाव हो, आप क्यों प्रकृति और पशु पक्षी से जुड़े रहा जो विषय है जिन्हें आप फोटोग्राफी का रूप में अपनाया हो?
2: हाँ, 1976 के अंदर मैं जयपुर में एक कॉलेज के साथ भरतपुर घना सेंचुरी गया था। वहाँ से
1: जी
2: मेरे को प्रोत्साहन मिला कि मैं वन्य जीव फोटोग्राफी करूँ और बर्ड फोटोग्राफी करूँ।
1: जी
2: नेचर फोटोग्राफी जहाँ भी सुंदरता दिखती है, पहाड़ी स्थान है, समुद्र है, नदी है, हर जगह पे नेचर है, तो उनके छायाचित्र हर आदमी को बड़े अच्छे लगते हैं, और उनके अच्छे छायाचित्र बनाना एक अपने आप में कला है। लेंसों का उपयोग, लाइटिंग का उपयोग, स्पीड अपर्चर का कॉम्बिनेशन,
1: जी
2: ये सब उसके पार्ट हैं।
1: जी
2: ऐसे ही पशु और पक्षी का व्यवहार, कितना नज़दीक हम उसके जा सकते हैं। अगर घोंसला बनाने वाली चिड़िया अगर कहीं जा रही है तो उसका मूवमेंट किधर हो रहा है, अगर उसका घोंसला बन चुका है तो उसमें अंडे बच्चे तक आप लगातार जाएंगे, तो आपको उसकी लाइटिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर
1: जी
2: समय उस पे लाइट नहीं होगी।
1: जी
2: तो जब अच्छी फोटोग्राफ बनानी है तो आपको महीनों तक भी एक घोंसले के ऊपर अध्ययन करना पड़ सकता है, और लास्ट में ज़रूरी नहीं कि वो मैच्योर हो।
1: जी
2: कभी कौवा उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, कभी चील उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, कभी ह्यूमन बीइंग की गलती से भी अंडे खराब हो जाते हैं, कभी नेचुरली अंडे खराब हो जाते हैं पक्षी के प्रजनन काल में।
1: जी
2: तो उस जगह पे पर्याप्त मात्रा में खाना उपलब्ध है या नहीं है ताकि वो बच्चों को बड़ा कर पाए, तो पूरी सीरीज बनाना अपने आप में एक लंबा पीरियड फोटोग्राफी का होता है, जिसके लिए आपको बहुत धैर्य से, बहुत लगन से, बहुत समझदारी और नॉलेज से काम करना पड़ता है। अब टाइगर की फोटोग्राफी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको कौन सा पर्याप्त लेंस चाहिएगा, उसके एक्शन को अगर आप कवर कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको तसल्ली और ध्यान से बैठ करके और वेट करना पड़ेगा। अगर शिकार कर रहा है तो शिकार कहाँ है, टाइगर कहाँ है, उसकी लोकेशन देख के, लाइटिंग और उस अटैक के समय आपको क्या शटर स्पीड रखनी है, क्या अपर्चर रखना है, उन सब चीज़ का भी ज्ञान आपको पहले से रखना पड़ता है। तो फाइनल फोटोग्राफ जब आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन, समझदारी और वातावरण, सब चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। फोटोग्राफ में सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है ताकि फोटो उभर के आए, और एक जनरल आदमी से लेकर एक साइंटिफिक आदमी या प्रोफेशनल आदमी उसको अप्रिशिएट करे। फोटोग्राफी में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी।
1: यानी कि केवा को मतलब यो है कि जो तकनीकी समझदारी है वी के सागे सागे बहुत धैर्य की आवश्यकता है।

0: की चिड़िया जो है तिनको तिनको जोड़ घोंसलो बनावे है, भी आप पशु पक्षी और नेचर की जब फोटोग्राफी ने अंजाम देव हो तो वी के ती आपने खूब इंतजार करना पड़े है, खूब धैर्य रखना पड़े है। अब भागीरथ जी, जिया की आप फोटो पत्रकारिता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सु जुड़ेड़ा हो, तो जो श्रोता और जो भेणा आपने सुन रही है तो वाने या बताओ साहब की या जो फोटो पत्रकारिता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काई होवे है, ताकि श्रोता और भेणा आपकी समझ ने और ज्यादा मजबूत कर सके।
1: मैं दोनों चीज़ें अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, फोटो पत्रकारिता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों को विरोधाभास रूपी में है लेकिन दोनों को एक साथ अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब दोनों विरोधाभास ही कैसे हैं कि जो फोटो पत्रकारिता है उसमें आपको सच्चाई दिखानी है, जो यथार्थ है उसको ही दिखाना है, जो घटना घटी है उसी को दिखाना है, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी, किसी भी तरह का बदलाव जो हुआ है उसको सच्चाई के साथ दिखाना, ये फोटो पत्रकारिता में है। लेकिन जहाँ हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाई गई इमेज, जिसको हम जनरेटिव एआई कहते हैं, अगर उसकी बात करें तो उसमें एक काल्पनिक रूप से आप अपने शब्दों को कंप्यूटर में या किसी ऐप में डालते हैं और उसको बताते हैं कि मुझे इस तरह का एक तस्वीर बना के दो कि ऐसा ऐसा हुआ हो और वैसा वैसा हुआ हो तो कैसा फ़ोटो होगा। तो जो तस्वीर उभर कर आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो पूरी तरीके से काल्पनिक होगी, इसका मतलब है कि वो यथार्थ में नहीं हुई होगी। तो मैं दोनों चीज़ें साथ साथ में प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पता रहे कि सच्चाई कहाँ पर है और कहाँ पर झूठ है और कौन सी चीज़ प्लस है और कौन सी चीज़ माइनस है। तो जहाँ पर हम बात करें सच्चाई की, तो फोटो पत्रकारिता में पूरी सच्चाई के साथ हमें काम करना चाहिए, लेकिन जो नुकसान है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें जो काल्पनिक तस्वीरें निकाल के देता है, उसको भी हम कैसे रोक सकें, कैसे पहचान सकें, कैसे उसकी रोकथाम जो है वो फोटो पत्रकारिता में नहीं घुसे या फोटोग्राफी को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके लिए उसको भी जानना ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं ना चाकू को पकड़ना, तो चाकू को पकड़ने पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे चलाने से उसका फ़ायदा है और कहाँ पे नहीं चलाने से उसका नुकसान होगा या क्या नुकसान है उसके। तो ये दोनों चीज़ें विरोधाभासी हैं लेकिन दोनों चीज़ों को साथ साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि तकनीक आगे बढ़ रही है तो हमें अपने फोटो पत्रकारिता को भी लेके चलना पड़ेगा और उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे फील्ड को प्रभाव डाल रहा है।
0: जी, न्यारी न्यारी फोटोग्राफी का जो विषय है वासे जुड़ेड़ा आप सभी लोग माहिर फोटोग्राफर जो है अठे आयड़ा हो, तो चाहे से विषय हॉस्पिटल फोटोग्राफी को हो, चाहे खेलकूद को हो, चाहे धार्मिक और सामाजिक परंपरागत विषय से जुड़ी फोटोग्राफी हो, या फिर क्राइम की हो, या पशु पक्षी प्रकृति की हो, या फोटो पत्रकारिता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, आप सगला ने न्यारा न्यारा विषय का मायने कौन कौन सा जोखिम उठाना पड़े है या कौन कौन सी मुश्किलों को सामना करना पड़े है।
2: चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो चैलेंजेस तो टाइम ही है कि जो अपग्रेड हो रही है चीज़ें, वही एक चैलेंज है। अदरवाइज़ तो क्लाइमेट चेंज जो चैलेंजेस है, क्लाइमेट से रिलेटेड हैं, जो मौसम से रिलेटेड हैं, वो तो आपके साथ समय के साथ हमेशा रहेंगे, वो तो
0: जी
2: आपके
0: सर,
2: प्रैक्टिस और आपके नॉलेज के साथ चलेंगे। लेकिन टाइम के साथ जो कैमरा इक्विपमेंट्स चेंज हो रहे हैं, जो गियर जिनको हम यूज़ करते हैं, लाइक जो उपकरण हम यूज़ कर रहे हैं, वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, तो बस वो एक चैलेंज है जो आपको हमेशा सीखना रहेगा, उसके साथ अपडेट होना पड़ेगा।
0: जी विशाल जी, आप बताओ, कई बार जहाँ खेलकूद की आप फोटोग्राफी करो हो तो कई बार कोई जोखिम आपने उठाना पड़े हो या कोई सावचेती?
3: मैम देखिए, खेलकूद की फोटोग्राफी में जोखिम तो ये रहता है कि आपको बिल्कुल अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव रखना पड़ता है कि
0: जी
3: बॉल जो है उस पर पूरी निगाह रहती है। अगर आप क्रिकेट शूट कर रहे हो या फुटबॉल शूट कर रहे हो, हॉकी शूट कर रहे हो, तो उसमें जो खेल जब वो हो रहा है तो उस टाइम पर यही नहीं है कि आपको वो एक फ़ोटो लेनी है, एक्शन शूट करना है। उस टाइम पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो बॉल किधर जा रही है, वो बॉल कहीं आपके कैमरे पे आके तो नहीं लग रही है, वो
0: जी
3: कहीं बॉल आपको तो नुकसान नहीं पहुंचा रही है। जैसे 2-3 बार अभी हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा पूरा ध्यान केवल विराट कोहली के ऊपर था और एकदम से शॉट पड़ा प्रैक्टिस के दौरान
0: जी
3: और वो मेरे पेट पर आके लगी बॉल, क्योंकि मैं दूसरे प्लेयर को चेस कर रहा था और मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड केवल विराट कोहली के ऊपर फोकस था
0: जी
3: कि मैं
0: जी
3: उसके अच्छे शॉट्स लूं, और उधर से किसी ने शॉट मारा और वो मेरे पेट पर आके लगी। हालांकि मैं लकी रहा कि मेरे ज़्यादा तेज़ नहीं लगी।
0: जी
3: और चेंजेस समय के साथ, आपको अपने गियर्स को, इक्विपमेंट्स को, उपकरण को बदलाव उसमें ज़रूरी है। आपको अच्छे लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे कैमरे, फास्ट एक्शन शूट कर रहे हो तो फास्ट कैमरा की ज़रूरत है। आप स्लो कैमरों के साथ एक्शन कभी भी शूट नहीं कर सकते।

0: भलाए वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, जहाँ पर फास्ट मूवमेंट सब्जेक्ट जा रहा है, आप स्लो कैमरों के साथ उन मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर सकते,
1: जी
0: फास्ट मूविंग सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। और बाकी न्यूज़ फोटोग्राफी में चैलेंज सबसे मैम ये है कि वो फील्ड ही चैलेंजिंग फील्ड है, कि जब सब जने आराम से अपने घर पे होते हैं तो एक जो फोटो पत्रकार होता है वो फील्ड में होता है।
1: जी
0: और अगर हम स्पेशली अगर फोटोग्राफर की ही बात करें, फोटो जर्नलिस्ट की बात करें, तो जब उसको उस मौके पे मौजूद होना होता है, जैसे कोरोना के अंदर इमरजेंसी लगी थी, केवल पुलिस वाले या इमरजेंसी वाले थे ऐसा नहीं था, सारे फोटो जर्नलिस्ट भी उस मौके पे मौजूद थे और वो सारे मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे थे। खुद की परवाह नहीं करी उन्होंने, उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं करी, लेकिन आप लोगों के सामने जो भी सच्चाई थी उस टाइम पे, क्या माहौल रहा है,
1: जी
0: कितने लोग मॉर्चरी के अंदर है, कितने लोग मोक्षधाम के अंदर है, कितने लोग हॉस्पिटल के अंदर है, या क्या चीख पुकार मच रही है कोरोना की वजह से, वो सारा कैप्चर केवल एक फोटो जर्नलिस्ट ने करा। तो आप ये देखिए, चैलेंजिंग फील्ड ही चैलेंजिंग है फोटोग्राफी।
1: जी या मात्र एक फोटो क्लिक की बात को नहीं, अगर आप इतिहास का पन्ना में झाकर देखा तो
0: जी
1: आपने जो भी प्रमाण मिले हैं वे सब आपने छायाचित्र यानी कि फोटोग्राफी और फोटोग्राफर से ही मिले हैं, चाहे जीवन का रंग हो या मानव का गुजारेड़ा पल हो। फोटोग्राफी और फोटोग्राफर को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हुए है। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर जो आज मैं बातचीत माका स्टूडियो में बैठे करिया हा बी का मायने जो का पावना हा बाकी ओळखाण एक बार ओजू करा दियो। अमित कुमार जांगीड, विशाल भटनागर, सतीश जैन अकेला, सुरेंद्र जैन पारस, सुभाष भार्गव और भागीरथ जी, आप सगला पावना माका स्टूडियो में आया और विश्व फोटोग्राफी दिवस पर इतनी महती जानकारी आप माका श्रोतावा ने और मा की भेणा ने दिया, ई कताई आपको घना मानसु धन्यवाद सर। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस पर आपा इतना सारा पत्रकारा के सागे आज विस्तार से जाना कि विश्व फोटोग्राफी दिवस पर एक फोटोग्राफर को कई महत्व है और क्या जान जोखिम में डालर एक फोटोग्राफर इतिहास की जो चीज़ा है आज भी आपा फोटोग्राफी का माध्यम से समझ पावा हाँ, देख पावा हाँ। तो अब इतनी चौकी जानकारी के पाछे रणमिलर सुन लिया यो लोकगीत।

और ये लोकगीत के सागे ही थोड़ी सी बात कर लिया। आज एक और जयंती आप मना रहे हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती। यहाँ को जन्म 19 अगस्त 1918 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुई हो। ये भारत का पूर्व नवा राष्ट्रपति हा। और यहाँ की उपलब्धियाँ की और यहाँ का योगदान की अगर आप बात करा तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन में ये आपकी सक्रिय रूप से भूमिका निभाया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की ये उच्च शिक्षा प्राप्त करया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिविंग लेजेंड्स ऑफ लॉ पुरस्कार से यानी सम्मानित करो गयो हो। और थोड़ी सी चालता चालता बात कर लिया काल की। काल है राजीव गांधी की जयंती। यहाँ को जन्म 20 अगस्त 1944 में यो हो। और काल का दिन ने आपा सद्भावना दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस का रूप में मनावा हा। और श्रोतावा भिणावा आपसे बात करता तक का पणिहारी कार्यक्रम को टेम अठे ही पूरा होते जा रहे हो है। तो पणिहारी कार्यक्रम से आपकी बहन मधु नायक ने दो आज्ञा चाला और करा राम राम सा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का

0: देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
3: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पर्टी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें जिसमें ये बताया जाए कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट UG 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने

0: मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओड्राफ के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। IMD ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। BRO के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा के

0: स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
1: भारत ने गोल में दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने दो मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। कलाकार हैं चिरंजी लाल तंवर।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से सुन रहे हैं आप। राजस्थानी लोक संगीत कलाकार हैं चरणजी लाल तंवर। एक विराम के बाद फिर से एक गीत सुनेंगे।
1: खुले पैसों की समस्या से छुटकारा।
2: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2024 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। इस गीत के साथ राजस्थानी लोक संगीत का सफर अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। सुनते हैं आप फिल्म संगीत।

फिल्म थ्री इडियट से अभी आपने ये गीत सुना, सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वरों में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं फिल्म संगीत में अगला गीत, फिल्म मिशन कश्मीर से उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वरों में।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत सुनते हैं फिल्म कहो ना प्यार है से, लकी अली और राम या के स्वरों में।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला और इस कड़ी में आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म कृष्णा कॉटेज से श्रेया घोषाल के स्वर में।

इस गीत के साथ फिल्म संगीत का सफर अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
2: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
3: श्रोताओं एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जी
3: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
2: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय

0: अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी श्रोताओ, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
0: जी
1: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं,
0: जी
1: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया।
0: जी
1: धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओ, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
0: जी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
1: आशा है श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द, और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
0: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
1: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी,
0: जी
1: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
0: जी
1: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
0: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
1: श्रोताओ, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
0: जी
1: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
0: जी
1: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
0: जी
1: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
0: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
1: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
0: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
1: मार्केटिंग गुरु
0: या म्यूजिक गुरु।
1: श्रोताओ, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
0: जी तो प्रिय श्रोताओ, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800044559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
1: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: जी
1: श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जल प्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कल कल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती हैं।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने

0: कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियां न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला हैं। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ। तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
1: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
0: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी। नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
1: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
2: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
3: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख में चौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
2: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
3: अच्छा,
1: वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
0: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
3: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?
1: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
2: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
0: वो खुशी खुशी बहने लगी।
3: देखो देखो देखो देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
0: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
1: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी। हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
1: हाँ।
0: अब मिलकर बहने

0: कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
1: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
0: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
1: हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
0: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
2: कूद जाओ ना।
1: कूद जाऊं?
2: डरो मत।
1: हाँ?
2: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
1: अच्छा तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
0: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
3: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
0: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
1: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं और मैं बीमार हो जाती हूँ।
3: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
2: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
1: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
2: पुत्री तू बहती रही इसीलिए जीवन चलता रहा।
1: अच्छा,
2: तू रुकती तो हा? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
1: मैं चलती रहूंगी। हाँ मैं हमेशा चलती रहूंगी।
3: चरैवेति चरैवेति।

0: यही तो जीवन है।
1: चरैवेती चरैवेती, नदियों का संदेश यही महान, चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलन केलर।
1: हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
1: आओ हेलन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश। इस तरह एनी सेलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा। हेलन, आओ आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलन है गुड़िया जैसी।

0: तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया गुड़िया गुड़िया गुड़िया गुड़िया।
1: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सलिवन के मन में एक विचार आया।
0: अरे ये पानी का नल, हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलेन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे हाँ। अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। हाँ, पानी। एक बार फिर कोशिश करो। हाँ,
2: यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
1: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहाँ तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
0: मिसेस केलर
3: जी,
0: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
3: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेडक्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गई।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955

0: में वो भारत आईं। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
1: ।1964 में हेलन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर। और श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर शाम के 4 बजे हैं। अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वर मंजरी।

अभी आप फतेह अली से स्वर मंजरी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये अमीर चैनल है। मीडियम वेव 497.5 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर शाम के 4:30 होने को हैं। अब सुनेंगे फिल्म संगीत।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत सुनेंगे फिल्म ताल से, अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वरों में।

फिल्म संगीत में अगला गीत सुनते हैं। फिल्म संगीत में अगला गीत सुनते हैं फिल्म जोधा अकबर से सोनू निगम और मधुश्री के स्वरों में।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत सुनते हैं जब वी मेट से उस्ताद राशिद खान से। ये फिल्म संगीत का आखिरी गीत होगा।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बजने को हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: आकाशवाणी के युवा कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मंथन। दोस्तों, आज 19 अगस्त है और आज का दिन हमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ की याद दिलाता है, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की। आज मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी विश्व मानवीय दिवस। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन होने का मतलब क्या है? ह्यूमैनिटेरियन होने का सबसे सिंपल मतलब है जब किसी इंसान को आपकी ज़रूरत हो तब उसके साथ खड़ा होना, चाहे वह आपका अपना हो या कोई अनजान व्यक्ति, क्योंकि इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती। तो आइए आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक गाना।
1: खुले पैसों की समस्या से छुटकारा,
2: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2026 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

दुनिया में हर दिन कहीं ना कहीं लोग मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं। कहीं फ्लड आती है, कहीं अर्थक्वेक, कहीं साइक्लोन, और कहीं लोग बीमारी या भूख जैसे परेशानियों से जूझते हैं। ऐसे समय में कुछ लोग अपनी सुविधा छोड़कर दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं। वे फूड और वाटर पहुंचाते हैं, घायलों का इलाज करते हैं और लोगों को सेफ प्लेसेस तक पहुंचाते हैं। और सबसे ज़रूरी, वे लोगों को यह एहसास दिलाते हैं दैट यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। यही है ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऐसे ही लोगों के करेज और डेडिकेशन को सम्मान देने का दिन है। 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में यूनाइटेड नेशंस के कनाल होटल पर एक बॉम्ब अटैक हुआ। इस घटना में 22 ह्यूमैन

प्लेनेटेरियन वर्कर्स की जान चली गई। इस घटना ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया कि जो लोग दूसरों की मदद करने के लिए क्राइसिस सिचुएशंस में जाते हैं, उनकी सेफ्टी भी कितनी ज़रूरी है। उसके बाद 2008 में यूनाइटेड नेशंस ने 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे घोषित किया। आज यह दिन ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स और मुश्किल परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के सम्मान में मनाया जाता है। दोस्तों, ह्यूमैनिटेरियन बनने के लिए हमें हमेशा कोई बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। किसी बुज़ुर्ग को सड़क पार कराने में मदद करना, किसी भूखे व्यक्ति को खाना देना, किसी परेशान इंसान की बात सुनना, किसी ज़रूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में हेल्प करना, किसी इमरजेंसी में सही इन्फॉर्मेशन देना, ये सब भी ह्यूमैनिटी में आते हैं। किसी के लिए हमारी छोटी सी मदद उसके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, क्योंकि चेंज हमेशा एक छोटे स्टेप से ही स्टार्ट होता है। तो आइए इस पे और चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गाना।

0: ज़रा सोचिए, एक परिवार फ्लड में अपना घर खो देता है। एक ना खाना है, ना पानी और ना रहने की जगह। ऐसे समय में कोई वॉलंटियर या रेस्क्यू वर्कर उनके पास पहुंचता है, उन्हें फूड देता है, वाटर देता है और सेफ जगह पहुंचाता है। उस समय वह सिर्फ एक फूड पैकेट नहीं होता, वह उम्मीद होती, वह भरोसा होता है और सबसे बढ़कर यह एहसास होता है कि कोई हमारे साथ है। यही ह्यूमैनिटेरियन वर्क की असली ताकत है। ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स में सिर्फ डॉक्टर्स या एनजीओ वर्कर्स ही नहीं होते, इनमें नर्सेज, रेस्क्यू वर्कर्स, इंजीनियर्स, ड्राइवर्स, टीचर्स और वॉलंटियर्स भी शामिल होते हैं। कई बार ये लोग खुद भी मुश्किल परिस्थितियों में होते हैं, फिर भी दूसरों की मदद करते हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि जो लोग दूसरों की जान बचाते हैं, उनकी अपनी सेफ्टी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हमें उनके काम की वैल्यू समझने और उन्हें सम्मान देने का अवसर होता है। तो आइए सुनते हैं एक और गाना।
1: खुले पैसों की समस्या से छुटकारा।
2: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2024 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

दोस्तों, इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसकी कोई सीमा नहीं होती। जब कोई भूखा होता है तो भूख उसका रिलीजन नहीं पूछती, जब कोई घायल होता है तो दर्द उसकी नेशनैलिटी नहीं पूछता, और जब किसी का घर डिज़ास्टर में टूट जाता है तो डिज़ास्टर यह नहीं देखता कि वो आदमी कौन है। दुख की लैंग्वेज एक ही है और मदद की लैंग्वेज भी एक ही है, ह्यूमैनिटी। इसलिए हमें हर इंसान को सबसे पहले एक इंसान की तरह देखना चाहिए। और अब युववाणी के लिसनर्स के लिए एक खास बात है, आज की यंग जनरेशन ह्यूमैनिटेरियन वर्क में बड़ी भूमिका निभा सकती है। हमारे पास टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया है, लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। डिज़ास्टर के समय कोई फेक न्यूज़ या गलत इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करना नुकसान तक पहुंचा सकता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले उसे वेरीफाई करना भी एक तरह की मदद है। इसके अलावा यंग पीपल फर्स्ट एड सीख सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वॉलंटियरिंग कर सकते हैं और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एम्पथी। सिंपथी का मतलब है किसी को दुख को देखकर दुख महसूस करना, लेकिन एम्पथी का मतलब है उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। अगर किसी ने अपना घर खो दिया है और हम कहें बहुत बुरा हुआ, तो यह सिंपथी है। लेकिन अगर अगर हम ये सोचें कि मेरे साथ ऐसा होता तो मैं कैसा महसूस करता, और फिर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ें, तो यह एम्पथी है। जब एम्पथी एक्शन में बदलती है तभी असली ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट दिखाई देती है। ह्यूमैनिटेरियन बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, शुरुआत हमारे घर और आसपास से हो सकती है। किसी बुज़ुर्ग की मदद करना, किसी ज़रूरतमंद को खाना देना, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनना, किसी इमरजेंसी में मदद पहुंचाना, या फिर किसी ज़रूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में हेल्प करना, ये छोटे काम हैं, लेकिन इन्हीं से एक केयरिंग सोसाइटी बनती है। हमें पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स अकेले सॉल्व नहीं करनी है, बस हमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना हिस्सा निभाना है। तो आज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे पर आइए एक छोटा सा प्रॉमिस करें, जब हमारे सामने किसी की मदद करने का मौका आएगा, हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार मदद करेंगे, किसी क्राइसिस में गलत इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर वॉलंटियर करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंसानियत को सिर्फ एक दिन तक लिमिटेड नहीं रखेंगे। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट होना कोई प्रोफेशन नहीं है, यह एक सोच है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक बेहतर इंसान बनने का तरीका है। तो इसी के साथ दोस्तों, वक्त हो चुका है रोज़गार सूचना की तरफ बढ़ने का। हमारी आज की पहली रोज़गार सूचना आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। उन्होंने जूनियर एसोसिएट्स के पद पर 9,776 वैकेंसीज जारी करी है। आई रिपीट, 9,776 वैकेंसीज। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 है, 31 अगस्त 2026, और इनकी अप्लाई करने की वेबसाइट है ibpsreg.ibps.in। मैं रिपीट कर देता हूँ, ibpsreg.ibps.in। हमारी दूसरी रोजगार सूचना आ रही है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। RRB ने जूनियर इंजीनियर्स और अन्य टेक्निकल पोस्ट के पद पर 3,993 वैकेंसीज जारी करी हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 सितंबर 2026 है। इनके अप्लाई करने की वेबसाइट है rrbapply.gov.in। मैं रिपीट कर देता हूँ, rrbapply.gov.in। दोस्तों, आज की बातचीत से बस एक बात याद रखिए, इंसानियत को सिर्फ एक दिन मत मनाइए, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। हम पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन किसी एक इंसान की मदद ज़रूर कर सकते हैं। तो अगली बार जब किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो, बस खुद से पूछिए कि क्या मैं कुछ कर सकता

हूँ, अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़िए। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मैं हूँ मंथन। आज हमने बात करी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के बारे में। आशा करता हूँ कि आप हमारे सीखी हुई शिक्षाओं को आगे फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। इसी के साथ आप सुन रहे थे आकाशवाणी युववाणी। नमस्कार, धन्यवाद।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं थानेदार फिल्म का गीत, बप्पी लहरी, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में अनजान के लिखे बोल हैं बप्पी लहरी का संगीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: बार बार देखो, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, अमर अर्शी और बादशाह नेहा कक्कर की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है अमरीक सिंह और कुमार ने, और संगीत से सजाया है जसलीन रॉयल।

हिंदी मीडियम फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं गुरु रंधावा और अर्जुन की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा और संगीत से सजाया है गुरु रंधावा और रजत नागपाल ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं क्वीन फिल्म से, लव जनुजा, सोनू कक्कड़ और नेहा कक्कड़ की आवाज़ों में ये गीत है अनविता दत्त का लिखा हुआ, और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

बॉम्बे फिल्म का गीत सुनिए रेमो फर्नांडिस की आवाज़ में। ये गीत लिखा है महबूब ने, संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
0: आकाशवाणी जयपुर मेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। शाम 6:43 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी।

शाम 7 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ग्राम भारती। ग्राम भारती कार्यक्रम में आज सुनिए वार्ता आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। वार्ताकार है राम अवतार भारद्वाज। शाम 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज सुनिए बातचीत पशुओं में प्रजनन संबंधित समस्याएं और समाधान।

रात 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, और 8:30 पर आप सुनिए कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

0: रात 9:30 पर सुनी कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10 बजे समय रहेगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे हनुमान साय महावर के गाए जल तरंग वादन राग कलावती। रात 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर शाम के 6 बजने को है। अब से थोड़ी देर में सुनिए हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है।
2: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश

0: कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ देर में शुरू होगा। भारत ने अब तक 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं बधाई हो फिल्म का गीत गुरु रंधावा की आवाज़ में। मिलौड के लिखे बोल हैं तनिष बागची का संगीत।

0: तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से। मेरा नाम है गौरव उपाध्याय और आप सुन रहे हैं अगला गीत दिल धड़कने दो। फिल्म से यशिता शर्मा और मनीष कुमार की आवाज़ों में ये गीत है, जावेद अख्तर का लिखा हुआ और संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

सिम्बा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं नेहा कक्कड़, मीका सिंह और कुमार सानू की आवाज़ों में गाया हुआ ये गीत है, शबीर अहमद का लिखा हुआ, संगीत से सजाया है तनिष्क बागची ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुनने जा रहे हैं रोमी और तनिष्क बागची की आवाज़ों में। नीरत राजावत ने इस गीत को लिखा है, संगीत से सजाया है तनिष्क बागची ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: कर्ज फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी के लिखे बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियात और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोरा इकराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना,

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, आचार संहिता लागू। 309 स्थानीय निकायों में 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में मतदान होगा। 16वीं राजस्थान विधानसभा का छठा सत्र कल से। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने सदस्यों के साथ बैठक कर रणनीति तय की। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने सरकारी कैंसर इंजेक्शन के दिल्ली में कथित रूप से अवैध बिक्री के मामले में गहन जांच करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 309 स्थानीय निकायों के चुनाव दो चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता कर शहरी निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि एक राज्य एक चुनाव के तहत ये चुनाव करवाए जाएंगे। निकाय चुनाव में 39 जिलों को शामिल किया गया है। पहले चरण का मतदान 9 सितम्बर, वहीं 11 सितंबर को दूसरे चरण के वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 सितंबर को की जाएगी। नगर परिषद सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा। निकाय चुनाव सदस्य पद की अधिसूचना 27 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
1: इसके चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के सदस्य पद के लिए लोक सूचना जारी करने की जो तिथि है वो 27/8/2026 है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/8/2026, नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 1/9/2026, अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 3/9/2026 अपराह्न 3 बजे तक, चुनाव चिन्हों का आवंटन 4/9/2026 और मतदान की तिथि, प्रथम चरण की जो मतदान तिथि है वो 9 सितंबर 2026 और द्वितीय चरण की जो मतदान तिथि है वो 11 सितंबर 2026।
0: राज्य के 309 नगरीय निकायों में 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इन चुनावों में 1,44,00,000 से अधिक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि जयपुर नगर निगम में सबसे अधिक मतदाता हैं, वहीं बूंदी के इंद्रगढ़ में सबसे कम वोटर हैं।
1: इस चुनाव में 309 नगरीय निकायों के 1,44,03,853 मतदाता ये अपने मत का प्रयोग करेंगे। नगर निगम जयपुर में सबसे अधिक मतदाता हैं, ये 24,20,839 और नगर पालिका इंद्रगढ़ बूंदी जिला उसमें सबसे कम मतदाता हैं 4,744। सारे जो नगरीय निकाय हैं इसमें ईवीएम काम में ली जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
0: ये चुनाव ईवीएम से करवाए जाएंगे। इसके लिए आयोग ने सभी जिलों को पर्याप्त मशीनों का आवंटन कर दिया है। चुनाव कार्य के लिए 1,15,000 से अधिक कार्मिक नियोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि 2 से अधिक संतान वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक हटाई जा चुकी है। निकाय चुनाव को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा का छठा सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। मॉनसून सत्र के लगभग 5 दिन चलने की संभावना है। इस दौरान राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 और राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक पेश किए जा सकते हैं। साथ ही वाणिज्य कर और अन्य संशोधन विधेयक भी सदन में रखे जा सकते हैं। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में कल सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें सदन के संभावित कामकाज

0: और कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की गई। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। मॉनसून सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने सदस्यों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। इससे पहले विधानसभा का पांचवा सत्र इस साल 28 जनवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक चला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 4 रेलवे और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं पर करीब 13,041 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन विस्तारित रेलवे लाइनों के पूरा होने से आवागमन में सुधार होगा, साथ ही रेलवे की परिचालन दक्षता में भी बढ़ोतरी होगी।
1: पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एकदम नेपाल के बॉर्डर तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए।
0: प्रदेश में उद्योग और निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए किए जा रहे कामों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इस साल अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान प्रदेश में लगभग 2,37,00,000 रुपए के निवेश आशय मिले हैं। डीरेगुलेशन फेज 1 की इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि इसमें जुलाई महीने में 93,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश आशय शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उद्योगों से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने सरकारी कैंसर इंजेक्शन की दिल्ली में कथित रूप से अवैध बिक्री के मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्री खेवसर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को प्रकरण की तथ्यात्मक जांच करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए उपलब्ध कराई जा रही महंगी जीवन रक्षक दवाओं की किसी स्तर पर कालाबाजारी और अवैध बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीकानेर के सरकारी कैंसर अस्पताल के लिए RMSCL के माध्यम से भेजे गए इंजेक्शंस की दिल्ली में कथित रूप से बिक्री की बात सामने आने के बाद चिकित्सा मंत्री ने पूरी सप्लाई चेन, स्टॉक रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड की तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। श्री खेवसर ने अधिकारियों को सरकारी दवाओं की सप्लाई और वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने को कहा है। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में आज एक कार से करीब 18 किलो से अधिक अफीम जब्त की गई। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से नशा मुक्त अभियान के तहत बोहेड़ा गांव से ये जब्ती की गई। उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि पकड़ी गई अफीम की कीमत 75,00,000 रुपए से अधिक है। ये अवैध अफीम बाड़मेर ले जाई जा रही थी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इनके माध्यम से लोगों को साइबर ठगी और मनी म्यूल अकाउंट के बारे में बताया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पाली में राजस्थान ग्रामीण बैंक की ओर से जन जागृति कार्यक्रम रखा गया। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक भुवन व्यास ने डिजिटल लेन देन में सावधानी बरतने और किसी भी अनजान व्यक्ति से निजी जानकारी साझा नहीं करने के बारे में लोगों को जागरूक किया। कोटा में आज राजभाषा हिंदी के महत्व और डिजिटल युग में उसकी संभावनाएं विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से हुई इस संगोष्ठी में हिंदी के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। क्षेत्रीय आयुक्त सुधीर बत्रा ने कहा कि प्रशासन में व्यवहारिक हिंदी का उपयोग पारदर्शिता और जनसंपर्क

0: संपर्क को अधिक प्रभावी बनाता है। वहीं सीबीसी के सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा ने राजभाषा हिंदी के स्वरूप और डिजिटल युग में उसकी बढ़ती उपयोगिता पर प्रकाश डाला। श्री मीणा ने कहा कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षा और एआई के दौर में हिंदी तकनीकी सशक्त भाषा के रूप में उभर रही है। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। ये दिन छायांकन कला के इतिहास और समाज में इसके महत्व का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। एक अच्छी तस्वीर समय, समाज और इतिहास के पलों को सुरक्षित करती है। एक रिपोर्ट।
1: एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। दुनिया भर में किसी हादसे, प्राकृतिक आपदा या त्रासदी की बात हो या फिर मिलना, बिछड़ना, राजनीतिक घटनाक्रम, कैमरा इन सभी को कैद कर यादगार बनाता है। इन्हीं पलों और यादों को सहेजने वाले छायाकारों के महत्व को रेखांकित करता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। हालांकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब हर हाथ में कैमरे से लैस मोबाइल फोन है, आज स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरों ने फोटोग्राफी कला तक हर व्यक्ति की पहुंच आसान बना दी है। विश्व फोटोग्राफी डे के अवसर पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कल से 3 दिन की फोटो प्रदर्शनी नजर का आयोजन किया जा रहा है। न्यूज डेस्क से सुदर्शन नाहर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भरतपुर के पैराशूटर रुद्रांश खंडेलवाल को अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री बागड़े ने कहा कि रुद्रांश ने शूटिंग में असाधारण प्रदर्शन कर पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। गौरतलब है कि एक हादसे में अपना पैर गंवाने वाले रुद्रांश ने हिम्मत नहीं हारी और निशानेबाजी को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने शूटिंग में 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। वे पेरिस पैरालंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, साथ ही एशियन गेम्स 2023 में भी उन्होंने 2 रजत पदक अपने नाम किए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, आचार संहिता लागू। 309 स्थानीय निकायों में 9 और 11 सितम्बर को 2 चरणों में मतदान होगा। 16वीं राजस्थान विधानसभा का 6ठा सत्र कल से। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने सदस्यों के साथ बैठक कर रणनीति तय की। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने सरकारी कैंसर इंजेक्शन के दिल्ली में कथित रूप से अवैध बिक्री के मामले में गहन जांच करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष मेहता। जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कोटा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में 72 प्रतिभाओं को राजकीय सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, खेल, कला और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और वीरांगनाओं को नमन किया गया। शिक्षा मंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की और कहा कि जीवन में मानवीय मूल्यों तथा संस्कारों का महत्व है। उन्होंने नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की। समारोह में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे और विद्यार्थियों ने भी इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुख्य आतिथ्य में निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस अवसर पर सियाम ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक संध्या आयोजित हुई। विभाजन विभीषिका के दौरान जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। शहीद परिवारों का सम्मान भी किया गया। नगर निगम कोटा में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विभाजन के दौरान विस्थापन और लोगों की पीड़ा को चित्रों और ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से दिखाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा विकास प्राधिकरण, नगर निगम और सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों के 690 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 430 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सभी 100 वार्डों को स्मार्ट वार्ड के रूप में

0: विकसित करने और लोगों को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। सांगोद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 12 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा बूंदी की पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने और सुपोषित माँ अभियान के माध्यम से मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात कही। कोटा शहर को प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत नई बसों की सुविधा मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से वर्चुअल माध्यम से कोटा में गुलाबी रंग की ई बसों को रवाना किया। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी बसों को हरी झंडी दिखाई। इन बसों से शहर में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ने और प्रदूषण कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। कोटा से रामेश्वरम और मदुरई के लिए तीर्थ यात्रा पर विशेष ट्रेन रवाना हुई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस ट्रेन को शिक्षा और पंचायती राज मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। कोटा से 616 और 12 से 354 तीर्थयात्री इस यात्रा में शामिल हुए। अलवर में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का सीधा प्रसारण कोटा के सियाम ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने 10,548 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इनमें कोटा जिले के भी 314 अभ्यर्थी शामिल हुए। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। कोटा के कलेक्ट्रेट सभागार से करीब 250 युवा इस कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने नशे से दूर रहने और जागरूकता अभियान में भाग लेने का संकल्प लिया। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में देश की पहली वंदे भारत प्लेटफॉर्म आधारित फ्रेट ईएमयू सुपरफास्ट पार्सल रैक के तकनीकी परीक्षण के क्रम में कोटा से रोल खुर्द खंड के बीच इस विशेष रैक का एक ट्रायल रन किया गया। इस दौरान रैक को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की परीक्षण गति से चलाकर महत्वपूर्ण परीक्षण किए गए। ट्रायल में मुख्य रूप से रीजेनरेटिव एनर्जी, थर्मल क्षमता, ट्रैक्शन और ब्रेकिंग प्रणाली की कार्यक्षमता और लोड कंडीशन में जर्क टेस्ट किए गए। कोटा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव रो ऐलान। चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हुई। 309 स्थानीय निकाय में 9 और 11 सितंबर ने वोट पड़ेला। 16वीं विधानसभा रो छठो सत्र काल शुरू भेला। सत्ता पक्ष और विपक्ष रणनीति तय कीनी। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सरकारी अस्पताल में कैंसर रा मरीजा ने मुहैया कराया जावन वाला इंजेक्शन दिल्ली में कथित रूप गैर कानूनी तौर में बेचा जावन रे मामला में जांच रा हुकम दीना। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। प्रदेश रा 309 स्थानीय निकाय रा चुनाव 2 दौर में कराया जावेला। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह आज जयपुर में खबरनवीसा ने शहरी निकाय चुनाव कार्यक्रम री जानकारी दीनी। वे बतायो कि निकाय चुनाव सदस्य ओहदा सारू अधिसूचना 27 अगस्त ने जारी करी जावेला। इस आगे नाम पाना दाखिल करण रो काम शुरू है जावेला। एक राज्य एक चुनाव री सोचरा तहत कराया जा रहा निकाय चुनाव में 39 जिला शामिल करी चाह है। पहला दौर में 9 सितंबर ने जबकि दूजा दौर में 11 सितंबर ने वोट पड़ेला। वोटा की गिनती 14 सितंबर ने करी जावेला। नगर परिषद सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष ओहदा सारू चुनाव 21 सितंबर ने फैला।
2: इसके चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के सदस्य पद के लिए लोक सूचना जारी करने की जो तिथि है वो 27/8/2026 है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/8/2026। नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 1/9/2026। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 3/9/2026 अपराह्न 3 बजे तक। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4/9/2026 और मतदान की तिथि प्रथम चरण की जो मतदान तिथि है वो 9 सितंबर 2026 और द्वितीय चरण की जो मतदान तिथि है वो 11 सितंबर 2026।

0: राज्य र 309 नगरीय निकायमा 10 नगर निगम 47 नगर परिषद र 252 नगरपालिकामा सामेल है। यी चुनावमा 1,44,00,000 उम्बत्ता मतदाता वोट दे सकेला। राज्य निर्वाचन आयुक्त बतायो कि वोट देवण रा पात्र लोगारी तादाद जयपुर नगर निगम माए सब 32 जबकि बूंदी जिला रा इंद्रगढ़ माए सब कम है।
1: इस चुनाव में 309 नगरीय निकायों के 1,44,03,853 मतदाता ये अपने मत का प्रयोग करेंगे। नगर निगम जयपुर में सबसे अधिक मतदाता हैं, ये 24,20,839 और नगर पालिका इंद्रगढ़ बूंदी जिला उसमें सबसे कम मतदाता हैं 4,744। सारे जो नगरीय निकाय हैं इसमें ईवीएम काम में ली जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
0: चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों कराया जावेला। इसारू राज्य निर्वाचन आयोग सगला जिला ने जरूरी तादाद में ईवीएम अलॉट करती नी है। चुनाव रकम में 1,15,000 कर्मचारियां री ड्यूटी लगाई जावेला। ध्यान जोग है कि 32 संतान वाला उम्मीदवार रे चुनाव लड़बा माथे लगाई जी रोक हटाती रिची है। निकाय चुनाव रा ऐलान सा गई संबंधित हलका में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू भे की है। राज्य री 16वीं विधानसभा रो छठो सत्र काल समारा 11 बजे शुरू फैला। सदन रा पावस सत्र रे दौरान राजस्थान समान नागरिक संहिता बिल 2026 और राजस्थान वृक्ष संरक्षण बिल और वाणिज्यिक कर और अन्य संशोधन बिल पेश कराया जावन रा आसार है। सत्रों पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री सदारत माय काल सगली सियासी पार्टियां ना नेतावां री मीटिंग बुलाई जी जिनमाय सदन रा कामकाज ने ठीक ढंग चलावन रे बारा माय चर्चा करी जी। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग कहो कि सरकार हर मुद्दा माथे चर्चा सारू तैयार है। विधानसभा रा पावस सत्र सारू सत्ता पक्ष और विपक्ष आप आपरा सदस्यां री मीटिंग बुलार रणनीति बनाई। इणु पहले विधानसभा रो 5वां सत्र ई साल 28 जनवरी 10 मार्च ताई चाल्यो हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत माए आज नई दिल्ली माए हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल री मीटिंग माए कई खास फैसला करी चिया। मीटिंग पाछे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खबर नवीसा ने आना बारा माए जानकारी दीनी। वे बतायो कि कैबिनेट 5 परियोजनावां ने मंजूर कीनी। आमाय 4 रेलाउं जुड़ी और 1 हाईवे जुड़ी परियोजना शामिल है। श्री वैष्णव बतायो कि आ परियोजनावां माथे कोई 13,041 करोड़ रुपया खर्च कराया जावेला। वे बतायो कि आ रेलवे लेना रा काम पूरा होवण पाछे आवन जावण माय और सुधार फैला।
2: पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एकदम नेपाल के बॉर्डर तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए।
0: प्रदेश में आए इन साल अप्रैल और जुलाई महीना रे दौरान करीब 2,37,00,000 रुपये का निवेश प्रस्ताव मिलिया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बतायो कि डी रेगुलेशन फेज 1 री इम्पैक्ट असेसमेंट रपट्र मुजब जुलाई महीना में 93,000 करोड़ रुपये उम्बत्ता रा निवेश प्रस्ताव मिलिया। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर प्रदेश रा सरकारी अस्पताल में कैंसर री बीमारी रा मरीजा सारू मुहैया कराया जावन वाला इंजेक्शन री दिल्ली में कथित तौर गैर कानूनी बिक्री रे मामला में करड़ी कार्रवाई रा हुकम दीना है। वे अहलकारा ने मामला री जांच करण सारू कहो। चिकित्सा मंत्री कहो कि सरकारी अस्पताल में इलाज सारू मुहैया कराई जा रही महंगी दवाइयां री किण ई लेवल माथे कालाबाजारी और गैर कानूनी बिक्री बर्दाश्त नहीं करी जावेला। बीकानेर रा सरकारी कैंसर अस्पताल सारू RMSCL रजरिये भेजी जा इंजेक्शन री दिल्ली में कथित तौर गैर कानूनी बिक्री री ठा पड़िया पाछे चिकित्सा मंत्री पूरी सप्लाई चेन स्टॉक रजिस्टर और दूजा रिकॉर्ड री तुरंत जांच करण रा हुकम दीना। चित्तौड़गढ़ जिला रा बड़ी सादड़ी कन्ने बोहेड़ा गांव में आज एक कार 18 किलोग्राम बत्ती अमल जब्त करी ची। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो री ओर नशा मुक्त

0: दिसंबर ने वोट पड़ेला। 16वीं विधानसभा रो छठो सत्र काल शुरू हैला। सत्ता पक्ष और विपक्ष रणनीति तय कीनी। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सरकारी अस्पताल में कैंसर रा मरीजा ने मुहैया कराया जावन वाला इंजेक्शन दिल्ली में कथित रूप गैर कानूनी तौर बेचा जावन रा मामला में जांच रा हुक्म दीना। ऐसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम भारती

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: ग्राम भारती कार्यक्रम री बाट उड़ीकता सगला किसान साथिया ने अभिलाषा पारी की ओरसू नेह भरी राम राम सा। और अदिति बहन आपने भी मारी ओरसू गणी गणी राम राम सा।
3: अभिलाषा बहन आपने भी गणी गणी राम राम। और सुनबाला सगला श्रोतावन अदिति भट्टरो ने मरियो नमस्कार राम राम सा।
2: जी तो अदिति बहन देखो, अपना जो किसान साथी है खेता में पूरी मेहनत लगावे
3: जी,
2: पूरी लागत लगावे, और इनके पाछे भी यदि वाकई फसला थोड़ी सी लापरवाही के कारण यदि खराब हो जावे, वाकी मेहनत को वाकी लागत को पूरो फल ना मिल सके
3: जी,
2: तो देखो अपना किसान साथी है माँ को मनोबल टूटे और उनके साथ वाकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी
3: डगमगा।
2: तो देखो सा ऐसी बहुत सारी बात छोटी छोटी जाने यदि अपना किसान साथी ध्यान में रखे, यानी कि फसलों की सामान्य सी देखभाल यदि वे कर ले वे, तो वाकी जो फसलां हैं बहुत हद तक नुकसान हो बस है बच्चा वाली।
3: बिल्कुल सही कह रहे हो अभिलाषा बहन आप, कि टेम सारू अगर आपा बुवाई कर दी और अगर थोड़ी सी भी अगर लापरवाही अगर आपा बरत ली तो सा आगे उनको दंड आपा ने भोगना ही पड़े।
2: बिल्कुल सा। तो देखो सा जिया कि अपनी फसलों की सामान्य देखभाल के तानी आपा ने समय पर सिंचाई कर देनी चाहिए, उचित खाद और उर्वरक को प्रबंधन करना चाहिए
3: जी सर।
2: बी के साथ साथ टेम टेम पर खरपतवार की निराई गुड़ाई और कीट और रोगों से सुरक्षा आपने लिए बहुत ही जरूरी है, और खेत की नियमित निगरानी कर पौधा की जरूरत ने आपा समय पर पूरो करबा से ही आपने अच्छी पैदावार मिल सके
3: जी सर। बिल्कुल सही कह रहे छो। और पानी को खेत में ज्यादा देर नहीं रुकबा देवा, क्योंकि टाइम देखो बिरखा को समय छे, तो कई बार यहाँ भी हो जाए कि पानी देर तक रुक गयो, मायने देर तक चले गयो माटी में, तो वह नुकसान पुगाबाड़ो हो जावे छे
2: जी सर।
3: तो ये भी आपने ध्यान रखना चाहिए, सागे ही माटी में नमी भी बनाए रखनी चाहिए आपने, खासकर फूल आली जो किस्मा होवे चे वा में या बाली निकलता टेम, बहुत आपने खास ध्यान रखबा की जरूरत चे
2: जी।
3: सागे ही संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक की जो चे मात्रा आप भुरकता रहवा डालता रहवा, सागे ही जो माटी की जांच करवाया आपा पहले तो छाई
2: जी,
3: पर उन टाइम पे भी आपा या ध्यान रखा कि कितनी उर्वरक की आपा ने जो बताई छे बात की इतो ही आपा ने डालनो छे, इतनी आपा ने खाद डालनी छे, स्टेम सारू यूरिया नाइट्रोजन जो भी चीजें आपने छे वो, लेकिन टाइम सारू आपने देनी।
2: बिल्कुल। और देखो सर सबसे बड़ी और मोटी बात ध्यान रखवा की यदि जब भी आप बुवाई कर रहे छा, तो बुवाई से पहले आपने यो ध्यान रखना है कि आप अपने बीज को उपचार जरूर करवा, क्योंकि बीज उपचार ऐसी चीज छे कि जिसे अपनी जो खड़ी फसल है बीमे लागवा वाला कई कीट और रोग इशा छे जहाँ से आप बच सका छा
3: जी।
2: इनके साथ अपन ने मिट्टी की जांच की आप बात करिया, बी के बाद से बात करें आप जैविक खाद की, तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का उपयोग अपनी जो माटी है बी ने उपजाऊ बनाए छे और उपजाऊपन की बी में शक्ति पैदा करे
3: जी सर। सागे ही बात करा खरपतवार की और कीट नियंत्रण की, तो टेम सारू निराई गुड़ाई करके अवांछित घास जिन्हें

0: ટપક ખરપતવાર કહેવાચા ઉના આપણને હટાણો ચાહે છે. સાગહી કીટનાશી ફફૂંદનાશીકો છિડકાવ ભી ટેમ સારું યાની સુબહ કે બખત યા ફિર શામ કે બખત હી કરણો ચાહે છે ઓર તેઝ ધૂપ યા દુપહેર કે ટેમ પે દવા કો છિડકાવ કરવાસું બચણો ચાહે છે.
1: જી ઓર બાત કરા આપા ફસલ ચક્ર કી તો હર સાલ એક હી ખેત મે એક જીસી ફસલા ઉગાબસ હે બચણો ચાહે છે. ઈસે આપણી જો મિટ્ટી કી ઉર્વરતા હે વા નષ્ટ હોવે છે.
0: જી સર.
1: ઈલીએ ફસલ ચક્ર ને અપનાર આપા આપણે જો ખેત મે ઉભા વાળી સામાન્ય સી સમસ્યા વા હે વાસે બચ સકા. तो देखो सर ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें छे यदि आप यहाँ ध्यान में रखा तो अपनी जो फसला है वो आपने अधिक उपजाऊपन दे ली और अपनी जो आमदनी है भी ने
0: बढ़ा वाले भी.
1: तो देखो साहब कार्यक्रम ने भी आगे बढ़ावा. और देखो साहब आपने आज सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर से स्थल रिकॉर्डिंग के आधार पर BS यादव जी एक बहुत ही उपयोगी जानकारी अपने ताई ले रहा है. तो सुना कि वे कहीं जानकारी दिलवा रहा है.
0: चलो साहब.
2: अखिल भारतीय राई सरसों समन्वित परियोजना की 33वीं वार्षिक बैठक भरतपुर के अंदर 17 और 18 सितंबर को आयोजित की है. भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान द्वारा इस बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और ये हर वर्ष विभिन्न विश्वविद्यालयों में किया जाता है. इस बार पहली बार ये हमने भरतपुर के अंदर आयोजित की है. इसमें देश भर के जो भी राई सरसों के ऊपर काम करने वाले वैज्ञानिक हैं वो सब इस वार्षिक समूह बैठक में भाग लेते हैं और गत वर्ष जो भी राई सरसों अनुसंधान में प्रगति हुई है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है, उनका प्रेजेंटेशन होता है और जो अगले साल ये किस तरीके का हमें आगे बढ़ना है, क्या कार्यक्रम करना है उसके बारे में एक्शन प्लान तैयार किया जाता है, इसका ही उद्देश्य होता है. पहले दिन चूंकि विभिन्न जो हमारे विषय हैं जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, इनके सबके जो वैज्ञानिक हैं वो अलग अलग समूह में बैठ के चर्चा करेंगे. विगत वर्ष में उन्होंने क्या काम किया है, उसमें कितनी प्रगति हुई है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और अगले वर्ष के अंतर्गत वो क्या काम करेंगे उसके दिशा निर्देश और उसका एक्शन प्लान जो है वो वैज्ञानिक स्वयं तैयार करेंगे. इसी वार्षिक समूह बैठक के अंतर्गत है जो हमारे माननीय डिग्निटरी ऑनरेबल DG सर हमारे साथ में जुड़े, इन्होंने मार्गदर्शन दिया कि भविष्य के अंदर राई सरसों की जो अनुसंधान है वो किन चीज़ों के ऊपर हम लोगों को फोकस करके आगे बढ़ना है. माननीय DDG क्रॉप साइंस जो ICR के थे वो भी आज चेयर किया इन्होंने, तो उनके जो मार्गदर्शन है किस तरीके से अखिल भारतीय राई सरसों समन्वित परियोजना के अंतर्गत जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनको किस तरह के सपोर्ट की आवश्यकता है, क्या परेशानी आती है उनको दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किस तरीके का सपोर्ट किया कर सकते हैं, वो सब मार्गदर्शन भी उनके द्वारा दिया गया है. ये 2 दिवसीय वार्षिक समूह बैठक इसके अंदर ब्रीडर सीड प्रोडक्शंस के बारे में भी एक चर्चा होती है. देश भर के अंदर राई सरसों की कितनी ब्रीडर सीड की आवश्यकता है, कितना इंडेंट हम लोगों को मिला है, कितना गत वर्ष के अंदर इसका प्रोडक्शन हुआ था और अगले वर्ष का क्या टारगेट है उसके बारे में भी एक सेशन किया जाएगा. साथ के साथ टेक्नोलॉजी डिसिमिनेशन है कि जो गत वर्ष में हमने देश भर के अंदर करीब 3000 से अधिक जो प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन किया है उन प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों के क्या परिणाम रहे और ये उसमें कितनी उत्पादकता का अंतर रहा उसका भी एक सेशन है. कैसे टेक्नोलॉजी डिसिमिनेशन कार्यक्रम को हम और मजबूती प्रदान कर सकते हैं उसके बारे में भी एक सेशन में इसके अंदर चर्चा की. इस समूह के अंतर्गत ही वैराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी की एक बैठक होती है जिसके तहत हमारे जो वैज्ञानिकों द्वारा विगत वर्षों से जो प्रयास किए गए और जो किस्में उन्होंने विकसित की है तो कौन सी किस्में हैं जो कि AVT ट्रायल में, IVT ट्रायल में और जो ट्रायलों में पास होके अब अगर वो प्रचलित किस्म है उनसे करीब जो हमारा क्राइटेरिया है कि 10% से अधिक उपज हो या तेल में उसमें अधिकता हो या कोई और उसके अंदर गुण हो तो उसके आधार पर भी जो वैराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी उन किस्मों को चिन्हित करेगी और उसके बाद में वो कमेटी के अप्रूवल के बाद में वैराइटी जो नोटिफिकेशन के लिए भारत सरकार के वहाँ जाएगी, वहाँ से गजट नोटिफिकेशन होने के बाद में किसानों के लिए जारी की जाएगी. और साथ के साथ जो नए आज विषय चल रहे हैं जैसे कि हाइब्रिड ब्रीडिंग का प्रोग्राम है, जीनोम एडिटिंग का प्रोग्राम है, इस तरह के विषयों के ऊपर भी जो हमारे विशेष एक्सपर्ट हैं देश भर के हम लोगों ने इसके अंदर उनके लेक्चर रखे हैं, उनका गाइडेंस लेंगे हमारे वैज्ञानिक ताकि जो भविष्य के अंदर नई तकनीकें आ रही है विज्ञान के अंदर राई सरसों के अंदर हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं उनका मार्गदर्शन भी मिले तो वो भी इस 2 दिवसीय

0: एक समूह बैठक के अंदर है, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिले। फिर जो प्लेनरी सेशन जो आयोजित करेंगे उसके तहत में दो दिवसीय के अंदर जो परिचर्चा हुई है उसका क्या सार निकला है, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, जैसा कि माननीय डीजी साहब ने डीडीजी साहब ने भी मार्गदर्शन दिया है, उन सबका समावेश करते हुए जो हम लोगों को अगले साल का जो दिशा निर्देश मिलेंगे उसी के तहत में पूरे जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे विभिन्न सेंटर हैं, उन सारे सेंटरों के जो वैज्ञानिक हैं वो उसके अंदर अपना अनुसंधान करेंगे। और चूंकि ये एक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई है तो हमारे करीब पूरे 150 के करीब इसमें जो वैज्ञानिक देश भर से जुड़ रहे हैं, तो कुछ लोग तो ऑनलाइन जुड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पर फिजिकली आए हैं, सब लोग इसमें चर्चा करेंगे और राइस सर्च अनुसंधान तकनीकी जो विस्तार है उसके लिए क्या एक आगे की गाइडलाइन होनी चाहिए, जो भारत सरकार के दिशा निर्देश है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आह्वान है कि हमारा जो देश है वो तिलन में आत्मनिर्भर बने, उन सबके लिए क्या रणनीतियाँ रहेगी, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा होगी। ये साल भर में एक ही बैठक होती है तो इस बैठक के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल और आने वाले भविष्य के लिए जो भी रणनीतियां जो भी चुनौतियां उसके अनुसार ही अनुसंधान की दिशा तय हो।
1: हाँ तो देखो अदिति बहन कितनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी है, पर अब देखो ये जानकारी ने और आगे बढ़ावा और अगली जानकारी ने सुना कि देखो जो सरसों को भविष्य छे काई आपा वर्तमान में कर रहा, काई आपा भूतकाल में कर चुके हैं और काई भविष्य में काई काई उपलब्धियां प्राप्त कर आपा सरसों से ज्यादा फायदा उठा सका छा, तो जाना की काई जानकारी मिल रही है आपा ने।
2: चलो सर,
3: ये एक अखिल भारतीय सरसों अनुसंधान समन्वित परियोजना है कि हमारा सरसों अनुसंधान है जो शिवर में वो इसको कोऑर्डिनेट करता है। इस परियोजना का एक्चुअल में जो ऑयल सीड की परियोजना का शुरुआत 1980 में हुआ था, उस समय सिर्फ 3-4 ही क्रॉप उसमें थी, उसके बाद जो फसलें किस्में बढ़ी और 1987 में फिर ये अलग से एक परियोजना उस समय स्थापित हुई जो कि रेप सीड मस्टर्ड के लिए स्पेशली 1993 में जो स्थान यहाँ पे स्थापित हुआ उसके बाद से इस परियोजना पे पूरे देश में जहाँ जहाँ भी सरसों ग्रोइंग क्षेत्र है उस पर कार्य चलता है। अभी टोटल 22 सेंटर इसमें विभिन्न राज्यों में काम करते हैं, 5 जोन में जो सरसों का अनुसंधान और जो उसकी टेस्टिंग का इवेल्युएशन का सिस्टम है वो टोटल 5 जोन में बटा हुआ है। उन 5 जोनों में 22 सेंटर काम करते हैं। 22 सेंटर के अलावा ये हमारे फंडेड सेंटर हैं जिसमें 4 से 5 वैज्ञानिक जो कि ICAR के द्वारा उनका 75% सैलरी का हिस्सा और उसके साथ साथ जो जितने भी हमारे रिसर्च के लिए जो रिसर्च ऑपरेशनल का खर्चा कैपिटल का खर्चा होता है वो भी 75% ICAR देती है, 25% स्टेट्स देते हैं। तो ये एक विश्व में जो सभी फसलों में न कि सिर्फ प्राय सरसों में लगभग क्रॉप साइंस में 26 इस तरह की परियोजना है, जैसे गेहूँ की, धान की, चने की, सरसों जो बाकी फसलें हैं उनकी अलग से परियोजना है। तो विश्व में ये एक सबसे सशक्त सिस्टम है हमारा जिसमें आपको जो एरिया स्पेसिफिक की बात करते हैं हम, एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो एक साइट स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के हिसाब से ये परियोजना काम करती है। इसके सभी सेंटर्स को रिसर्च का अलग अलग मैंडेट दिया जाता है, जिस तरह का स्टेट की व्यवस्था है, जिस तरह की वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पानी की बात करें और अन्य जो भूमि की टाइप आदि का, तो उसके हिसाब से ये सभी सेंटर अपना कार्य करते हैं और उस अपने अनुसंधान को वो 1 साल या 2 साल तक अपने वहाँ टेस्ट करते हैं जो हमारा मैंडेट है, उसके हिसाब से फिर उस टेक्नोलॉजी को चाहे वो वैरायटी हो या जो अन्य टेक्नोलॉजी है, खाद देना है, पानी देना है, बीमारी कीड़ों की रोकथाम करना है, उसको सम्मिलित परियोजना में वो के लिए लेके आते हैं। ये कार्यक्रम है ये साल में सभी क्रॉप में एक बार होता है। इसमें सारा जितने भी जो वैज्ञानिक हैं वो सभी इकट्ठे होते हैं और जो टेक्निकल प्रोग्राम लास्ट ईयर जिनको जो टारगेट दिए गए थे उन पे आज चर्चा होगी, क्या टारगेट था, कितना आपने उसको पूरा किया, अगले वर्ष के लिए आप किस तरह से अपना कार्यक्रम जो है प्लान करेंगे। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी मुद्दा है, एल नीनो की वजह से गर्मी की बात है, तो उसमें हीट टॉलरेंस के लिए हम कैसे वो करें। दूसरा जैसे अभी जो साउथ एशिया का जो संकट था तो खाद की थोड़ी समस्या महसूस की जा रही, तो किस तरह से हम इनपुट एफिशिएंस वैरायटी, वाटर यूज एफिशिएंस वैरायटी और उसको सभी को जो है हम उस पर बात करते हैं, जो ब्रीडिंग का जो कार्य होता है उसमें सभी सेंटर्स जो अपना मटेरियल पैदा करते हैं वो पहले लिमिटेड एरिया में टेस्ट होता है, उसके बाद वो सेंटर नेशनल लेवल पे आता है जो हम ट्रायल कोऑर्डिनेट करेंगे या बनाएंगे। उसमें एक शुरुआत की ट्रायल होती है जिसको इनिशियल वैराइटल ट्रायल कहते हैं,

क्योंकि पूरे पांचों जोन में वो लगता है सेम मटेरियल, लेकिन उनकी जो लोकल और स्टेट की चेक्स हैं वो चेंज हो जाती है, एक नेशनल चेक होती है जो पूरे देश में लगती है, और जो लोकल वैरायटीज हैं, क्योंकि हमें देखना है कि किस क्षेत्र में जो अच्छी वैरायटी उससे अच्छी वैरायटी आए, तो उसके लिए वो पूरे देश में टेस्ट होता है। उसके बाद जैसे स्कूल में प्रमोशन होते हैं उसी तरह से जोन वाइज प्रमोशन होते हैं, जिस जोन में जो बेंचमार्क है हमारे यील्ड के लिए, क्वालिटी के लिए, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, वो उसके बेस पे उसको हम प्रमोट करते हैं, पीडी पे ले जाते हैं, जिसको के एडवांस वैरायटल ट्रायल कहते हैं, वन फर्स्ट ईयर का। उसमें वो सिर्फ जोन लेवल पे होता है, उसमें थोड़ा प्लॉट साइज बढ़ जाता है, फिर उसके एक जोन में कम से कम 7 से 8 लोकेशन पे वो ट्रायल होती है, ताकि उसकी स्टेबिलिटी हम देख सकें, उस क्षेत्र में उसकी अडोप्टेबिलिटी देख सकें। उसके बाद फिर वो ट्रायल होने के बाद उसका फिर डेटा आता है पूरा, तो संस्थान जो हमारी कोऑर्डिनेटिंग यूनिट है उसको तीसरे साल के लिए उसको प्रमोट करती है, जो भी एंट्री जो बेंचमार्क से ऊपर रहती है उसको फिर तीसरे साल के लिए ले जाते हैं। स्कूल में आमतौर पर होता है कि बच्चा फेल हो जाता है तो दोबारा उस क्लास में दिया जाता है, इसमें क्योंकि एंट्री लगातार आती रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो उसके लिए हम उसको जहाँ पे वो एंट्री परफॉर्म नहीं करती वो वहीं ड्रॉप हो जाती है, और उसके बाद नई एंट्री सेंटर्स देते रहते हैं। उसकी आइडेंटिटी जो तीसरे साल के डेटा के बेस पे हम सभी सेंटर्स को वो डेटा शेयर कर देते हैं, वो सभी सेंटर्स एक वैरायटल आइडेंटिफिकेशन प्रपोजल बनता है, उसमें 3 साल का पूरा डेटा जो कोऑर्डिनेटेड ट्रायल में हुआ है, उसमें यील्ड का डेटा, ब्रीडिंग ट्रायल का, एग्रोनॉमी में होता है स्पेसिंग का है, डेट ऑफ सोइंग का है, फर्टिलाइजर यूज का है, उसके अलावा डिजीज का पूरा डेटा होता है, क्वालिटी का डेटा होता है, और फार्मर्स फील्ड पे भी कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बेस पे वो प्रपोजल आ जाता है। उसमें 15-16 मेंबर की कमेटी होती है, डीडीजी चेयरमैन होते हैं उसके, तो उसमें उसकी मेरिट के बेस पे कि ये जितने भी हमारे बेंचमार्क है अगर वो वैरायटी उसको पूरा करती है तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद ये जो वैरायटी जो आइडेंटिफाई होती है वो नेशनल लेवल पे एक सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी होती है, जो कि हमारे कृषि विभाग के अंतर्गत बनती है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर जनरल क्रॉप साइंस उसके भी चेयरमैन होते हैं, उसमें लगभग 40 सदस्य होते हैं, जिसमें के विभिन्न विशेषज्ञ हमारे जो कमिश्नर एग्रीकल्चर होते हैं, राज्यों से बहुत से रिप्रेजेंटेटिव, सीड कॉरपोरेशन के हमारे डायरेक्टर्स होते हैं और जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उसके बाद उस पर फिर चर्चा होती है। वो मीटिंग जो है सभी फसलों की किस्में उसमें आ जाती है, लगभग हर 3 महीने पे वो मीटिंग होती है, और जब वो मीटिंग में वो अगर क्वालिफाई करती हो वैरायटी तो उसको रिलीज करके उसको गजट नोटिफिकेशन के लिए उसको हम रिकमेंड करते हैं, और गजट नोटिफिकेशन में आने के बाद जो भी स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी उसका ब्रीडर सीड का कार्यक्रम, फाउंडेशन सीड का कार्यक्रम, सर्टिफाइड सीड का कार्यक्रम वो शुरू करते हैं। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है। तो ये जो आज की मीटिंग है ये बहुत ही अहम मीटिंग है। आप सभी जानते हैं कि हम सभी खाद्य फसलों में, जैसा कि बताया गया कि हम अभी 376 मिलियन टन हमारा टोटल खाद्यान्नों का पैदावार रही, जिसमें कि पलसीज और हमारी जितनी भी खाद्य फसलें हैं, ऑयल सीड्स में भी पिछले साल एक रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, 43 मिलियन टन उत्पादन हुआ, सरसों में भी जैसे 13.7 मिलियन टन के आसपास एवर हाईएस्ट जो थर्ड एस्टिमेट आया 25-26 का, उसमें हमारे एस्टिमेट हैं। और इस तरह से इसका जो मुख्य श्रेय जाता है वो हमारे जो एक अच्छी किस्में किसानों तक जो जा रही हैं उनको ले जाने का, और उन किस्मों का बीज पैदा करना एक बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। नई किस्में आई उसका बीज हमने ढंग से पैदा किया, जो सीड चेन में आया राज्यों के बीज निगमों द्वारा, हमारे नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उनका सीड अधिक से अधिक जितनी जल्दी किसान तक पहुँचता है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। सरसों में हमने एक प्रयास किया, पहले पूसा बोल्ड वरना दो हमारी किस्में थी, बहुत अच्छी किस्में थी, एक 1959 की रिलीज थी वरना और पूसा बोल्ड 1984 की थी। तो हम जब ब्रीडर सीड को इंडेंट पे हम वो लेते थे, स्टेट से इंडेंट आते हैं हर साल, जैसे उसकी एक मीटिंग होती है, सभी स्टेट्स बैठते हैं, सभी जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो डायरेक्टर होते हैं वो पूरी नई वैरायटीज को लेके बैठते हैं, तो हम देखते थे 70% के आसपास जो उसमें हिस्सेदारी होती थी पुरानी वैरायटीज की होती थी। हमने ये पिछले 5-6 सालों में प्रयास किया और आज की डेट में हम देखते हैं तो लगभग 80-85% किस्में जो सीड चेन में है वो 10 साल से कम अवधि की रिलीज किस्में है। उसी तरह सीड रिप्लेसमेंट का एक बहुत भारी योगदान रहता है, अगर आप नई किस्मों को जल्दी से जल्दी किसान तक ले जाते हैं और नया सीड किसान लगाता है तो उससे भी पैदावार में बढ़ोतरी होती है। तो सरसों में लगभग 55-56% सीड रिप्लेसमेंट रेट है कि किसान हर दूसरे साल अपना बीज बदल लेता है, तो उससे भी पैदावार में काफ़ी फायदा होता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, बिंदु हैं जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता था। क्लाइमेट रेजिलेंट, जैसे हीट की बात की जाती है कि जैसे बिजाई के समय भी इस फसल में

करनी है, आपको उनकी जो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी करनी है। आजकल जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, आपका ड्रिप इरीगेशन है, माइक्रो इरीगेशन है, और जो माइक्रोब्स की बात करते हैं, बायोलॉजिकल्स की बात करते हैं, क्योंकि हर जगह आप देखते हैं बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर की यूज से सोयल का जो स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ता है, तो इस तरह से उस पर काम करते हैं। और जो अन्य जो समस्याएं आमतौर पर आती हैं उसमें, जैसे ड्रोट का आप जानते हैं, सरसों का ज़्यादातर क्षेत्र जहाँ किसान के पास अच्छे पानी की व्यवस्था होती है, उसके पास अच्छा जो ज़मीन होती है, तो वो आमतौर पर गेहूं और धान मक्का की तरफ जाता है, सरसों की तरफ कोई नहीं जाता है या दलहन की तरफ नहीं जाता है। तो उसके लिए जब तक उन किस्मों में ड्रोट टॉलरेंस नहीं होगी, पानी की उपलब्धता बहुत कम होती है, तो उस पर हमने काम किया। इसी तरह सैलिनिटी की समस्या आप देखते हैं कि जहाँ पानी थोड़ा ख़राब है, ज़मीन में सैलिनिटी की समस्या आ रही है, तो उस पर भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया। और हीट टॉलरेंस के लिए तो कई वैरायटीज अभी हैं जो कि सीडलिंग स्टेज की हीट से भी और जो आपकी टर्मिनल स्टेज की हीट से भी अच्छा काम करती है। कोल्ड फ्रोस्ट का एक आप कभी ध्यान हो, जो लोग खेती से संबंधित है, कि पहले पाले की बड़ी भारी समस्या थी और हर दूसरे तीसरे साल पाला जो है पूरी फसल को बर्बाद कर देता था, खासतौर पर नॉर्दर्न रीजन में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और इन हिस्सों में, यूपी में बड़ा भारी नुकसान होता था। लेकिन अब बड़ी बहुत ही कम मात्रा में और कई वर्षों के बाद हम सुनते हैं कि भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है फ्रोस्ट की प्रॉब्लम है। हीट का जैसे एक विशेष कार्यक्रम हमने जो चलाया, उस पर हमें बहुत अच्छी जो है सफलता मिली। अब हम सरसों को सितंबर के माह में भी बिजाई कर सकते हैं, जबकि उस समय लगभग जो सोयल का टेम्परेचर वो 40 डिग्री से ऊपर होता है, तो उसमें भी वो फसल किस्में उगती हैं और अच्छी बढ़वार की अच्छी पैदावार देती है। गुणवत्ता एक बहुत ही आवश्यक विषय है सरसों में। सरसों में जो एक फैटी एसिड जो प्रोफाइल है, तो उसमें आमतौर पर जैसे इरुसी का एक अम्ल होता है तेल में, बहुत सैकड़ों संख्या में जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, तो इरुसिक अम्ल की मात्रा सरसों के तेल में बहुत अधिक होती है, लगभग जो नॉर्मल वैरायटी है उसमें 40% के आसपास होती है। और उसका जो नुकसान ये होता है कि वो एक तो बच्चों में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, मोटापे की समस्या आती है, दूसरा हार्ट में भी जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन में वो थोड़ी उसको सहायता करती है, तो उससे हार्ट की समस्याएं भी आती है। तो हमने 1996 एक नेटवर्क प्रोग्राम शुरू किया था और उसका नतीजा ये हुआ कि आज की डेट में हमारे पास कम इरुसिक अम्ल वाली जो 2% से कम जो है उस स्टैंडर्ड को हम कम मानते हैं, तो उसकी लगभग 11-12 किस्में हमारे पास हैं जो अच्छी पैदावार वाली किस्में हैं। दूसरा एक तत्व इसमें होता है ग्लूकोसिनेट। ग्लूकोसिनेट जब आप सरसों से तेल निकालते हो तो वो खली में चला जाता है, तो जो खली में हम उसको ज़्यादा खिलाते हैं अपनी भैंसों को, गायों को, और नॉन रूमिनेंट में खास तौर पे वो घेंगा की समस्या पैदा करता है। और जैसे गाय भैंस में भी अगर हम सरसों की खली लगातार खिलाते हैं तो उसमें ब्यांत गिरने आदि की समस्याएं आती है, उस पर भी हमने काम किया। और अब हमारी 4-5 किस्में ऐसी हैं जिसमें इरुसिक एसिड 2% से कम है, ग्लूकोसेट की मात्रा हमारी आम किस्मों में लगभग 120 पार्ट्स पर मिलियन होती है, PPM। वो जो WHO के स्टैंडर्ड हैं, जिसको के आप लोग मार्केट से कनोला टाइप का ऑयल खरीदते होंगे, कनोला ऑयल, तो कनोला की डेफिनेशन ये है कि जिस सरसों की प्रजातियों में 2% से कम इरुसिक अम्ल हो तेल में, और जो खली में है तेल निकालने के बाद ग्लूकोसेट की मात्रा 30 PPM से कम हो, तो उस वैरायटी को सरसों जो प्रजाति की, उसको कनोला या 00 बोलते हैं। सिंगल अगर कंपोनेंट है तो उसको सिंगल 00 बोलते हैं। तो उस पर हमने काम कार्य किया और हमारे पास अब मैंने जैसे बताया 5 जो है 00 की, जिनको हमने इंडोला नाम दिया। कनोला जो है ये एक कनेडियन टर्मिनोलॉजी थी, तो हमने उसको इंडोला नाम दिया। और आज की डेट में ये किस्में भी किसानों तक जा रही हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए और पशुओं को खासतौर पर वो खली खिलाने के लिए, उसके पत्ते खिलाने के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इस पर भी कार्य जारी है। एक अभी नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स का अनाउंसमेंट किया था, जो कि टोटल 500 करोड़ रुपये का मिशन है। उसमें 5 ऑयल सीड्स की क्रॉप हैं, 5 पल्सीज की क्रॉप हैं, 2 जो इथेनॉल के लिए स्वीट सोरगम और आपका मेज है, और 7 हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं। तो सरसों उसमें एक बहुत ही विशेष फसल है। उसमें ऑयल सीड्स के लिए टोटल लगभग 43 करोड़ रुपए हमने इसमें दिया है प्रोग्राम में, 104 करोड़ रुपए, और सरसों के लिए उसमें 35 करोड़ के आसपास का दिया गया है टोटल ऑयल सीड के 104 में से। और उसमें जो विशेष तौर पे हमारा प्रयास है, जो जितने भी हमने अभी बायोटिक स्ट्रेस के जो तत्व बताए हैं, उन पे विशेष तौर पे काम करके इस तरह की प्रजातियां पैदा करना कि आज जो देश की एवरेज है सरसों की, जैसे 1460 kg/hectare, तो इसमें हमारा लक्ष्य है कि हम

0: लगभग 2000 केजी पर हेक्टेयर तक 2030-31 में पहुँचे, और वो हम तभी पहुँच सकते हैं कि जितनी नई किस्में अभी आएंगी उनको हम ढंग से उनका बीज पैदा करके, इसमें बीज के लिए भी एक लगभग 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है सभी फसलों के लिए। एक बार जो किस्म पैदा होती है तो उसका बीज किसान तक पहुंचने में 4 से 5 साल लगते हैं। कई बार बार एक हमसे आह्वान रहता है कि आप किस्म के पैदा करने के बाद, रिलीज करने के बाद क्यों नहीं उसको 2 साल के अंदर किसान तक पहुंचाएं, तो उसके लिए व्यवस्था की है। उसमें बीज के उत्पादन के लिए जैसे ब्रीडर सीड का, और ऑफ सीजन में ले जाकर उसका बीज पैदा करके और तुरंत किसान तक सर्टिफाइड सीड पहुँचे, उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो ये एक जो हमारा मिशन है उससे भी टोटल ऑयल सीड्स को भी और सरसों को विशेष तौर पे इसमें बढ़ावा मिलेगा। और जो हमारा लक्ष्य है, विश्व की जो एवरेज है अभी 2070 केजी पर हेक्टेयर है, तो हम लगभग 2/3 उनसे हमारी पैदावार है, तो हम किस तरह से विश्व की पैदावार तक हम ले जा पाएंगे उस पे हमारी कार्य करने की आवश्यकता है। जीनोमेट्रिंग का एक प्रोजेक्ट 2023-24 में शुरू किया गया था, उसमें भी हमने जो ये 8 समस्याएं उसमें बता रहे हैं उनको, जीनोमेट्रिंग एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि नॉन ट्रांसजेनिक है, और आप जैसे कोई किस्म है उसमें सारे गुण अच्छे हैं लेकिन एक बीमारी की समस्या उसकी वजह से वो किस्म उतनी पैदावार नहीं दे पाती है, ड्रॉट टॉलरेंस की समस्या है, तो उसके लिए उसी स्पेसिफिक रेट को ठीक करने के लिए उसकी ये व्यवस्था है। तो उसमें बहुत समय नहीं लगता है ताकि सरसों के जो जितनी किस्में हैं वो अधिक पैदावार वाली, क्लाइमेट रेजिलिएंट, बायोफोर्टिफाइड, और जो कम पानी कम जो फर्टिलाइजर में पैदा हो सके, उस तरह का हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।
1: तो देखो साहिया, जानकारियां के लिए तो गणो गणो धन्यवाद, पर धन्यवाद भी आपा कोरो कोरो कौन देवा,
2: तो धन्यवाद री भेंट स्वरूप सुना छे मीठो सो गीत।

0: डिगीपुरी का राजा ने मनाता मनाता भजन सुनता सुनता ग्राम भारती कार्यक्रम को समय पूरो हो तो जा रहे हो छे, तो देव अदिति ने
1: और अभिलाषा ने
0: आज्ञा चाला और करा
1: राम राम सा।

कार्यक्रम ग्राम भारती आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: खेतीबाड़ी कार्यक्रम की वाट उड़ीकता सगला किसान साथिया ने अभिलाषा पारी की उर्सू ने भरी राम राम सा, और अदिति बहन आपने भी मारी उर्सू घनी घनी राम राम सा।
4: राम राम अभिलाषा बहन और सुनबाड़ा सगला श्रोतावा ने अदिति भट्टरों ने भरियो नमस्कार और राम राम सा।
3: और देखो सा, राम राम भी कर लिया आपा, पर अब जब बात करा आपा ई मौसम की
4: जी,
3: तो यो जो मौसम छे ना अदिति बहन, सावन को मौसम जद आवे छे तो देखो आपने आप ही चारों मेर अशी घटा बरसे छे, अशो माहौल खुशनुमा हो जाओ छे कि भैया जी यहाँ बारिश को नारी आसमान से कोई अमृत बरस रही
4: जी छे। और ये अमृत ही छे जो कि आपने जीवन दान देवे छे
3: जी,
4: और इको एक एक बूंद आपने सहेज नीचे समेट नीचे, क्योंकि इंसान जो छे मनख जो छे वो बना नहीं सके पानी ने, पर समेट तो सका छे,
3: बिल्कुल
4: तो सका छे।
3: तो देखो साहब, जब आप बात करा बिरखा का पानी की, तो चारों मेर जब हरियाली बरसाव चाहिए हो पानी, तो ई के साथ साथ आपने साथ साथ कई समस्याएं भी लाव छे। यदि आप सावधानी न रखा, थोड़ी सी भी लापरवाही कर दिया, तो यू ही बिरखा को पानी आपने लिए नुकसानदायक साबित होगा। तो देखो आप देखा जाए कि आपने जो छत हो छे, सामान्य सा घर में आप देखा जाए कि भाई पुराना टीन टप्पड़ छे, टायर का टुकड़ा छे, कोई ऐसा बर्तन छे जो कि खराब हो रहा छे, वे छत पे ही पड़े रहे छे। बरखा के पानी के साथ साथ वहां में पानी भरते जावे छे और पन पे छे माखी माछर, जो कि अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने लिए बहुत ही हानिकारक छे
4: जी।
3: और साथ साथ छता पे जब नाला हुए छे तो वहां में कचरो अटक जाओ छे, तो वो कचरो अटकवा से भी चारों मेर पानी भर जाओ छे, वो भी अपने लिए नुकसानदायक हुए छे। तो ऐसी स्थिति में आपने यू देखना है कि चारों मेर आप यू ध्यान रखा कि बिरखा को जो पानी है वे चारों मेर एकटो ना हो पावे
4: जी।
3: और इके साथ साथ यदि कठे भी पानी एकटो हो रो छे तो आपने बिना भी के निकास की व्यवस्था करनी है, और साथ साथ माखी मच्छर मारवा की जो दवाइयां हो वे भी काम में लेनी
4: जी। सागे सागे जो अपना पशु छे, ढांडा छे, सासर छे, वहाँ की भी आपने ध्यान रखनी है कि वह तो परेशान नहीं हो रहा, वहाँ पे तो सीधो कोई मेह नहीं बरस रहे हो, वह कोई मेह की चपेट में तो नहीं आ रहा, या फिर जे जठे वह बंध्योड़ा छे वटे कोई पानी तो नहीं भरियो छे, कीचड़ कादो तो नहीं हो रहे छे, जिससे कि वह भी परेशानी में आवे, आगे जार वहाँ के कोई खुर पको मुँह पको अशी कोई रोग की जकड़ में वह आवे
3: जी। तो देखो साहब, और इसके साथ साथ आप देखा कि घर का बारह जो नालियाँ हुए छे ना दीदी बहन, कई बार वहाँ में भी पानी रुक जाओ छे, एक टुक हो जाओ छे, तो बीच से भी माखी माच्छर पनप सके छे। तो घर के माए की नहीं, घर के बारे की भी आपने साफ सफाई को विशेष ध्यान रखना है। यदि कचरा को निस्तारण आप कर रहा चाह तो यानी कि घर ने साफ कर अपन सड़क पे या अपनी जो गलियां छे वहां में ही कचरा ने फेंक देवा, भी कचरा ने भी निका तरी बांध जो कचरा पात्र होवे छे भी में डाला
4: जी,
3: कि जिससे चारों मेर गंदगी ना फैले और माखी मच्छर ना पनपे पावे।
4: इतनी सारी जानकारी, छोटी छोटी सी जानकारी के सागे सागे एक आपा कामना बहन भी देखो आप पहुंची छे
3: जी।
4: तो आपा लंबी सी जानकारी डॉक्टर अमावतार शर्मा जी सु ले लेवा,
3: तो सुना का ही जानकारी दे रहा है।

0: और समय पर पशु को गर्भित कर सके।
1: अब बात आवे है डॉक्टर साहब कि जो ए जो ढंडा है बार बार फिर जावे, बिकू काई कारण हुए।
0: हाँ, कई बार क्या होता है कि ऐसी अवस्था में पशु बार बार गर्मी में तो आते हैं पर गर्भित नहीं हो पाते। जैसे मैंने अभी आपको बताया किसान भाइयों कि ये एक पूरा जो है ना मध्य चक्र 21 दिन का है, पशु तो 21 दिन में अपने गर्मी में आ रहा है पर गर्भधारण नहीं कर पाता है। इसमें कई तरह की जो है ना अंडाणुओं का उत्सर्जित नहीं होना या उत्सर्जित होने में देरी होना, जिससे कि उनमें निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है,
1: अच्छा
0: पशु गर्भित नहीं हो पाता है। तो इसमें कई तरह की जो है ना कारण है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है कि मादा पशुओं में क्या है, प्रजनन संबंधी हार्मोन्स की कमी होती है।
1: अच्छा
0: इन हार्मोन्स की जब पशु शरीर में कमी होती है तो वो जो है ना गर्भधारण नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि पशुओं में जो सीमन होता है उसमें भी कई खराबी होती हैं।
1: अच्छा
0: सामान्य रूप से मानते हैं कि हम सामान्य जो है ना स्पर्म की जो संख्या है 70% हो, यानी कि खराब गुणवत्ता का नहीं हो, संतुलित आहार की कमी होना। अभी मैंने आपको किसान भाइयों निवेदन किया कि पशुओं को उनकी आवश्यकता अनुसार सारे पोषक तत्व तो संतुलित मात्रा में मिलने चाहिए। किसी भी तत्व की कमी होती है तो पशु का जो है ना जो गर्भित होने के लिए या जो पशु के गर्भधारण के लिए जिन हार्मोन्स की आवश्यकता है उनका स्राव भी इससे जो है ना प्रभावित होता है। साथ ही बच्चेदानी में संक्रमण होने के कारण भी पशु जो है ना बार बार फिरने की समस्या होती है। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं जिनसे कि पशु बार बार गर्भित नहीं हो पाता है और
1: फिर
0: घर
1: जा।
0: में पाता है।
1: हाँ सर डॉक्टर साहब, आप इसका कारण तो बता दिया कि भाई जो ढंडो है बार बार फिर जावे, पर आने प्रबंधन आपको क्या करे, आने रोक क्या सके या पहचाने क्या।
0: इस तरह की समस्या होने पर पशुपालक भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि गर्मी में आने के 10 से 15 घंटे बाद ही गर्भ धारण करवाएं। कई बार हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जैसे पशु हीट में आया, गर्मी आते ही ताव में आते ही वो जो है ना उसको गर्भित करवा देता है। उस समय जब अंडाणु नहीं निकलेंगे तो वो जो है ना गर्भित नहीं हो पाएगा। तो एक साधारण सी बात है कि जो गाय भैंस अपने शाम को गर्मी मारी है उसको सुबह गर्भित करवावें, सुबह यदि गर्मी में आ रही तो उसको शाम को गर्भित करावें, जिससे कि उसमें जो है ना परिपक्व अंडाणु होकर के निश्चित होकर के पशु गर्भ धारण कर सके, सबसे बड़ी बात किसान भाइयों के लिए।
1: अच्छा।
0: दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कई उत्तम स्तर के जो है ना सीमन का, जिसमें कि एटलीस्ट 70% नॉर्मल स्पर्म होने चाहिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयोग में लें। हालांकि ये हमारे जितने भी हैं पशु चिकित्सक महोदय इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। किसान भाइयों, दूसरी जो मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा कि पशुओं में ये जो बार बार फिरने की समस्या है, इसके लिए उत्तम स्तर का जो वीर्य है जिसमें 70% तक नॉर्मल स्पर्म होने चाहिए, क्योंकि इनकी मृत स्पर्म ज्यादा होते हैं तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। अतः कृत्रिम गर्भाधान में क्या करें कि अच्छी किस्म का गुणवत्ता का सीमन प्रयोग में लेते हुए उचित स्थान पर ही इसको जो है ना छोड़ा जाए, जिससे कि निषेचन की क्रिया सफल हो सके।
1: तो
0: और किसान भाइयों, तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो किसान भाई अपने स्तर पर कर सकते हैं कि संतुलित पशु आहार पशु को खिलाएं, जिसमें कि उचित मात्रा में खनिज लवण मिश्रण और विटामिन का समावेश हो, क्योंकि पशुओं में खनिज लवण मिश्रण में जैसे टोटल खनिज तत्वों में 75% कैल्शियम और फास्फोरस होता है, 25% और अन्य तत्व हैं, इनका समावेश पशुओं की आवश्यकता अनुसार उनकी जितनी मंडेड जो मात्रा है उसका समावेश पशु आहार में करें। इसके लिए क्या करेंगे, नियमित रूप से खनिज लवण मिश्रण 2% खनिज लवण मिश्रण जो बांटे में नियमित रूप से मिलाएं। नियमित रूप से यदि रोजाना किसान भाई अपने पशु को खिलाना चाहे तो 50 ग्राम मात्रा खनिज लवण मिश्रण की दाने बांटे में मिलाएं, या एक बार में ही जो अपना 100 किलो बांटा बना रहे हैं किसान भाई ऐसे हैं कि रोजाना नहीं मिला सकते, तो 100 किलो बांटे में 2% 2 किलोग्राम खनिज लवण मिश्रण का समावेश कर पूरा बना करके रखें, और 1 किलो उसमें साधारण नमक बना दें, जिससे कि इनकी पूर्ति स्वतः पशु के उसमें हो जाए।
1: तो मोटी बात आई है कि खाना पीना को तो आपने ध्यान रखना ही रखना है आपका डांडा सांस।
0: और एक महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों और है कि कई बार क्या होता है कि पशुओं की बच्चेदानी में संक्रमण होता है। इस संक्रमण के निदान के लिए नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर के पशु चिकित्सक से इसका उपचार जरूर करवाएं, उसको लेकर के नहीं बैठे रहें, अदरवाइज उसमें क्या होगा कि पशु में परमानेंट जो है ना बांधता आ जाती है।
1: डॉक्टर कन तो जानो ही चाहिए कोई यदि बीमारी है आप
0: समय समय पर उसकी जो है ना अपन जांच करवाते
1: रहना चाहिए
0: जी।
1: अब बात आवे डॉक्टर साहब की जो है प्रजनन है कति तरह हुए और नस्ल सुधार ताणी कौन सी विधि ज्यादा बढ़िया रहे
0: पशुओं में। किसान भाइयों एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि हमारे किसान भाइयों के स्तर पर मेन बात ये होती है कि पशुओं में वैसे

0: प्रजनन तो एक तो बाह्य प्रजनन होता है, एक अंतः प्रजनन होता है। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए बाह्य प्रजनन, बाह्य का मतलब कि जो भी अपने गाय भैंस जब भी गर्मी में आए तो उससे 4 से 6 पीढ़ी दूर सांड से उसको गर्भित करवाएं, जिससे कि उसमें उत्तम लक्षणों का या उसमें ओज का जो है ना समावेश हो और उसकी उत्पादन क्षमता अच्छी हो। क्योंकि अंतः प्रजनन जिसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं, उसमें कई तरह के गुण का ह्रास होता है, उसमें नहीं लें, जिससे नस्ल सुधार के लिए जरूरी है कि आउटब्रीडिंग यानी 4 से 6 संतति बचा करके प्रजनन करते हैं, तो होने वाली संतति में अच्छे गुणों का समावेश होता है। साथ ही किसान भाइयों, मैं निवेदन करूंगा कि अपनी जैसे गाय है, गाय में अपनी दूध उत्पादन के लिए अपन गाय ले रहे हैं, तो इसमें अपने साहीवाल है, लाल सिंधी है, गीर है, इसकी शुद्ध नस्ल से जो है ना 4 से 6 पीढ़ी बचा करके प्रजनन करावें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में अच्छे उत्पादक पशु तैयार हो सके, आने में अच्छे गुणों का समावेश होगा, उसकी उत्पादकता अच्छी होगी।
1: अब बात आवे, आप बार बार ही बात को जिक्र भी करियो कि जो पशु आहार है वो पशु प्रजनन में बहुत महत्व रखे, तो इन थोड़ो विस्तारों बताओ साहब।
0: किसान भाइयों, देखो पशु आहार तो पशुओं के जितने भी पोषक तत्वों से होने वाली कमियां हैं, उनके विकार हैं, उनसे बचाने के लिए आवश्यक है कि किसान भाई पशुओं को दिया जाने वाला आहार संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब कि उसमें जितने पशु की आवश्यकता अनुसार जितने पोषक तत्व चाहिए, उतने सभी पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में समावेश करें। जैसे पूर्व में भी मैंने आपसे निवेदन किया कि किसी भी आहार के जो अवयव हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, खनिज तत्व है, विटामिन है, इन सब का समुचित मात्रा में समावेश करना चाहिए। जैसे मैं निवेदन करूंगा कि दाना बाटा जो होता है, किसान भाइयों को ज्यादातर दाना बाटा में सबसे ज्यादा जो खर्चा लगता है दाना बाटे में लगता है। वैसे आहार में हरा चारा, सूखा चारा, दाना बाटा होता है। दाना बाटा में ज्यादातर पोषक तत्व देने का एक तरीका है, जिसमें कि जैसे 100 किलो बाटा हमारा किसान भाई बना रहा है, उस बाटे में 25% तक मोटे मोटे रूप में देखें कि जो उसने रुपया में से चारा ना तो कोई भी अपने अनाज वाले, जिसमें गेहूं, जौ, समय के अनुसार ज्वार, बाजरा, मक्का, जैसा समय हो, तो जैसे कि रुपया में से चारा 25 भाग तो अपने ये ले ले, 15 से 20 भाग तक वो जो है ना चूरी चूरी हुई जो दो दाल वाली फसलें उनके टूट फूट और छिलका, और 30 से 32 भाग तक उसमें चापड़। किसान भाइयों, चापड़ आप सभी जानते हैं कि ऊपर रेशे की मात्रा होती है जो कि पाचकता को बढ़ाती है। और पांचवी चीज जो मैंने अभी निवेदन किया है कि 2% खनिज लवण और 1% साधारण नमक का समावेश करके लगभग लगभग अपन पशु के लिए संतुलित बांटा अपने स्थानीय रूप से बना सकते हैं, जिससे कि पशु की आवश्यकताएं सारी पूर्ति हो जाती है। और कई तरह के जो कई जैसे कि कई अभी अपन ने बात करी कि कई खनिज तत्वों की कमी से या विटामिन की कमी से जो पशु में बार बार फिरने की ऐसी समस्या आती है, उससे भी हमारे पशु को हम बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, संतुलित पशु आहार का पशुओं के नियमित रूप से जो है आवश्यकता अनुसार खिलाएं। साथ ही किसान भाइयों, मैं निवेदन करूंगा कि एक और मुख्य कारण है कि कई बार पशुओं के जो अंडे दानी में एक गांठ हो जाती है, जिसके कारण भी पशु में जो है ना प्रजनन संबंधी कई विकार हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्या में पशु बार बार गर्मी में आते हैं, अथवा लंबे समय तक कई बार गर्मी में भी नहीं आते हैं। ये तरह की बीमारी एक आनुवंशिक होती है, जो कि प्राय देखा गया है कि 3रे से 5वे व्यात में ज्यादातर होती है पशुओं में।
1: अच्छा,
0: तो इस बीमारी के उपचार के लिए पशु भाई उसको अपने स्तर पर न रख करके उसका नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर के उपचार करवाएं, क्योंकि यदि इसका समय पर उपचार नहीं किया जाता है तो पशुओं में बांझपन की स्थायी शिकायत हो जाती है। एक बात और होती है किसान भाइयों, कई बार जो है ना पशुओं में एक हार्मोन्स की कमी से, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो कि मतलब उसकी गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, उसकी कमी के कारण क्या होता है भ्रूण की मैच्योर मृत्यु हो जाती है, इसको अबॉर्शन कहते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि इसके हार्मोन्स में क्या होता है कि कार्पस ल्यूसियम का कमजोर बन जाता है, जिससे कि उसमें गर्भपात की समस्या होती है। तो इसका भी स्तर बनाए रखने के लिए जरूरी है संतुलित पशु आहार लें और अपने नियमित रूप से पशु चिकित्सक इसकी जांच करवा के पशु में इसके स्तर को बनाए रखें।
1: बहुत बढ़िया सा डॉक्टर रामावतार शर्मा जी, आप माँ का आकाशगार बयान बहुत बढ़िया जानकारी दी कि पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्या आवे तो माँ का समाधान की कर करा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू

0: परसेंट एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
0: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
3: हाँ तो अदिति बहन, देखो कितनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी अपने राम अवतार शर्मा जी दिया कि जो अपना पशु होवे छे
4: जी,
3: वामे प्रजनन संबंधी कितनी सारी समस्या हो छे और थोड़ी सी सूझबूझ से आपा किया वाको समाधान कर सका छे। तो देखो सर, जो पशुधन होवे छे ना अदिति बहन, ये अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होवे छे, क्योंकि अपना जो कई किसान साथी छे वो खेती किसानी के साथ साथ अपनो जो पशुपालन है भूसी से भी अपनी आजीविका ने चलाव छे। और कई किसान भाई या कई पशुपालक भाई तो ऐसा छे वो पूरी तरह से पशुपालन पर ही निर्भर छे
4: जी।
3: तो पशुओं को अपना जो पशुधन है भी को पूरा पूरा ध्यान रखबो और सार संभाल करबो अपने लिए बहुत आवश्यक छे। और जब आप बरखा के मौसम की बात कर रहे चाह तो ई मौसम में कई अशा संक्रामक रोग भी हो जाओ छे अपना पशुओं ने, जो वाकी जान भी ले सके छे
4: जी। तो इसा टाइम पे आपने यही ध्यान रखना छे कि वाने जो छे साफ पुआल बिछानी छे, चोखी तरीके वहाँ जो टीन तिरपाल छे वह लगा रखना छे, जिससे कि वह मे में न भीजे। और वहाँ का चारा बाटो को भी ध्यान रखना चाहिए, माने पौष्टिक आहार देना चाहिए, क्योंकि ये टाइम पे कहीं छे कि हरियो चारो खूब सारो हो जावे छे। और हरियो चारो आप यहाँ नहीं करा कि हरियो चारो देता रहे, वहाँ सु भी वहाँ में कई आफरो या कब्ज की शिकायत या और परेशानी बढ़ सके छे। तो आपने ध्यान रखता हुआ पौष्टिक आहार वहाँ देता रहे, जिससे कि पशु में प्रजनन संबंधी या और कोई प्रकार की जो समस्या छे जो कि आ ही नहीं पावे, और फिर अगर आ जावे तो खुद का डॉक्टर खुद नहीं बढ़ना चाहे जिया कि डॉक्टर साहब बताया, और तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करके आपने वहाँ को निदान जरूर करना चाहिए।
3: और देखो सर, यही समय में आपने टेम टेम पर और यही समय ही नहीं, आपने हर समय आपने यो ध्यान रखना है कि आपनी जो पशुशाला है, यदि एक दो या तीन पशु अपने पास है तो देखो कोई दिक्कत की बात को नहीं, पर यदि ज़्यादा मात्रा में अपने कन्या पशु छे तो उस समय आपने अपनी पशुशाला को नियमित भ्रमण करना चाहिए, टेम टेम पर देखता रहना चाहिए कि कोई भी पशु में यदि आपने थोड़ा सो भी बदलाव दिख रहे हो कि पशु सुस्त लाग रहे हो, खावा पीमा में थोड़ी सी कोताही बरत रहे हो या उठवा की कोशिश ही कौन कर रहे हो, तो आपने तुरंत भी की सार संभाल कर और अपना जो पशु चिकित्सक है विनय दिखार विनय डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए
4: जी।
3: और इनके साथ साथ ये बिरखा का मौसम में तो देखो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो माखी मच्छर मरवा की दवाया हो चे वहाँ को नियमित रूप से अपावा बैठे वाकी पशुशाला में छिड़काव करते रहे वहाँ
4: जी।
3: पानी का और खाबा की बात करा तो आपावा ने पौष्टिक और ताजा भोजन ही देवा तो देखो वहाँ के स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो लो। इनके साथ साथ वाकी खेल ने भी नियमित रूप से साफ कर कि वे में कोई कीटाणु न पनप जावे, कोई कीड़ा मकोड़ा अच्छा न हो कि वो जाके जानलेवा साबित हो
4: जी।
3: तो बाकी खेल की भी नियमित रूप से आपने साफ सफाई करनी है। तो देखो सर, ये छोटी छोटी जो बातें हैं यदि आप वहाँ को ध्यान रखा तो आपनों जो पशुधन है भी से आप अच्छा उत्पादन ले सका।
4: और अगर आप आर्थिक उन्नति की बात करें तो ये छोटी छोटी सी बात जी अभिलाषा बहन डॉक्टर साहब और मैं बता रहा चाह वी को अगर जो कर्सा बाहर बढ़ना चाहे पालन करता रह वाला तो आर्थिक स्थिति जो छे चोखी अपने आप ही होती जा वाली है।
3: तो देखो सर, आर्थिक स्थिति तो अपना किसान साथी बिल्कुल चोखी कर लेगा, और यदि वो आर्थिक अच्छी आर्थिक स्थिति में एक मधुर सो संगीत यदि काना में पड़ जावे तो देखो और भी आनंद दोगुना हो जाओ। तो सुन ले मैं एक बढ़िया सो गीत।
4: चलो सर

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ब्लैकमेल फिल्म का गीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत याराना फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में अनजान ने इस गीत को लिखा है, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत प्रेम गीत फिल्म से जगजीत सिंह की आवाज़ में। इंदिवर ने इस गीत को लिखा है, संगीत दिया है जगजीत सिंह ने।

गुलजार का लिखा गीत आपको सुनवा रहे हैं, आर डी बर्मन के संगीत से सजा हुआ। किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है, फिल्म का नाम परिचय है।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शोर फिल्म से। मन्ना डे, महेंद्र कपूर और शायमा की आवाज़ों में ये गीत है। राज कवि इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा हुआ, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के पश्चात समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के स्टूडियो से मैं हूं जया भारती और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, जहां हम आज बात करेंगे क्रिकेट की पिच की, बैडमिंटन कोर्ट से आ रही अपडेट की और हॉकी के मैदान से लेकर शतरंज की बिसात पर चली आ रही उन सभी शातिर चालों तक हर खबर पर हमारी पैनी नजर है। हाँ, फुटबॉल के दीवानों के लिए डूरंड कप की चमचमाती ट्रॉफी और पुरस्कारों को लेकर भी अरे एक बड़ी घोषणा है, तो हम सब पर बात करेंगे। तो शुरुआत

करते हैं आज के स्पोर्ट्स स्कैन का सफर और नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खेल खबरों पर। FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और PV सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत की पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स जोड़ी भी प्री क्वार्टर फाइनल में। भारत ने गोल में दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया। और एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत के विवान विशाल ने ओपन वर्ग का खिताब जीता।

0: तो शुरुआत करते हैं हमारी देश की राष्ट्रीय शान हॉकी से। नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप चल रहा है और वहां पूल डी के मैच में आज भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे हैं। पूरे मैच का हाल जानने के लिए पहले सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: भारतीय टीम आज विश्व कप के अपने तीसरे पूल डी मुकाबले में पाकिस्तान के सामने उतरी। मैच की शुरुआत से ही भारत ने मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी। मैच की पहली सफलता भारत को कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5वें मिनट में दिलाई। इसके बाद 11वें मिनट में अभिषेक नैन ने भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। पहले क्वार्टर तक भारत के पास 2-0 की बढ़त बरकरार रही। दूसरे क्वार्टर के शुरुआत में ही हरमनप्रीत ने एक बार फिर फ्रंट से लीड करते हुए अपना दूसरा और टीम के लिए तीसरा गोल किया। जवाब में मैच के 22वें मिनट में पाकिस्तान के शाहिद हनन ने गोल कर अपनी टीम की उम्मीदों को बरकरार रखा, लेकिन अभिषेक नैन ने अगले ही मिनट गोल किया। दूसरे क्वार्टर के समाप्त होने से पहले पाकिस्तान ने वापसी करने की कोशिश की और सुफियान खान ने एक गोल दागा। दूसरे क्वार्टर तक भारत 4-2 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए भारत की बढ़त मजबूत की। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में कोई और गोल नहीं हो सका। चौथे क्वार्टर की शुरुआत में पाकिस्तान ने आक्रामक खेल दिखाया। 46वें मिनट में पाकिस्तान को एक और सफलता हाथ लगी। इसके बाद पाकिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम रही और भारत ने ये मैच 5-3 से अपने नाम कर लिया। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: तो भारतीय हॉकी प्रेमियों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि उन्होंने पाकिस्तान को हराया। और इसी हार के साथ पाकिस्तान की तो अगर हम बात ना करें, भारत की बात करें, तो उसने नॉकआउट में अपनी जगह बना ली है। और अब हम चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट में। नई दिल्ली में चल रही है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, और वहां से हमारे संवाददाता भानु प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। भानु, जिस तरह का आज खेल देखने को मिला है, भारतीय प्रशंसकों के लिए निराशाजनक खबरें भी रही हैं और हमारी भारतीय शटलर्स ने कुछ उम्मीदें भी बरकरार रखी है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अमेरिका के गैरेट वेन से हार कर लक्ष्य सेन को बाहर होना पड़ा, भारतीय प्रशंसकों के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो कोर्ट पर मौजूद दर्शकों और कोचिंग स्टाफ का जो इस अप्रत्याशित हार पर क्या रिएक्शन आए हैं?
2: जी, उनकी हार पर बहुत ही ज्यादा शॉक थे सारे फैंस। उनकी हार का किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह हार जाएंगे। पहला गेम उन्होंने भले ही जीता, उसके बाद बहुत ही होपफुल थे सारे फैंस कि वो मैच जीतेंगे, लेकिन दूसरे 2 गेम्स में उनके अपोनेंट ने कम बैक किया और जीत हासिल करी। और लक्ष्य सेन बीच में थोड़े से चोटिल भी नजर आए थे और मैच के अंत तक भी उनके उन्हें चोट मिल गई थी, और जैसे जिस तरह वे हारे उससे सभी बहुत सारा शॉक थे।
0: बिल्कुल, तो इस पूरे चैंपियनशिप में भले ही हार का सामना करना पड़ा है लक्ष्य सेन को, उन्नति हुडा भी हार कर बाहर हो गई हैं, लेकिन कुछ उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं भारतीय प्रशंसकों के लिए। आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी भी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जबकि पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को बाय मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है। तो एक तरफ निराशा है भानु, और दूसरी तरफ अनुभवी पीवी सिंधु और युवा आयुष शेट्टी ने सीधे गेम में शानदार जीत दर्ज की है और प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। तो कोर्ट पर इन दोनों का खेल आज कैसा देखा और अगले दौर के लिए इनकी क्या और कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं?
2: जी, कोर्ट में इनका बहुत ही डोमिनेंट प्रदर्शन आज हमें देखने को मिला। पीवी सिंधु ने आज अपनी ओपोनेंट वेन्यू जांग को हराया और वे बहुत ही कंट्रोल में दिखाई दी। पीवी सिंधु का अब सामना

0: वर्ल्ड नंबर टू वांग जी से होगा। और पीवी सिंधु का, जैसा कि सभी आप जानते होंगे कि पीवी सिंधु का चाइनीज प्लेयर्स के खिलाफ बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, उन्होंने आज तक कोई भी चाइनीज प्लेयर आज तक वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं हरा पाया है। उसी बीच अगर आयुष शेट्टी की बात करें तो आयुष शेट्टी ने पहले राउंड में शी यू जी को हराया था और शी यू जी को हराने के बाद वे बहुत ही ज्यादा अच्छे कंट्रोल में दिखाई दिए हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा और उम्मीद है कि वे अच्छा खेलेंगे।
1: जी, आयुष ने श्रीलंका के दुमिंदु अभिविक्रमा को 21-8, 21-10 से हराया है, जबकि पीवी सिंधु ने कनाडा की वेन यू जांग को 21-16, 21-17 से हराया, जबकि ध्रुव और तनिषा ने मकाऊ के लियोन लोक चोंग और एनजी वेंगची पर सीधे गेम में 21-11, 21-11 से आसान जीत दर्ज की है। और जहां बात कर रहे थे सात्विक और चिराग की जोड़ी को की, तो उन्होंने स्कॉटलैंड के एडम प्रिंगल और एलेक्स डन के चोटिल होने से उन्हें बाय मिल गई है। तो भानु, जिस तरह से इन्हें बाय मिला है, या फिर हम कहें कि इस तरह से सात्विक चिराग की जोड़ी को एक ब्रेक मिला है, तो क्या अगले राउंड में इसका फायदा देखने को मिल सकता है?
0: जी, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलता है, और जितना आपको रेस्ट मिलता है खेल के बीच, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है आपके लिए। कुछ मैचेस आपके कई समय ऐसा होता है कि आपके मैचेस लेट खत्म होते हैं और अगले दिन वे बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, तो आपको रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से सात्विक साईराज रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को ये जो ब्रेक मिला है, ये उनके बहुत ही काम आएगा। अब वे जब अपना अगला मैच खेलेंगे तो उनके लिए बहुत ही प्रेपरेशन अच्छी रहेगी।
1: जी, तो आज के मैच के बाद, जैसा कि हमने बताया अभी कि मिलीजुली उम्मीदों वाला रहा है आज का दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए या फिर भारतीय प्रशंसकों के लिए, तो आज के मैच के बाद स्टेडियम में भारतीय खेमे में कैसा माहौल देखने को मिला, या फिर भारतीय खेमे में कैसा मनोबल देखने को मिला, और कल के मुकाबलों से भारत को कितनी उम्मीदें हैं?
0: कल के मुकाबलों से बहुत ही उम्मीदें हैं भारत को, और आज लक्ष्य सेन का, जैसा कि मैंने बताया कि वह पहला गेम जब जीते और दूसरे गेम में और तीसरे गेम में जब वे हार रहे थे, तब उनका क्राउड ने बहुत ही सपोर्ट किया, और उसके बाद जब आगे के मैचेस हुए जो पीवी आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु के, उसमें भी क्राउड ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया, और क्राउड जो हमारे दर्शक है वो बहुत ही उम्मीदवार मतलब होपफुल है, उन्हें बहुत उम्मीद है कि कल उनके शटलर्स भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वांग जी के खिलाफ सिंधु का अच्छा रिकॉर्ड है, उन्होंने पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी वांग जी को हराया था, तो उम्मीद है कि वह कल भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया भानु कोर्ट से इन तमाम ताजा अपडेट्स के लिए। तो श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता भानु प्रताप सिंह सीधे बैडमिंटन कोर्ट से। तो अब चलते हैं क्रिकेट के पिच की तरफ और बात करते हैं गोल में, जो दो टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का मैच चल रहा है, तो भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है, और भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर ऑल आउट हो गई, और इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है।
2: मिल गई जीत, जीत गई है टेस्ट मैच भारत यहाँ गोल में, और अब 1-0 की बढ़त यहाँ टीम इंडिया के पास इस श्रृंखला में।
3: मानव सुथार की घातक गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने श्रीलंका को पांचवें दिन दूसरे सेशन में 206 रन पर समेटकर गोल टेस्ट अपने नाम कर लिया। श्रीलंका को चौथी पारी में जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य मिला था। श्रीलंकाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही, उन्होंने अपने शुरुआती 4 विकेट मात्र 47 रन पर ही गंवा दिए। हालांकि कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने 59 और सोनल दिनुषा ने 84 रन बनाकर पारी को जरूर संभाला, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के साथ ही श्रीलंका की पारी 78वें ओवर में 206 रन पर सिमट गई और टीम 165 रन के बड़े अंतर से मैच गंवा बैठी। भारत के लिए दूसरी पारी के हीरो युवा गेंदबाज मानव सुथार रहे। सुथार ने केवल 55 रन देकर 6 विकेट लिए। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 और सिराज जडेजा ने 1-1 विकेट चटकाया। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए देवदत्त पाडिक्कल के 167, केएल राहुल के 82 और ध्रुव जुरेल के 51 रनों की मदद से 462 रन बनाए थे। श्रीलंका पहली पारी में सोनल दिनुषा के शतक और निरोशन डिकवेला की 80 रन की पारी के बावजूद 284 रन पर सिमट गई थी और उस समय तक 178 रन से पीछे थी। भारत ने दूसरी पारी में 193 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 66 रन का योगदान दिया, तब 178 रन की बढ़त के आधार पर भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए कुल 372 रन का लक्ष्य दिया। सीरीज का दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो पूरा का पूरा मैच काफी अच्छा रहा, और स्टूडियो में इस वक्त अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला जुड़ चुके हैं। विशेष, जिस तरह से दूसरी पारी में मानव सुथार की

0: जादुई गेंदबाजी देखने को मिली। मानो सुथार ने जिस तरह से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया, उसने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया।
1: जी बिल्कुल जया, मानव सुथार ने शुरुआत से ही अपनी गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को बांध कर रखा और उसी का नतीजा हमें देखने को मिला कि श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले मानव सुथार ने पहली पारी में भी 4 विकेट चटकाए थे, तो उनका 10 विकेट हॉल कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ साथ वो सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं 10 विकेट हॉल लेने वाले। 24 साल की उम्र में उन्होंने ये कारनामा किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने श्रीलंका में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी अचीव कर लिए हैं। हरभजन सिंह को पछाड़ा है उन्होंने पीछे, जिन्होंने 2008 में 10 विकेट लिए थे 153 रन देकर श्रीलंका की सरजमी पर।
0: हालांकि मैच जीत गई है भारतीय टीम दूसरी पारी में, लेकिन अगर देखा जाए तो इस जीत की नींव पहली ही पारी में रख दी गई थी, जब देवदत्त पडिक्कल ने शानदार 167 रन और केएल राहुल ने 82 जबकि ध्रुव जुरेल ने 51 रनों का योगदान दिया था।
1: जी बिल्कुल जयक, और देवदत्त पडिक्कल का शतक इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आया और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए। खास बात यह है कि भारतीय टीम लगातार 3 नंबर के बल्लेबाज के लिए संघर्ष कर रही थी। 19 पारियों में 7 बल्लेबाजों को आजमाने के बाद उनको कोई भी शतकवीर बल्लेबाज नहीं मिला था, जिसमें देवदत्त पडिक्कल आए और उन्होंने 167 रन की शानदार पारी खेली। साथ ही साथ उन्होंने दूसरी पारी में भी 44 रनों का योगदान दिया 75 गेंदों पर, तो एक शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया जिसके चलते उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। तो नींव बिल्कुल उन्होंने पहली पारी में ही रख दी थी।
0: इस जीत के साथ अगर हम देखें तो WTC पॉइंट टेबल पर अब भारत की क्या स्थिति नजर आ रही है?
1: जी बिल्कुल, फायदा हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में भारत को। अब भारत की जीत का प्रतिशत जो है वो 53.33 हो चुका है। इस जीत के साथ WTC फाइनल में जो भारत की उम्मीदें हैं उसको भी जिंदा रखा है टीम ने। और हालांकि पोजीशन में भारत की कोई बदलाव नहीं हुआ है और श्रीलंका जो है वो अब 33.33% पर रह गया है और 6वें नंबर पर मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर बनी हुई है।
0: बिल्कुल, तो 23 अगस्त को अब कोलंबो में शुरू होने वाला है दूसरा टेस्ट मैच और सीरीज में भारत 1-0 की बढ़त से आगे है। तो बिल्कुल, श्रीलंका निश्चित रूप से वापसी करने की कोशिश करेगी, तो देखते हैं कि आने वाला मुकाबला कितना रोमांचक होता है। अब रुख करते हैं शतरंज चैंपियनशिप की, जहां एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत के विवान विशाल ने ओपन वर्ग का खिताब जीत लिया है, जबकि बालिका वर्ग में प्रतीति बोर्दोलोई ने रजत और प्रशीता गुप्ता ने कांस्य पदक जीता है।
2: ओपन वर्ग में खिताब के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिला। शीर्ष क्रम पर चल रहे कजाकिस्तान के अखिल बे इमांगली और भारत के माधवेंद्र प्रताप शर्मा को अंतिम दौर की बाजियों में हार का सामना करना पड़ा, जिससे खिताब की दौड़ रोमांचक हो गई। इसी का फायदा उठाते हुए विवान ने अंतिम 3 दौर में लगातार 3 जीत दर्ज की और 7 दौर में 6 अंक प्राप्त करके ओपन रैपिड खिताब हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर अक्षय बोरगांवकर और अपूर्व कांबले ने भी 5-5 अंक हासिल करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि बेहतर टाई ब्रेक स्कोर कारण अक्षय ने रजत पदक जीता, जबकि अपूर्व को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। बालिका रैपिड वर्ग का खिताब तुर्कमेनिस्तान की शोहरा दोआ लाला ने जीता। प्रतीति बोरदोलाई ने रजत पदक जीता, जबकि भारत की ही प्रशिता गुप्ता ने कांस्य पदक प्राप्त किया। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात डूरंड कप की, जहां डूरंड कप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 11 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रतिभाशाली खिलाड़ी का सम्मान और 1,00,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। आयोजकों ने सभी 6 ग्रुप से खिलाड़ियों का चयन किया है जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है और इसमें 11 युवा खिलाड़ियों के नाम शामिल है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन भारतीय खेलों के लिए मुकम्मल और यादगार दिन साबित हुआ। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। कल स्पोर्ट्स स्कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता।
1: केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमरीका के राजदूत

0: जिगोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
3: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms.

0: not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनीरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश

0: जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
1: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
0: श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 5 infrastructure projects worth over 13,000 crore rupees, clears 4 railway multi-tracking projects across 4 states. Also gives nod to widening of National Highway 22 in Bihar. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari says high quality and cost effective infrastructure top priority. Says centre will review subcontracting norms.

0: Çakçaklar bir şey değil.
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: सरकारी बैंकों की तरफ से दो दिन पहले ही एक मंथन किया गया और उसमें तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए और साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और एक रूपरेखा तय हुई कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से काम करना है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार भसीन साहब मौजूद हैं, जो जोनल हेड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, और साथ ही साथ अश्विनी राणा जी भी मौजूद हैं जो पुराने बैंकर हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है, इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई?
3: नमस्कार। तो बेसिकली जो दो दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो 7 थीम थे,

0: उन थीम में से एक सेकंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था, और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण मैम ने भी अपने इनॉग्रल सेशन में बोला कि 29% जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री की है, एंड 15-29 ईयर्स ऑफ एज के, तो जो ये लोग यूपीआई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं। तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं और जिस तरह बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पस था कि 4 बड़े बैंक हो, और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो टॉप 5 ग्लोबल में आए, तो अब उसी मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाती है, तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए। और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाएं, जहां पे वहां के लोगों को, बच्चों को, यंग जो आप कह रहे हैं कि जेन जी, इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं अपना एम्प्लॉयज हैं, तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे थे कस्टमर का, हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलता है लाइफ साइकिल अप्रोच, बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है, कि ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि जैसा ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं यंग पीपल, और 66% यूपीआई ट्रांजैक्शन जो 18-29 साल के बच्चे, क्योंकि ये मोबाइल बैंकिंग और ये बैंक में कम विजिट करते हैं तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, तो इसी को ये सोचते हुए कि यूपीआई और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए, और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रांग बैंक बने, बड़े बैंक बने, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाता ही नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजेक्शन में यूज करे, तो ये पर्पस है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा।
1: बिल्कुल अश्विनी जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को, तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या चुनौतियां हैं, और क्या आप एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा?
2: देखिए, एक अच्छा है कि भाई सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से। स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है उसी समय उसका अकाउंट खुले, उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए, तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूँ। और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बैंकिंग थी क्या, बैंकिंग विद स्माइल। आज क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है, बहुत ऐसे युवा हैं कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए, वो बैंक कभी नहीं गए, वो सिर्फ ऐप से ही। लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो एप्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसको आज के युग में लाना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से हैं, तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना होगा, और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल, एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो वैसे ही चाहिए। मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती, ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो मशीनें काम नहीं कर सकती और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो जेन ज़ी कहें या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझें और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। और नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है, ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है, और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं इसके जरिए?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग, तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है कि कैंपस टू कैरियर, जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर। और जो आज का जो यंग जनरेशन है वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, लंबे लंबे फॉर्म में साइन करना, क्रेडिट, अब ये जो बच्चे आज के जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, इनमें आइडियाज होंगे, और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, अब उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग उसका कोई क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं, ना सिविल होगी, पहली बार लोन रहे, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कोलेटरल से उनके आइडियाज, उनके कैश फ्लो, जो उनके उस चीजों को देखना पड़ेगा। और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन का एक नया इनिशिएटिव लिया जो है, और उसी से ये है कि आगे नए नए आइडियाज आएंगे, तो जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना है ग्लोबली, तो यंग, क्योंकि हमारे कस्टमर भी यंग जनरेशन है, तो यंग प्रोडक्ट है, और जैसे अश्विनी सर ने बोला कि अब कस्टमर आता नहीं है बैंक, तो कस्टमर आएगा नहीं, तो ह्यूमन टच, और पर ह्यूमन टच बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल ह्यूमन, जहां बैंकिंग है या कस्टमर, दोनों ही ह्यूमन बीइंग है। तो इसलिए यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करना है, थ्रू मोबाइल, थ्रू इवन सीधर मैम ने यह भी बोला कि उसमें अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लाइफ स्टाइल

0: पिक्चर्स देते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, वेलनेस है, तो इन चीज़ों को सारे नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि यंग जनरेशन जो अकल का जो हमारा फ्यूचर है बैंकिंग का वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके।
1: बिल्कुल, ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे उस दिशा में ये कोशिश की जाएगी। अश्विन जी, एक बड़ी चुनौती ये है कि आज का यूथ इंटरनेट पर रहता है, तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पर रहता है और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय कई मौकों पे नुकसान भी हो जाता है, युवा गुमराह हो जाता है और वो तमाम अलग अलग ऐप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं वहां से भी वो लोन ले लेता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा तो युवा चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो या निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले हो, उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है?
2: नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है और उनके पास लिक्विडिटी भी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो, बस ये है कि भाई उसके अंदर उनकी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव ये जरूरी है। और जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं, मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी जो भी प्लेटफॉर्म है, कि भाई इस तरह की ऐड आती ही क्यों है। अब मैं बता रहा हूं आपको, बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इशू नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे फेसबुक पर हर बैंक की ऐड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए, और लोन लेने की और इतने भ्रामक प्रचार हैं उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए। भाई पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी बहुत युवक हैं, वो उस झांसे में ना आए, वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे ऐप्स को बैन किया है और इस तरह के ऐड भी बैन किए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए। नरेंद्र जी, इस दो दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस रहेगा या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना, एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए?
0: नहीं, कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे, 7 मुद्दे थे इसमें, जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था, जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और एफडी वगैरह जो होता है उसी के बेस पर क्रेडिट होता है। सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था, फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है तो हमें बड़े बड़े एग्रीकल्चर पे फोकस तो है ही, और इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम करेंगे नए तरीके से, और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सभी जो मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए और पीपल सेंट्रिक आउटकम, मतलब कि जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने की जो हुई थी, तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन बोला कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा, और उसी के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 एमडी सीएमडी बड़े बड़े लोग आए, जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ 2 दिन का, वो एक मटेरियल रेडी हो रहा है जो मटेरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेनली उसमें से यूथ का, जैसे आपने बताया कि यही था, एफएम का भी था कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा, ये नहीं कि हम उनको वेट करने की जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खुले। और जैसे अश्विन जी बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट फ्रॉम द एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट, आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है, इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट को दिया जाए ताकि उनको यंग कस्टमर को एजुकेशन, फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहला क्रेडिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सके। और पब्लिक सेक्टर बैंक का जैसे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस है, हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो इसी तरह एक रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट करके जो यंग कस्टमर को अ कस्टमर फॉर लाइफ हमेशा के लिए, ताकि हम जैसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं, ताकि उनको एक्वायर करके और उनको एक अगर जॉब्स मिलती हैं तो नया रोजगार बनता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए कैच दीज पीपल यंग जो है वही हमारा मुद्दा है इसमें, और इसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना जल्दी हम यूथ को एंगेज करेंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, और जब उनको सेविंग के हैबिट्स पता चल जाए, एफडीज वगैरह या अदर देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, तो उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पता चल जाएंगे। तो इसलिए कि स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी उनको जितना जल्दी हम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ले आए वो हमारे लिए भी फायदा, और बेसिकली ये जितने भी हमारे साथ जो 2 दिन डिस्कशन हुआ बेसिकली वही है कि कोलैबोरेशन है और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि जितना जितना सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज हैं इनको अब फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाएगा।
1: दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई थी वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वैल्यू चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई, साथ ही प्रायोरिटी

0: सेक्टर लेंडिंग की बात की गई खास तौर पर। ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में इस तरह के कर्ज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं?
1: प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका फिर अभी एनपीए तो काफी हमारा रिजॉल्व हो गया, जो 14.6 से 0.39 आ गया। अब प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग हो गया, एग्रीकल्चर फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज्यादा फोकस रहता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसका भी फोकस भी किया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है हमारी सब्सटेंशियली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर अब ये हमारा कि फोकस ज्यादा कि नंबर और टारगेट पे नहीं होना चाहिए कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होना चाहिए ताकि जिस पर्पज के लिए, और फिर फॉलो अप रिकवरी और मॉनिटरिंग जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि एनपीए के वजह से कि हम लोन तो दे देते हैं पर उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसी कॉन्फ्रेंस का ये कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्राइवेट सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना कब कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है। तो रोल्स काफी चेंज होने वाला है बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग था कि एनपीए को अब एक बार कम हो गया ये नहीं कि दोबारा हो जाए, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलो अप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी।
0: बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी, बैंकिंग काफी बदल गई है। तो अश्विनी जी आपसे ये समझना चाहेंगे, इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहें तो, सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी न रहने दे, तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है, तो वहां क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में?
2: आपने सिर्फ लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलो अप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीजें बहुत जरूरी है। तो इसलिए टारगेट ज्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि भाई हाँ भाई ज्यादातर लोगों तक वो पहुंचे, वो एक बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए, कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचे और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप एक देखिए, आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचें बना दीजिए, तो उससे क्या होगा, वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी। तो यानी हर, अब एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्क फोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहाँ आप कोई चीज को अचीव करना चाहते, तो वो एक बहुत जरूरी है। और दूसरा, आप जैसे डिपॉजिट की बात, मोबिलाइजेशन की, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाय टुडे पे टुमारो, तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता। तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो, पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास, और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती भाई, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहाँ से करो। तो आपको जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जनजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते हैं।
0: जी, और एक जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई है, एक थीम थी, उसको लेकर आपका अश्विनी जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो?
2: उनकी एक सोच है बाय टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी, क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए, लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो एनपीए है या वो क्रेडिट के कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, अब नए भी फिर आप ले आएंगे, तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है वो, तो उसको आप किसको दे रहे हैं? अब आप देखें कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं, अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीजों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है।
0: यानी कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए उसको दिया जाएगा, तो एक तरह से एनपीए पे कहें काबू पाएगा।
2: भाई सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
0: बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है?
1: नहीं, ऑलरेडी इसमें काफी बैंकों ने भी, इवन गवर्नमेंट में भी, और

0: देखा जाए तो क्वेश्चन यही उठेगा कि पब्लिक सेक्टर नंबर ऑफ ब्रांचेज है, उनका स्केल काफी बड़ा है, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब हम लार्जर बैलेंस शीट्स के ऊपर तो फोकस अब धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है, तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर, और नेक्स्ट जो इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है। क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस विद बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट, तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जो भी यहाँ पे 2 दिन के डिस्कशन हुए हाई पावर कमेटी के लिए एक ऐसा मटेरियल बनेगा, और जैसे रश्मि सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जुड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है, मतलब डोर स्टेप बैंकिंग है, तो वहां पब्लिक सेक्टर बैंक में भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए, तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहां पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी।
1: लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से, लेकिन सरकारी बैंक का जब दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा, ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा?
0: हाँ देखिए दोनों ही है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें, और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स, और क्योंकि वहां पे है कि स्टाफ भी यंग है कस्टमर भी यंग है, तो एक माइंडसेट और वो बात होती है, बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक है 100 साल 118 साल कोई 120, तो वो तो हमारा रहेगा, बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग में।
1: एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में?
0: बदलाव देखिए अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के काफी मुद्दा इसमें रहा, क्योंकि डिजिटली जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये, क्योंकि अभी अगर 30 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है, तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, इसलिए साइबर सिक्योरिटी जो डिफरेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ईमेल क्वेश्चनर है, अवेयरनेस है, तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है। इवन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नाउ डिजिटल ही है, अब उसके बैक नहीं जा सकते हम, तो सीबीडीटी है या डिजिटल करेंसी या आरटीजीएस, यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे।
1: अश्विनी जी, 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रही है, तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं?
2: देखिए सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व करते हैं, तो यहाँ पर और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और उसके अंदर मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करना है 2 अक्टूबर से कर रहे हैं, तो अब यूथ को अप्रोच करने के लिए वैसा ही माइंडसेट चाहिए, अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, उस झील के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, उसके लिए वैसा आपका माइंडसेट चाहिए और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए।
1: नंदा जी, जो एक नए तरह के वर्क फोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का। पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे, फिर वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है, और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है क्या नए तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो?
0: देखिए बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर एज पर आरबीआई देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वही है, सेविंग है, करंट है, या फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, बट अभी जो यूथ जो अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है यंग जनरेशन, क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात कर रहे हैं या 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं, तो वहां पे इनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, अब बैंक्स के कई बैंक्स ने टाइप भी किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूलिप प्रोडक्ट या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा रिस्क है, बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा, उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस या FD के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह

0: अब सिप्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने बाजार जरूर करते हैं, वो मार्केट को उतार चढ़ाव देखते हैं अल्टीमेटली। तो यही है कि अब जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, बैंकिंग कस्टमर भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिपॉजिट पे अब कस्टमर कम होते जा रहे हैं, बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जैसे कह सकते हैं, जैसे अब जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, पीपीएफ वगैरह। तो अब हर तरह का उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बनाना पड़ेगा। अब जो आज का जो बैंकर है वो खाली बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1,00,000 रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा। तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बनाना पड़ेगा, यंग जन पीपल को, क्योंकि जब जैसे जैसे एज यंग होते हैं तो लोग रिस्क है उसके बाद, फिर हमारे पास पेंशन प्लान है। तो एक बार जो कस्टमर अकाउंट खोलता है, यंग जनरेशन एजुकेशन लोन से लेकर सैलरी अकाउंट से धीरे धीरे फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो इन्हीं कॉम्बो प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हों या जिनको उनको लगे कि ये उनके बैंक के साथ जुड़ा रहेगा तो आगे उसको। और बेसिकली अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास काफी हैं, हमारा रीच काफी है, तो इन्हीं को देखते हुए अगर ट्रस्ट है बैंक के ऊपर है और हमारा रीच है, तो मॉडर्न बैंकिंग का एक ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूशन बन सकता है। और यही हमारा 2017 का मुद्दा भी है कि हमें टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट बैंक्स बनाने।
1: और एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि एक तरह से फाइनेंशियल हिस्ट्री भी एक यंग एज से देश के लोगों की तैयार होने जा रही है, तो उससे किस तरह के फायदे लोगों को मिले?
0: फायदे तो देखिए, जितना जल्दी अगर हम बैंकिंग से जुड़ते हैं, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उतना ही फायदा होता है। तो इसीलिए मैडम ने बोला कि सीता मैम ने कि हम कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पे बच्चों के हैबिट्स बनाएंगे, सेविंग्स वगैरह होगा, तो धीरे धीरे उनका बैंकिंग इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो इसी ये नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्लस डिजिटल है और थ्रू डाटा एनालिटिक्स हम जो क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग करते हैं, तो इन सबको इकट्ठा लेके चलेंगे तो आई थिंक हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे और एक जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सभी के जितने सभी का खाता हो, जितने लोग बैंकिंग में आएंगे और उतने ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे।
1: अश्विनी जी, आपसे भी एक सवाल का जल्दी से जवाब चाहेंगे कि अगर इस कॉन्फ्लुएंस का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा बताना हो जो आम लोगों, युवाओं और किसानों के लिए सीधे फायदेमंद हो, तो वो क्या होगा?
2: वो ये है कि बैंकिंग को 2047 में किस रूप में हम देखना चाहते हैं, मतलब वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे यूथ है, चाहे एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, एमएसएमई है, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सबको सर्व करने वाला बैंक चाहिए। तो वो दोनों तरफ से है, मतलब वैसा ही आपको कस्टमर बेस चाहिए और वैसा ही ये चाहिए।
1: बिल्कुल, तो अब देखना होगा सरकारी बैंक या तमाम बैंकिंग व्यवस्था इन चीजों को किस तरह से अमलीजामा पहनाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।
5: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हनुमान साय महावर का जल तरंग वादन, राग कलावती।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आपने सुना हनुमान सहाय महावर का जल तरंग वादन राग कलावती।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं दोस्ती फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरू ने इस गीत को लिखा है, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं इम्तिहान फिल्म से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने और लिखा है मजरू ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में, क्रांति फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

पत्थर के सनम, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है मजरू ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं हिमालय की गोद में फिल्म से। इस गीत को गाया है मुकेश ने, इस गीत की रचना है आनंद बख्शी की और संगीत बद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आनंद फिल्म से, इसे गाया है मनाडे ने, गीत रचना गुलजार की है, संगीत सलील चौधरी का।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हम दोनों फिल्म से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल साहिर के हैं और संगीत है जयदत्त का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

0: नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।